मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 57 सेकेंड्स हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने

0: विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति पुष्पांजलि का कार्यक्रम वंदना।

रसी स्वरी संगरास रचु मुरली मधुर बजाए रोम रोम में कृष्ण बस प्रेम भक्ति उमगाए।

इसके साथ ही भक्ति पुष्पांजलि का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। इसमें आज हमने जो स्वर पुष्प अर्पित किए वो थे मुकेश, लता मंगेशकर, असित देसाई और हेमा सरदेसाई और समवेश्वर। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आज रविवार है और रविवार को इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम प्रकाश किरण। तो आइए प्रकाश किरण कार्यक्रम में सुनते हैं जैन ग्रंथ शतक से पाठ।

0: परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मा इव जायते अग्निर्यथा तरुहु। आत्मा से परमात्मा बनने का ये उपाय है कि इस आत्मा की निरंतर उपासना की जाए। जिस प्रकार वृक्ष की लकड़ियों में परस्पर मंथन करने से आग उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही ये संसारी आत्मा ही निरंतर आध्यात्मिक साधना करते करते स्वयं परमात्मा बन जाती है। बहिरंतः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। इस संसारी प्राणी की आध्यात्मिक यात्रा में तीन पड़ाव होते हैं। पहला है बहिरात्मा, दूसरा है अंतरात्मा और तीसरा अंतिम जो लक्ष्य है वह है परमात्मा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रम से बहिरात्मा से अंतरात्मा की स्थिति पर पहुंचे और अंतरात्मा की स्थिति से भी परमात्मा बनने का प्रयास करे। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा अति निर्मलः। बहिरात्मा वह प्राथमिक स्थिति है जब प्राणी इस देहादि को आत्मा से भिन्न पदार्थों को आत्मा मान लेता है। इससे ऊपर की स्थिति है अंतरात्मा। स्थिति में साधक को राग द्वेष देह आत्मा इन पदार्थों के परस्पर भेद का पूर्ण विज्ञान हो जाता है और सबसे श्रेष्ठ अंतिम स्थिति है परमात्मा पद की। यह सबसे निर्मल और परम शुद्ध स्थिति है। यो न वेत्ति परम देहाद एवमात्मानमव्ययम् लभते सन निर्वाणम तप्त्वापि परमं तपः। जो व्यक्ति देह में और आत्मा में भेद नहीं समझ लेता, वह चाहे कितना भी कठिन तप करे, घोर तपश्चर्या करे, कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। रागद्वेषादि कल्लोलै अलोलम यन मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम सतत्वम नेतरो जनः। परमात्म तत्व का साक्षात्कार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके निर्मल मन रूपी जल में पूर्णतः शांति रहती है और वहां रागद्वेष की तरंगे नहीं उठती और मन अत्यंत शांत रहता है, कभी भी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही परमात्मत्व का साक्षात्कार कर सकता है। अविद्याभ्यास संस्कारै अवसंक्षिप्यते मनः तदेव ज्ञान संस्कारै स्वतस्तत्वे वतिष्ठते। जो मन अविद्या के संस्कारों से अज्ञान के संस्कारों में पड़कर सांसारिक विषयों में भटकता रहता है, उसी मन में अगर ज्ञान के संस्कार डाल दिए जाएं, तो वह स्वतः परमात्मत्व की साधना के लिए स्थिर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास कर ज्ञान के संस्कार मन में डालने चाहिए ताकि परमात्मत्व की प्राप्ति अत्यंत सरलता से हो जाए।
1: आप सुन रहे थे प्रकाश किरण कार्यक्रम के अंतर्गत जैन ग्रंथ शतक से पाठ। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। आकाशवाणी आगरा केंद्र के स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:30 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनते हैं आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर राजीव नारायण की वार्ता का विषय रहेगा जून माह की खेती बाड़ी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे डॉक्टर यादराम शर्मा की वार्ता उच्च रक्तचाप स्वास्थ्य के लिए घातक। दैनिक सूचनाओं पर आधारित

0: कार्यक्रम होगा आसपास 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुनेंगे भुवनेश कुमारी के गाए ब्रज लोक गीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 10:30 पर सुनेगा पंडित विश्वनाथ का ख्याल गायन। लोकमंचरी कार्यक्रम में दिन में 12 हम आपको सुनवाएंगे ओम प्रकाश अमर की गाई लावनी। आज रविवार है और आज आप सुनते हैं दिन में 1:15 पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडल। आज के इस बाल मंडल कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा करे योग रहे निरोग। बच्चों को रोचक जानकारी दी जाएगी सूरज का त्योहार संक्रांति। बाल गीत सुनवाया जाएगा। बाल मेहमान योग की महिमा विषय पर गायत्री शर्मा से अनेंद्र सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी। कहानी सुनवाई जाएगी मुन्ना हाथी। कहानी का वाचन करेंगी प्रगति गोयल। और चलते चलते नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे छुट्टियों का सदुपयोग जरूरी विषय पर जानकारी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर अनुराधा पोडवाल के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाचार्य कुलदीप सिंह भवानी से अनेंद्र सिंह की बातचीत। संध्या 5:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें चर्चा
1: हेल्दी एजिंग एंड वी कैन सी दैट एवरीवन इज असेंबल्ड हियर एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड परफॉर्म आसनास।
2: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं। आज के आयोजन के लिए यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
1: श्री प्रताप राव जाधव दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
2: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
3: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव

0: लिए है जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आरएन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো। সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আরএন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের

और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो

मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मीन्स दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफ स्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स। द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्व्स द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्व्स। दैट इज व्हाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग, दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है।

0: संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts

0: Have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga asanas celebrations here today.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूहों को संबोधित किया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया. और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है. योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है. हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है, वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं, अनुशासित रूप से

0: ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
2: हम सब
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
0: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो संस्थान नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है।

0: नलिका तंत्र जिसको बोलते हैं उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारे मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
1: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है, ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है, और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
0: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
1: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्री गण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Munish Sharma ji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
3: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है, मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना, जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है, फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटैलिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है, और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है, आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
0: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहां पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में, और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए।

0: उद्योग में करियर भी है, और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
1: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
0: जी।
1: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं
0: जी।
1: वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि
0: जी। मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
2: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
2: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
0: जी।
2: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू-टर्न होता है, यू-टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू-टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है
0: जी।
2: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
0: जी। और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है, और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
1: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhansa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almes in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री

0: जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहाँ पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है। और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं। और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है
0: जी।
1: तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हैं।

0: वे स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और अब यहां अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पॉस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: नाउ आई थिंक द एंथुसियास्ट परफॉर्मिंग वक्रासन।
0: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
2: बिल्कुल सही है कि ये हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू
0: दी आसनास इन दी
1: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
2: वक्रासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच

0: हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है। और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ है, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है, स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
1: जी।
0: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
1: जी। गुरु मुनीश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्सियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूं कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर
1: जी।
2: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
1: जी,
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
0: और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
1: जी। सेतु बंधासन, और हम यहां देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं।

0: योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी,
1: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं, तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
0: जी। गुरु गणेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है
0: जी।
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो अपनी कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
1: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति

0: मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही। जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरैक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं। और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयामी लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामीन युक्तिन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगिन सर्वरोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। यदि कहा गया है युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है। जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये।
1: जी,
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
0: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाएं,
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जा

0: आते हैं
1: जी. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास दैट इज ध्यान और मेडिटेशन विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Prithina,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
2: जी.
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया. तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है. मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना. तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है.
2: जी. और गुरु मुनेश रैना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है.
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा है पता नहीं चल रहा है आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें. मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है. सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो. सारी चीजें मेरी खुद की लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा. मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया. तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे. और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है.
2: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान. और यहाँ पर अब प्रार्थना
4: शांति
2: मंत्र का पाठ किया जा रहा है.
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर,
2: जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
4: और धीरे धीरे
2: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं. और मैं गुरु जी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं. तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं. आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है. तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई.
1: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
2: Ji, jal thal nabh sabhi

0: योगमय होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड, एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं। जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं, मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है, फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और फिर बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है।

0: बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शियसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शियसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरी विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शियसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहां पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशनड, एंड एज यू आल्सो मेंशन नीलम जी, दैट दी टुडे वी सॉ दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लीड द नेशन इन परफॉर्मिंग योगासना एट द रेड रोड Kolkata, but at the same time also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also people performed yogasanas on board their boats and yachts, and in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है, तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं।

0: आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप, वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। यह प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नीट यूजी पुनः परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

0: बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
0: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की

और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस

0: हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
5: धन्यवाद भरत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्र

0: के शब्द हैं, नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इजराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमेरिका को घेरा, इजराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की दो हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसभा की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Sunil. NEET UG re-examination is the top story on dailies today. All hands on deck for NEET retest, writes Hindustan Times. 1.38 lakh CCTV, 51,000 jammers for leak-proof NEET today, headlines The Asian Age. The war between Iran and Israel, too, continues to dominate front pages of dailies. Iran closes Hormuz amid Israeli attacks on Lebanon, reads the Hindu headline. On the 12th International Day of Yoga 2026, the Pioneer writes that 6 lakh people will perform yoga today with Prime Minister Modi in Kolkata. Two studies led by AIIMS have found that yoga may improve women's hormone and insulin levels, reports the Times of India. An AI-enabled queue management system will be implemented in Kerala's Sabarimala Ayyappa Temple from November, reports the Hindu. In just over 3 months, from the end of February until early June, Indian records in athletics were broken 20 times, reveals the Indian Express. And finally, the ASI has made significant discoveries at Rakhigarhi, perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports the Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. 3 Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान मुनक़िद कराएगी। भारतीय परचमबरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आब नए हुर्मुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बुला में 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैनर अक्वामी दिन की कौमी तकरीब की क्यादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: वजीर आजम ने कहा कि हमें

0: योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूरू, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क्यादत की। बहुत से मरकजी वजरा, रियासती वजरा और सीनियर एहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इरादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: योग के आलमी दिन की शानदार तकरीब में आज मुल्क व बैरून मुल्क में लोग पूरे जोश खरोश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। सकाफत की वजारत भारत के महकमा आसार कदीमा के इश्तराक से 100 आइकॉनिक मुकामात पर योग के खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है और भारत की मालामाल सकाफती विरासत को उसकी पायदार योग रिवायात के साथ जोड़ रही है। बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में लाल किला, हरिद्वार, कोनार, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, ले, हैदराबाद और सिलचर समेत 12 अहम मुकामात पर मुनाकिद की जा रही हैं। आयुष की वजारत ने कहा है कि 6 लाख से ज्यादा तंजीमों ने योग संगम पोर्टल पर इंदराज कराया है, जिससे इस साल की तकरीबात में आवाम की बेमिसाल शिरकत की अक्कासी होती है। बैन अल्अक्वामी सतह पर 210 से ज्यादा भारतीय मिशन सकाफती ताल्लुकात के लिए भारतीय काउंसिल की मजबूत कोशिशों के जरिए दुनिया भर में तकरीबन 2500 मुकामात पर योग तकरीबात का इनेकाद कर रही है। दिल्ली में योग तकरीबात कई अहम मुकामात पर मुनक्किद हो रही हैं। नील योग तकरीबात शांति पथ, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क, तालकटोरा गार्डन और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हो रही हैं। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियासती सतह के योग के आलमी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये तकरीब सादर में गैरिसन ग्राउंड में मुनक्किद हुई थी। योग के दिन की तकरीब के बाद सदर जमहूरिया रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी, जहां वो मेहमान खसूसी की हैसियत से यूनिवर्सिटी के 36वें तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। गवर्नर मंगूभाई पटेल भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क जाएंगी, जहां वो सहरिया कबायली बिरादरी, चीता ट्रैकर्स और पार्क की फील्ड टीम के अरकान से मुलाकात करेंगी। योग का 12वां सालाना बैन अल-अक्वामी दिन मनाने के लिए कौमी राजधानी खित्ते में बहुत से मरकजी वजरा और तंजीमें योग सेशंस में शिरकत कर रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज शांति पथ में योग के दिन की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग को आलमी सतह पर ले जाकर जबरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज योग के बारे में सालाना बैन अल-अक्वामी दिन के मौके पर नई दिल्ली के नेहरू पार्क में योग तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में भारत में नॉर्वे के सफीर मेएलिन स्ट्रेनर भी शामिल हुए। खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग के आलमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लिया। अदाकार अक्षय कुमार योग सेशन खेलों के वजीर के साथ शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी संजीम ने भी नई दिल्ली में लाल किले पर योग के आलमी दिन की तकरीब मनाई। उत्तर प्रदेश में आज योग के आलमी दिन के मौके पर खसूसी योग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असेंबली के स्पीकर, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन और रियासत के सभी वजरा ने मुख्तलिफ जिलों में मुनक्किद योग तकरीबात में शिरकत की। सऊदी अरब के रियाद शहर में 500 से ज्यादा शुरका ने कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। आज योग के आलमी दिन से पहले कल मगरबी मगरबी ममालिक में योग से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने

0: बड़े ग्रुपों में योग की वर्जिश की। कनाडा के टोरंटो में ओंटारियो कानून साज असेंबली में सरकारी नुमाइंदों, सिफारती तंजीमों, योग की मश्क करने वालों और तंदुरुस्ती से मुतालिक इदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने योग के एक पुरजोश मश्क में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय बहरिया के प्लेटफॉर्म्स में देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए तीन बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म अंजाम देंगे। बहरिया के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के जरिए डिजाइन किया गया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के जरिए तैयार किए गए ये तीनों बहरी जहाज लड़ने की कार्रवाइयों की सलाहियतों को मुस्तहकम करेंगे। इसके अलावा ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे और बहरी आब को भी मुस्तहकम करेंगे। INS दुनागिरी एक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका मकसद ब्रह्मोस मिसाइल्स और दरमियानी दूरी की फिजाई दिफाई निजाम से लैस किया गया है। INS संशोधक एक निगरानी करने वाला जहाज है जो साहिली और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि INS अग्रह एक आबदोज शिकंजंगी बहरी जहाज है जिसे टॉरपेडोज, रॉकेट लॉन्चर्स और सुनार निजाम से लैस किया गया है। ये साहिली दिफा के लिए तैयार किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी अहलियत और दाखिले का टेस्ट नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान आज कराया जाएगा। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्कों के 14 शहरों में मुनाकिद होगा जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में बैठेंगे। इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में मुनाकिद कराए जा रहे हैं। इम्तिहान से कबल इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सभी निजाम जैमर्स, CCTV, तलाशी लेने वाले अमले और बायोमेट्रिक की तस्दीक करने के लिए कल कौमी पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया था। NTA ने कहा है कि वो साफ शफाफ और खुशुसलूबी से इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नीट के इम्तिहान को साफ और शफाफ और खुश उसलूबी से कराने के लिए मुशाहिदीन, कोऑर्डिनेटर्स, पुलिस फोर्सेज और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अमले को तैनात किया गया है। साफ शफाफ और मुनसिफाना इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए एक कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैनात किया गया है। इसमें CCTV, निगरानी कैमरे, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक, सील बंद प्रोटोकॉल के तहत मखसूस मकाम पर खुफिया इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान को महफूज तरीके से हवाले करने और इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान की नकल व हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियां शामिल हैं। NTA गलत मालूमात को रोकने, बेजाबतगी खत्म करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निगरानी भी कर रही है। नीट के इम्तिहान आज 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुनक़िद होंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के 3 टैंकर्स ने कल आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम में देश वैभव, देश विभोर और सेमर हेराल्ड हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सोनोवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फैसला कुन कयादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ्फुज़ को सबसे ज्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की जमानत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रही है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। दस्तावेजी फिल्मों, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन और AI सिनेमा का ये 2 साला फेस्टिवल 15 जून को शुरू हुआ था और आज रात एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सिनेमा के शानदार रंगों से भरे 5 दिनों के बाद मिर 2026 आज इख्तिताम पजीर होगा। ताहम इख्तितामी तकरीब से पहले फिल्म शायकीन के पास मुख्तलिफ सेक्शंस में प्रिज्म, बेस्ट ऑफ फेस्ट, नेशनल कंपटीशन, मोजेक और इंडिया लाइव एंड लैंडस्केप्स के तहत गैर फिक्शन कहानियों की ताकत का तजर्बा करने का एक और दिन होगा। मिफ के आखिरी दिन की अहम तरीन पेशकश में से एक वी शांताराम दी पाइनियरिंग स्पिरिट की स्क्रीनिंग होगी जो इस लेजेंडरी फिल्म साज की 125वीं सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही है। आशा मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में मुनाकिद होने वाली इख्तितामी तकरीब

0: में बैन अवी और कौमी मुकाबलों के जुमर में बेहतरीन फिल्मों को 18 अवार्ड दिए जाएंगे। मुंबई से अंकिता आपटे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में और बहुत तेज बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने जुमेरात तक असम मेघालय में इक्का दुक्का मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज डिम्बुला में खेली जाने वाली तीन मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अपने साबिका मैच में शिकस्त को भुलाते हुए इंडिया ए श्रीलंका ए को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने आज योग के आलमी दिन से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सिलसिले में शह सुर्खी है, आयोग के बैन अक्वामी दिन के मौके पर आयुष की वजारत ने लोगों से बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की। अखबार इंकलाब की शसुर्खी है, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नीट इम्तिहानात शफाफ और नकल से पाक, इम्तिहान के लिए मरकज और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी तैयारियां। अखबारात ने ओडिशा में वजीर आजम के हाथों 47,600 करोड़ रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखे जाने से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में तीन बहरी जंगी जहाजों INS दुनागरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतार कर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरूनी मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार तीन ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

अवतार फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शागिर्द फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाज मोहम्मद रफी की है, गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा, जा।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले के स्वर में है। फिल्म का नाम है दो बूंद पानी। गीत रचना कैफी आजमी की है और संगीत जयदेव का।

तुम नहीं समझोगे कौल साहब, कश्मीर के रहने वाले हो ना, जहां पानी बहुत है, लेकिन इस रेगिस्तान में हमारी

0: तुम नहीं समझोगे कौल साहब, कश्मीर के रहने वाले हो ना, जहां पानी बहुत है, लेकिन इस रेगिस्तान में, हमारी सूखी प्यासी धरती में, तो बूंद पानी के कारण एक आदमी दूसरे की जान ले रहे हैं, तो बूंद पानी के कारण एक छोरी की इज्जत का खून हो जावे, जैसे हमारी सोनकी का हुआ।
1: सोनकी कौन? तुम्हारी बहन?
2: तुमने ही तो कहा था पहले जान पहचान
1: फिर दोस्ती और फिर प्यार।
3: जल्दी हमारे गांव पहुंच जाए, हमें और कोई इंतजार।

0: दो बूंद पानी फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। कैफी आजमी के गीत को संगीत दिया था जयदेव ने। अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की गीत रचना। इसे हमने लिया है बॉबी फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की।
1: बाहर से कोई

बॉबी फिल्म का गीत आपने सुना और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अदालत फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। राजेंद्र कृष्ण की गीत रचना को संगीत दिया है मदन मोहन ने।

अदालत फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया था मदन मोहन ने। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 9:15 हुए हैं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। सरकार ने नई शिक्षा नीति, रोजगार परक कोर्सेज, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने जैसी पहलों के जरिए उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों के समग्र विकास का जरिया बनाया है। बीते 12 वर्षों की इस यात्रा पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति राजकुमार मित्तल जी। राजकुमार जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: प्रोफेसर मित्तल, आप खुद एक शिक्षाविद हैं और एक बहुत ही अहम केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी विराजमान हैं, और आपने जो एक लंबा वक्त शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है, अपने अनुभव से बताएं कि बीते 12 वर्षों में एनडीए की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणादायक, उत्साही और अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिवर्तन हुए, और मुझे लगता है कि इन सब परिवर्तनों को करने का जो पीछे आधार रहता है वो शिक्षा ही रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे बहुत महत्व देते हैं और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी प्रगति के रूप में देख सकते हैं, और इसमें शिक्षा नीति में एक ट्रांसफॉर्मेटिव का पोटेंशियल है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्रिटिकल एरिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया, ये सारे के सारे एक बड़े ही इनोवेटिव, रिफॉर्मेटिव टाइप के कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, और इन सब के पीछे जो आधार है वो शिक्षा नीति ही है। शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आज हम देखते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात हो। भारत आज विश्व का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोग जो पहले अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर IIT IIM से बाहर जाते थे, अब लोग भारत में ही अनेक तरह की संभावनाएं खुली हैं, उसमें अब काम देख रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, स्टार्टअप लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है हुआ है। स्वदेशी इंडियनाइजेशन बहुत बड़े स्केल पर, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो या और अन्य क्षेत्र, कृषि वगैरह में

0: इन सब में भी स्वदेशीकरण बहुत बड़े पैमाने पर और जो नवाचार है वो हुआ है, इसके पीछे भी जो मुझे लगता है कि वो शिक्षा ही आधार के रूप में कार्य करता है।
1: जी प्रोफेसर मित्तल, जैसे कि हम लगातार देखते रहे हैं कि प्रधानमंत्री युवा शक्ति को बहुत महत्व देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि युवा शक्ति ही है वो आगे लीड करेगी और भारत को ग्लोबल लेवल पर एक पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी। तो शिक्षा नीति की जहां आप बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय के बाद ये परिवर्तन आया और नई शिक्षा नीति लाई गई, कितनी जरूरत थी इसकी?
0: क्योंकि भारत, हम सब जानते हैं कि विश्व की जो 20% के करीब लगभग युवा शक्ति वो भारत में रहती है, भारत युवाओं का देश है और पॉपुलेशन डिविडेंड जो एक हमें एक यूनिक सिचुएशन हमें दिखती है उसका सदुपयोग करना, उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को स्किल करें, उसकी इम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं, उनमें व्यवहारिक ज्ञान दें और उनके लिए अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अपॉर्चुनिटी खोलें। और सरकार आज जो आवश्यकता है, मुझे तो ये लगता है कि जो भारत का विकास है वो उद्यमिता के रास्ते होगा, यानी उनका जॉब सीकिंग बिहेवियर की बजाय जॉब प्रोवाइडर उनका जो बिहेवियर होगा, माइंडसेट, वो बहुत आगे भारत को लेके जाएगा। भारत ऐसा ही देश था जहां पर उद्यमशीलता पाई जाती थी और पूरे विश्व का लगभग एक तिहाई जो ट्रेड था, उत्पादन था, वो यहीं से होता था और बेरोजगारी और ये इस तरह की जो दूसरी समस्याएं थी वो उस समय नहीं दिखती थी। तो आज मुझे लगता है कि बहुत युवाओं को उनका जो पोटेंशियल हमारे पास एक अवेलेबल है, ये विश्व में कहीं और इतनी बड़ी संख्या नहीं है, इसका सदुपयोग करना और इसको सही रास्ते पर, इसकी इम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, इनके पोटेंशियल को रियलाइज करना, इनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करना, ये हम सबके लिए आवश्यक है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इसी की तरफ ले जाती है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति ने बिल्कुल नया आयाम दे दिया है शिक्षा को, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें या खेलों की बात करें, खेलों को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो बड़े लेवल पे हो। तो नई शिक्षा नीति के तहत अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करें, आपकी विश्वविद्यालय ने कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं?
0: देखिए, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा नीति का एक जो स्तंभ है वो है उद्यमशीलता को प्रेरित करना, के लिए हमने अपने विश्वविद्यालय में नव कल्पना के नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी खोली है और आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है कि लगभग 25-26 हमारे पास विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंतर्गत अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया और वो नए नए आइडिया पे काम कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली वो एक स्टार्टअप कर सके अपना। हम उसके लिए एक हमारा बोर्ड है, इंडस्ट्री के साथ अपना जुड़ाव हम बढ़ा रहे हैं और हमारा कोशिश होगा कि जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा उद्यमशीलता की जो भावना है उनमें भी वो जाए, इसकी तरफ हम नव कल्पना के माध्यम से लगे हुए हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया। दूसरा जो कदम महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के को आप ध्यान से देखें तो वो ये बात कहती है कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने विश्वविद्यालय में 12 अभी हॉबी क्लब्स खोले हैं, जैसे कि डांस, ड्रामा, अर्बन गार्डनिंग, खाने पीने का कुजीन, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंट के ऊपर सेंसिटिविटी और ऐसे ऐसे कुछ फोटोग्राफी ये खोले हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चे को इनमें रुचि लेनी चाहिए अपने स्वभाव और अपनी सोच के मुताबिक। दूसरा, तीसरा यदि आप देखें तो हमारे विश्वविद्यालय में 250 एकड़ की उसमें भूमि पर ये एक बहुत हरा भरा कैंपस है जिसमें ग्रीनरी के ऊपर बहुत फोकस है, 1.5 लाख से ज्यादा इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी हमने पिछले साल ही इसमें रिकॉर्ड किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, एक साथ सबसे ज्यादा प्लांट एक समय में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगाए थे और अब हमारा फोकस यहाँ पर जो फ्रूट बेस्ड प्लांट है वो लगे। हमने एक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से हर्बल गार्डन भी विकसित किया है। चौथा पॉइंट हम योगा का देते हैं, योगा, मेडिटेशन और उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल के माध्यम से एक हमने उम्मीद नाम से एक प्लेटफॉर्म किया है। उस प्लेटफॉर्म में हमारे पास योगा के टीचर हैं, मेडिटेशन के हैं, आयुर्वेद के टीचर हैं, हॉस्पिटल हमारा है और भी जो अलग अलग साइकोलॉजी का एक काउंसलर लगा हुआ है। ये सारे के सारे बच्चों में बच्चों की गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग, इसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म है, NCC, NSS, जो विद्यार्थियों के फिजिकल

0: वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और इंटेलेक्चुअल लेवल को सामूहिक रूप से देखते हैं ताकि उनका विकास समग्रता से बन सके और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और समाज के भी काम आ सके। तो ये भी एक हमारी सोच इस दिशा में भी निरंतर चलती रहती है।
1: जी सर, एक अहम पहलू आजकल जिस पर सरकार फोकस कर रही है वो है डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि हायर स्टडीज को किस तरह से और बेहतर बनाएंगी या इसका क्या फ्यूचर है आने वाले समय में?
0: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं मानता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी जब आती है वो एक नदी में जो जल है उसके प्रवाह की तरह होती है, वो आएगी और नीचे बहेगी जैसे नदी बहती है, इसी तरह टेक्नोलॉजी आएगी और उसका इंडस्ट्री में, समाज में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग भी होगा। उसका हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे करें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो दो तीन करेक्टरिस्टिक जो मनुष्य में जो टेक्नोलॉजी से अलग उसको पहचान देते हैं वो है जजमेंट करने का, कि कोई काम करना है नहीं करना, ये जजमेंट टेक्नोलॉजी नहीं देगी। मगर हम व्यक्ति को अपना दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो विवेक का प्रयोग है ये शायद अभी तक प्रकृति ने मनुष्य के पास ही रखा है। लीडरशिप है कि कोई काम कब कर, टेक्नोलॉजी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको यूज करोगे जब आप कहोगे तो तब हो जाएगी, नहीं करोगे तो वो अपने आप तो कुछ नहीं करेगी। वो तो लीडरशिप का जो है इनिशिएटिव लेना, रिस्क लेना, काम करना, लोगों के साथ बातचीत करना, गाइडेंस देना, नर्चरिंग करना, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं लीडरशिप के, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं उनको रिप्लेस कर सकती। और मेरा ये मानना है कि जो क्रिएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए क्रिएशन, क्रिएशन कैन नॉट रिप्लेस द क्रिएटर इन ए वे। क्रिएटर से बड़ा नहीं हो सकती वो क्रिएशन। कोई पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग बड़ी नहीं हो सकती, जो पेंटर है वही बड़ा रहेगा और आगे वो इससे भी बेहतर बना सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए इससे ऊपर भी कोई अभी होगी, तो पहले जो भी टेक्नोलॉजी आती है हम मानते हैं यही अल्टीमेट है, मगर इसमें इंप्रूवमेंट आदमी करता रहता है, व्यक्ति मानव। तो इसलिए तो मानव को तो रिप्लेस नहीं कर सकती, मगर इसमें पोटेंशियल बहुत लाभ का है, क्योंकि जो आज स्कोप है इसका प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता ये बढ़ाती है, स्पीड पे ये काम करती है और उसको और बेहतर स्टोरी टेलिंग के तरीके से भी चीजों को प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब, इसका प्रयोग लाभ बहुत है शिक्षा में। और हमारा विश्वविद्यालय ये है कि हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। हमारी सोच है कि जो सभी विद्यार्थी हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी इम्पोर्टेंस को और उसके रेलेवेंस को और उसके लाभ को सब बच्चों तक ले जाया जाए।
1: जी सर, अगर रिसर्च की बात करें, जैसे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस तरह के कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जो छात्र हैं वो रिसर्च और इनोवेशन को और अधिक अच्छे तरीके से परस्यू कर सकें?
0: हमारे पहला तो प्रयत्न यही रहता है कि अच्छे विद्यार्थियों को इसमें रिसर्च में लाया जाए। और जो हमारा जो लाइब्रेरी है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके माध्यम से आज सब जो बेस्ट जर्नल्स हैं वो बच्चों को अवेलेबल कराए जाते हैं। बच्चों के साथ उनकी काउंसलिंग और गाइडेंस और उनके साथ ओरिएंटेशन वो किया जाता है। एक हमारा एमिनेंट लेक्चर सीरीज प्रोग्राम होता है जिसमें जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जिसने काम किया हो उनके साथ लेक्चर होता है, उनके साथ बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो रिसर्च है हम उसको प्रमोट करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को, और ज्यादातर बच्चों को फेलोशिप दी जाती है, चाहे वो यूजीसी की फेलोशिप हो, जीआरएफ हो या कोई और फेलोशिप हो, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अब हमारा जो प्रयत्न लगातार जारी है वो हम थोड़े थोड़े रिफॉर्म करके पीएचडी ऑर्डिनेंसेज में और बच्चों के साथ संवाद करके हम चाहते हैं कि बच्चों का एक आउटकम बेस्ड रिसर्च हो, यानी रिसर्च फोकस्ड वे में, कि क्या उसका इकोनॉमिक वैल्यू होगी, क्या उसकी सोशल वैल्यू होगी, इस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं ताकि जो क्वालिटी और जो रिसर्च निकले उसका उपयोग हो कोई, इसकी तरफ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं।
1: सर, आपने बताया कि आपके यहाँ स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स ये सब दी जा रही है छात्रों को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने जो कदम उठाए उनमें ये अहम कदम है कि जो स्कॉलरशिप्स और जो फेलोशिप्स हैं इनको भी बढ़ाया है, तो इससे आपको लग रहा है कि कितना परिवर्तन आ रहा है?
0: देखिए, विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा है कि आप यूजीसी की जो जेआरएफ है उसमें

0: में लगभग 40-42 हज़ार पे बच्चों को मिल जाते हैं।
1: इतना एक फेलोशिप 5 साल तक बच्चा कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर बड़े आराम से बिना किसी तनाव के अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकता है, बाहर रह सकता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने की हैं और इसके माध्यम से एक उनके आत्मबल को भी बढ़ावा मिलता है कि उनको इस टाइम में कोई नौकरी नहीं ढूंढनी, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है उसमें।
2: सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस वक्त एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो जो छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है?
1: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है। अभी थोड़े दिन के बाद जो यूजी लेवल का है वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं तो यही कहूंगा कि विश्वविद्यालय ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। हमारा विश्वविद्यालय नैक A++ रेट यूनिवर्सिटी है जो कि हाईएस्ट ग्रेड नैक से मिलता है। अभी NIRF में भी हमारा 69th रैंक है और अभी जो IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क उसमें हमारा 19वां नंबर है। तो सारे पैरामीटर के जो ग्रेडिंग और रेटिंग के पैरामीटर है उसमें हम काफी ऊपर हमारे रिकॉग्निशन मिलती है हमें, और हमारा प्रयत्न भी है कि विद्यार्थियों की जो बदलते समय में जो जरूरतें हैं उनके साथ संवेदनशीलता से उनको पूरा कर उनमें योग्यताएं कैपेबिलिटी का विकास किया जाए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये आश्वासन देता हूँ कि उनको शिक्षा की जो क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित जो बातें हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनको पूरा करता है।
2: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: धन्यवाद आपका।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
4: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। 747 किलोहर्ट्ज़ पर
5: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:31 और 45 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम गीत मंजूषा के तहत।

देख कबीरा रोया। इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर, गीता दत्त और सीता की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीत दिया था मदन मोहन ने। अब सुनते हैं फारूक कैसर की गीत रचना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आंधी और तूफान फिल्म से। गीत में संगीत रोबिन बैनर्जी का है।

आंधी और तूफान फिल्म का गीत आपने सुना, आइए अब सुनते हैं छूमंतर फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, गीत के बोल जानेसार अख्तर के और संगीत ओपी नैयर का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बहार फिल्म का गीत शमशाद बेगम की आवाज में। एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं।

बाहर फिल्म का गीत आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में। इसके साथ ही कार्यक्रम गीत मंजूषा अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भुवनेश कुमारी के गाए लोकगीत।

शुभ हरि नाम सुमर सुखधाम, ये लोकगीत आपने सुना भुवनेश कुमारी के स्वर में। इन्हीं के स्वर में आइए सुनते हैं ये लोकगीत ऐसो काय करे अभिमान।

हमारी जैसी सास दैया काऊ पे न हो पे। ये लोकगीत आपने सुना, कलाकार थी भुवनेश कुमारी। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। लोकमंचरी कार्यक्रम में दिन में 12 बजे आप सुनेंगे ओम प्रकाश अमर की गाई लावनी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब सुनते ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आपने सुना। अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर और शबाब साबरी की आवाजों में। इरशाद कामिल के गीत को संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। सूर्यवंशी फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और अमित कुमार के स्वर में। कुलवंत जानी की गीत रचना को संगीत दिया है अमित कुमार ने।

0: सूर्यवंशी फिल्म का गीत आपने सुना, आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीत के बोल कुलवंत जानी के थे और संगीत अमित कुमार का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट।

0: करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लोफर फिल्म से है। आइए सुनते हैं।
1: इतनी बड़ी कलाकार आशा भोसले जी, जिनके बारे में सभी संगीतकार, क्या पूरा देश ही जिनके गाने के गुण गाता है, जिसके स्वभाव के गुण गाता है। मैं सूरज को क्या रोशनी दिखलाऊं? भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि इस महान गायिका को, इस महान आत्मा को इतनी शक्ति दे कि अपने सुरों से दुनिया भर के दिलों में खुशियां हमेशा बिखेरती रहे।

लोफर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में। गीत रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब सुनते हैं अभिजीत और अनुराधा श्रीराम को बीवी नंबर वन फिल्म में। गीत के बोल समीर के हैं, संगीत अनु मलिक का है।

बीवी हो तो ऐसी, इस फिल्म का गीत आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में। गीत रचना समीर की थी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसके साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित विश्वनाथ का गाया राग ललित में ख्याल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित विश्वनाथ का ख्याल गायन। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दिन के 11 बजने को है, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे साथ साझा की है बहुत ही रोचक जानकारी, और ऐसी जानकारी जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, और हमारे युवा साथी बहुत रुचि लेकर इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पर गए, तब उन्हें चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई कुछ ताम्र पट्टिकाएं उपहार स्वरूप दी गईं, वो उपहार जो भारत की एक अमानत थी। ये ताम्र पट्टिकाएं भारत पहुंची हैं, और हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी इस पर बात कर रहे हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी है हमें कि हम ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानें, इनका क्या रेलिवेंस है, इनकी क्या समसामयिकता है, ये हम समझें, और साथ ही जिस साम्राज्य से ये जुड़ी हैं, चोल साम्राज्य, हम उस साम्राज्य को भी आज थोड़ा समझें। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है इन ताम्र पट्टिकाओं का।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में

0: महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: तो सुना आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कितने रोचक तरीके से ये बताया है कि ये ताम्र पट्टिकाएं हमारे सामने इतिहास की एक खिड़की खोलती हैं, जिससे झांक कर हम अपना भविष्य देख सकते हैं। और इन ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानने के लिए, चोल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को। आपसे उनका परिचय करवा रही हूँ। हमारे साथ हैं देवेश विजय जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, शोध कार्य से आप जुड़े हुए हैं, इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। देवेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
1: हमारे साथ हैं मनीषा अग्निहोत्री जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर हैं। मनीषा जी, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद नीलम जी।
1: जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि हम चोल साम्राज्य के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही ये जो ताम्र पट्टिकाएं भारत आई हैं, अपने घर लौट कर आई हैं, इनके बारे में

0: अपने दो विशेषज्ञों को आपसे उनका परिचय करवा रही हूँ। हमारे साथ हैं देवेश विजय जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, शोध कार्य से आप जुड़े हुए हैं, इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। देवेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद नीलम जी।
0: हमारे साथ हैं मनीषा अग्निहोत्री जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर हैं। मनीषा जी, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
0: जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि हम चोल साम्राज्य के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही ये जो ताम्र पट्टिकाएं भारत आई हैं, अपने घर लौटकर आई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मनीषा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या महत्व है इन ताम्र पट्टिकाओं का?
2: ये ताम्र पट्टिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में देखें, जब ये चोल साम्राज्य जिस समय अपने उरूज पर था, तो उस समय इस तरीके की संस्कृति जो है यहाँ पर प्रचलित थी। हमारे ज्यादातर जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हम लोगों को कॉपर प्लेट्स पर मिलते हैं
0: जी।
2: और ये जो कॉपर प्लेट्स दिए जाते थे, इशू किए जाते थे, वो भूमि अनुदान से संबंधित होते थे, या जो है राजस्व से संबंधित होते थे, या कोई रॉयल डिक्री से संबंधित होते थे। तो ये जो चोलों की जो ताम्र पट्टिकाएं हमारे पास लाइडन से यहाँ पर पहुंची हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये हमारे इतिहास की जो है एक झलक देते हैं, एक जो हमारा अधूरा अध्याय था उस अध्याय को वो कंप्लीट करते हैं
0: जी।
2: क्योंकि ये जो पट्टिकाएं हैं, इसके अंदर 21 जो है बड़ी प्लेट्स हैं और इसके अंदर 3 छोटी प्लेट्स हैं, और उसके साथ साथ ये एक रिंग से बंधी हुई है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक जो है रिंग लगी हुई है, जिसमें चोलों के जो शासन काल का स्टैंप है वो स्टैंप लगा हुआ है, और उसके अंदर स्टैंप में आप अगर देखें तो वो 2 मछलियां बनी हुई हैं और एक बैठा हुआ आपको टाइगर नजर आता है, जो कि चोलास का जो है वो सिंबल था, शाही जो है वो सिंबल था
0: जी।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ताम्र पट्टिकाएं हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है हम देखते हैं जो चोल शासक राजराज प्रथम थे, उन्होंने अनुदान दिया था, एक मॉनेस्ट्री थी यहाँ पर नागपट्टिनम में, एक जो है मॉनेस्ट्री बनाई गई थी, तो वहां पर एक गांव था अनई मंगलम, उसको जो है अनुदान में मॉनेस्ट्री को दिया गया था, और वहां का जितना राजस्व था यहाँ पर इस मॉनेस्ट्री को, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को अनुदान में दिया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो विहार था या मॉनेस्ट्री थी, उसको किसी चोल शासक ने नहीं बनाया था, बल्कि जो है एक शैलेंद्र जो शासक थे साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि ये जो ताम्र पट्टिकाएं हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, भाषा क्या है, तो हम देखते हैं कि ये द्विभाषी है। इसका जो पहला पोर्शन है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और दूसरा जो उसका भाग है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। जो पहला भाग है संस्कृत भाषा, अगर आप देखें कि इस समय प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जितने भी अभिलेख आपको मिलते हैं, तो उसमें संस्कृत भाषा से वो अक्सर शुरू होते हैं, चाहे आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख हैं, उसके अंदर सारे अभिलेख आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख में भी संस्कृत भाषा का आपको हिस्सा मिलता है। ये जो संस्कृत भाषा जो है वो मुख्यतः इन्वोकेशन से शुरू होता है ये हिस्सा, जिसमें की स्तुति की जाती है ईश्वर की, जिससे वो साम्राज्य जो है जिसको अपना वो इष्ट देवता मानता है
0: जी।
2: फिर उसके अंदर हमें जीनियोलॉजी मिलती है, वंशावली मिलती है चोल शासकों की। ये जो वंशावली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि चोल शासक अपने आप को एक लेजिटिमेट रूलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को विष्णु के भक्त बताते हुए अपने आप को सूर्यवंशी जो है शासक घोषित कर रहे हैं
0: जी।
2: हम जानते हैं कि वो क्षत्रिय स्टेटस क्लेम कर रहे थे चोलास, तो यहाँ पर उनकी ये जीनियोलॉजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं चोल शासकों की, उसको यहाँ पे बयां किया गया है
0: जी।
2: तो इस पोर्शन को प्रशस्ति पोर्शन कहा जाता है, और ये आपको ज्यादातर अभिलेखों में देखने को मिलता है, जिसमें कि बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं चोल शासकों की उनको मेंशन किया गया है
0: जी।
2: दूसरा पोर्शन जो है वो आता है तमिल में, जो अनुदान दिया गया है इस विहार को, उसका उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी अभिलेख का, क्योंकि उसके अंदर वो सारे डिटेल्स होते हैं कि ये जो अनुदान दिया गया है एक पर्टिकुलर गांव का, जैसे हमारे संदर्भ में अनई मंगलम जो गांव है उसके राजस्व को अनुदान में दिया गया है, तो उसके अंदर बाउंड्री बताई जाती है कि उस गांव की बाउंड्री क्या है, उसका मेजरमेंट होता है वो उसके अंदर दिया गया होता है, और

0: उसके अलावा क्या राजस्व लिया जाएगा, क्या एग्जेम्पशंस रहेंगी उनसे, क्या छूट होगी, वो सारे डिटेल इसके अंदर दिए जाते हैं
1: जी। तो अपने समय का ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है
0: बिल्कुल,
1: जिसमें हमें उस साम्राज्य के बारे में भी पता चलता है, जो घटना घटित हुई है यानी जैसे भूमि अनुदान की गई है उसके बारे में पता चलता है, फिर उससे जुड़े नियम भी हैं और भाषाई संपन्नता भी पता चलती है, और ये भी पता चलता है कि वो साम्राज्य अपने आप को लेकर, अपने स्तर को लेकर कितना गंभीर है, किस तरह से वो अपने प्रशासन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें वो इंगित कर रहे हैं, चाहे वो अपनी स्टैंप हो या वो भाषा हो, वो सब बता रहे हैं। तो ये जो छोटा सा उपहार है ये हमारे सामने इतिहास के बारे में इतना कुछ बताता है, ये आपने बताया हमें जी, बहुत ही रोचक ये जानकारी है। और मैं यहाँ अब देवेश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा मनीषा जी ने कहा कि हमें चोल साम्राज्य की विशेषताएं इस ताम्र पट्टिका से पता चलती हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम चोल साम्राज्य पर अब ध्यान दें तो साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस तरह से वो हमारे समाज से आज जुड़ती हैं।
2: मनीषा जी ने बहुत अच्छी विवरण दिया इनके जो स्पेसिफिक्स हैं ताम्र पट्टिकाओं के, पर कुछ चीजें होती हैं बिटवीन द लाइंस
1: जी,
2: वो समाज के बारे में बड़ी अच्छी हमें अंतर्दृष्टि देती हैं
1: जी।
2: तो बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में चोल वंश की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुस्तिकाएं हैं उनमें दक्षिण भारत का इतिहास
1: जी
2: उसकी ओर कभी कभी उपेक्षा रही है, तो इस वर्णन से उसकी ओर लोगों का ध्यान जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और खास तौर पे चोल वंश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चोल वंश करीब 400 साल तक कायम रहा
1: जी,
2: और इसको इंपीरियल चोलास भी इनको कहते हैं, इनके पहले अर्ली चोलास भी थे, उन सबको मिलाकर तो यह करीब 1000 साल का इनका शासन है। लेकिन जो 800 यानी 9वीं शताब्दी से करीब शुरू होता है, विजयालु जो प्रथम शासक थे इनके और राजेंद्र तृतीय 13वीं शताब्दी तक, तो ये करीब 400 साल तक इनका शक्तिशाली शासन रहा, ऐसा बहुत कम है। मुगल खाली 250 साल तक शासक किए थे, सल्तनत का शासन भी करीब 250 साल का था, मौर्य वंश तो केवल 150-200 साल का था
1: जी।
2: तो इतने लंबे शासन करने वाले और जो ओवरसीज जिनका एक्सपेंशन था इंडोनेशिया तक, मलेशिया और कंबोडिया, तो यहाँ भारतीय संस्कृति और को ले जाने वाला ये जो महत्वपूर्ण इतिहास है
1: जी,
2: उसकी ओर ध्यान आकृष्ट होता है इस वर्णन से। और इन ताम्र पट्टिकाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे आपने पूछा कि जो और समाज के बारे में हमें क्या बताती है। पहली बात तो यही है कि ये शिव भक्त थे चोल वंश के राजा, लेकिन वो एक बुद्ध विहार को लैंड ग्रांट दे रहे हैं
1: जी,
2: पूरे एक गांव का राजस्व उसके लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये जो हमारे आज भी जो हमारे शासन की नीति है, सबका साथ सबका विकास
1: जी,
2: ये वही नीति उस समय भी दिख रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो सभी धर्मों को पैट्रनेज दे रहे थे
1: जी,
2: कोई भेदभाव नहीं था, सर्वधर्म संभाव की थोड़ी सी झलक इसमें दिखती है
1: जी।
2: वास्तव में जो दक्षिण का इतिहास शुरू होता है उस संगम युग से हमें उल्लेख उसका विवरण मिलने लगता है। उस समय तक कई धर्म धार्मिक भावनाएं, जैसे यहाँ का जो इंडिजिनस गॉड्स थे मुरुगन, उनके बारे में संगम में काफी वर्णन है। अभी पूरी तरह से जो वैदिक कल्चर है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ था बीच में, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रभाव था इस इलाके में। लेकिन पल्लव वंश और बाद में खासतौर पर चोल वंश के काल में शिव भक्ति, विष्णु भक्ति, ये सब ज्यादा स्थापित हुए और ब्राह्मणों को माध्यम बनाकर कृषि का विस्तार किया गया
1: जी।
2: अग्रहार उनको यही अनुदान दिए जाते थे ताकि वो गांव स्थापित करें
1: जी,
2: तो ये सब भी हमें पता चलता है। और एक बहुत बड़ी जो अच्छी चीज पता चलती है, जो उस समय के और हमारे समाज की विशेषता रही है, कि स्थानीय गांव के स्तर पर भी और शहरों में भी असेंबलीज होती थी
1: जी,
2: जिनके माध्यम से स्वशासन काफी हद तक चलता था। राजा कोई दिक्कत आए तो वो लोग हस्तक्षेप करते थे, लेकिन काफी चीजें लोग अपने स्वशासन के स्तर पर निपटा लेते थे
1: जी।
2: ये एक बहुत ही अच्छी चीज इन पट्टिकाओं से भी पता चलती
1: है जी। तो हमें पता चला कि सर्वधर्म संभाव जो है उस वक्त था, फिर सबका साथ सबका विकास जो हम आज सुन रहे हैं ये भावना उस समय भी थी, और स्वशासन आपने बताया कि लोग अपना शासन खुद चलाते थे, जैसे हम आज देखते हैं कि स्थानीय इकाइयां हैं, पंचायत है, फिर उसके बाद जिला स्तर पर है, तो ये हमें चोल वंश में भी देखने को मिलता है।

0: जी, ये रोचक बातचीत हम जारी रखेंगे। मैं आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ। कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
1: मेरी पसंद का तो देशभक्ति के कई गीत हैं, तो जो इसमें हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है, तो आप है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये सुनवा दें
0: जी।

इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में और अपने देश लौटी ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जो चोल साम्राज्य से

0: जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं, देवेश विजय जी हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और शोध कार्य से आप जुड़े हैं। इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की ही प्रोफेसर हैं मनीषा अग्निहोत्री जी। इतिहास की आप प्रोफेसर हैं, लिंग्विस्टिक से आप जुड़ी हैं और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की विशेषताओं की। तो देवेश जी, अभी गाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे स्वशासन का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्वशासन था, इसमें जो हमारे समाज के अलग अलग अंग हैं, अगर हम महिलाओं का जिक्र करें, अगर हम हाशिए पर आए लोगों का जिक्र करें या किसानों का जिक्र करें, तो कैसी नीतियां मिलती हैं, क्या जानकारी हमारे पास है इनसे जुड़ी?
1: देखिए, चोल वंश के इंस्क्रिप्शंस भी हैं और ताम्र पट्टिकाएं भी हैं
0: जी,
1: और ये बहुत अच्छी मात्रा में है। नॉर्थ में हमें इतने नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ इन्वेजन ज्यादा हुए तो काफी नष्ट हो गए थे, लेकिन दक्षिण के छोर पर हमें ये काफी इंस्क्रिप्शन सर्वाइव कर गए हैं। उससे हमें उस समय के समाज का काफी अच्छा दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। इस समय कास्ट सिस्टम तो कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे यहाँ का जो सामंतवाद था, एक्चुअली वो यूरोपियन सामंतवाद की तरह नहीं था। यहाँ पर जोर जबरदस्ती और हिंसा मुख्य माध्यम नहीं था समाज में व्यवस्था बनाने का। इसीलिए हम पाते हैं कि यूरोप वगैरह में, यहाँ तक कि चीन में कृषक विद्रोहों की बड़ी परंपरा थी
0: जी,
1: यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा। एक बड़ी रोचक बात यह है कि बड़े विद्रोह कहीं नहीं हुए
0: जी,
1: हिंसा की जरूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए शायद जो आर्मी भी थी, जैसे चोल वंश की आर्मी करीब 100,000 स्टैंडिंग आर्मी थी और करीब 100,000 उनके लेवीज, यानी कि वो जो नायक वहां के जो सामंत होते, नायक बोलते थे, उनसे मंगवा सकते थे
0: जी।
1: ये इसकी तुलना करें जो बाद की सेना है, जैसे मुगल सेना थी, करीब 6,00,000-8,00,000 की सेना थी, उसका लैंड रेवेन्यू से ही खर्चा चलता था
0: जी,
1: तो लैंड रेवेन्यू उस समय कहीं ज्यादा था। जो चोल वंश में हम देखते हैं, ज्यादातर 1/4 से 1/6 तक कहा जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, कितना लैंड रेवेन्यू जाएगा सरकार को। अक्सर होता है कि जितना केंद्र लेता है उतना ही करीब लोकल जमींदार वगैरह भी ले लेते हैं
0: जी।
1: तो उसको आप मान लीजिए बहुत से बहुत 40-50% किसान को देना पड़ता था, जबकि हिस्टोरियन नॉर्थ के बारे में बताते हैं 70-80% किसान से ले लिया जाता था रेवेन्यू। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी चोल वंश के समय में कि हिंसा कम करके ब्राह्मणों के माध्यम से समाज में एक आइडियोलॉजी को, और इसी के साथ भक्ति आंदोलन भी आ गया था
0: जी।
1: अलवर और नयनार इस समय दक्षिण के अंदर बहुत सफल एक वैष्णव और शैव भक्ति आंदोलन मना रहे थे, तो उससे कोई बड़े विद्रोह का कहीं उदाहरण नहीं है
0: जी।
1: आपने महिलाओं के लिए पूछा था, महिलाओं में भी हम देखते हैं, ये तो था कि सुपीरियर मेल को माना जाता है, रिचुअल स्टेटस उसका ज्यादा है, लेकिन पर्दा नहीं था। और हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं इन इंस्क्रिप्शंस में कि कई जगह महिला गांव की प्रधान होती थी। इसके कुछ एग्जांपल्स मिले हैं
0: जी।
1: महिलाएं सेंट्स थी, वाद विवाद में भाग लेती थी, तो शिक्षा भी उनको इसका मतलब मिलती थी पूरी। और जो बाद में पर्दा वगैरह नॉर्थ में आ गया वो यहाँ नहीं था, ये एक बहुत अच्छी एक बात नजर आती है।
0: तो कुल मिलाकर समाज के जो सभी तबके हैं उनके कल्याण के लिए साम्राज्य में कार्य किया जाता था जी, समरसता ज्यादा थी। मनीषा जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे पास इस तरह के तथ्य प्राप्त होते हैं कि जो चोल साम्राज्य के पास अपने समय की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी और उस समय भी दक्षिण पूर्व एशिया तक बिजनेस होता था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं चाहूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएं।
2: चोल जो साम्राज्य था उसके पास बहुत ही स्ट्रांग नेवी थी, और उस नेवी के बलबूते पर हम देखते हैं कि जो राजराज चोल थे उन्होंने जो है काफी अपने क्षेत्र का विस्तार किया। श्रीलंका, मालदीव, इन क्षेत्रों को वो अपने जो है तहत लेकर आए। और उसके बाद जो है राजेंद्र चोल जो है, हम देखते हैं कि उन्होंने जो है शैलेंद्र जो शासक थे उन पर आक्रमण किया। इनफैक्ट जो है ये कहा जाता है कि इतनी अच्छी उनकी नेवी थी चोल शासकों की कि उन्होंने जो ये बंगाल की खाड़ी है उसको एक चोलों की झील के तौर पर उसको परिवर्तित कर दिया। इतनी शक्तिशाली इनका जो है नेवी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो राजेंद्र चोल जो है वो अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ जो है दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे, और शैलेंद्र जो वहां के शासक थे जो कि बहुत ज्यादा व्यापारिक जो संबंध थे यहाँ से तमिल जो गिल्स के साथ, यहाँ पे श्रेणियां जो यहाँ पे मौजूद थी जैसे कि अय्यावोल जो श्रेणी थी, उसके अलावा यहाँ पे नाना देसी नाम की जो श्रेणी थी, मणिग्रामम नाम की जो श्रेणियां थी, ये श्रेणियां यहाँ पर मौजूद थी साउथ ईस्ट एशिया के।

0: अंदर और वो अपने व्यापार में जो है लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे शैलेंद्र जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाने शुरू किए थे, परेशान करना शुरू किया था तमिल शासकों को और तमिल जो व्यापारी हैं और उनको जो है उन्होंने परेशान करना शुरू किया, क्योंकि जो चोल साम्राज्य है उसका जो व्यापारिक संबंध है वो सीधा जो है चीन के साथ स्थापित हो रहा था। ये बात भी उनको नागवार गुजरी और इसलिए जो है वो कुछ तरीके के पाबंदियां लगा रहे थे, जैसे कि अपने जो डॉक्स हैं वहां पे पायरेट्स को जो है अपॉइंट कर दिया जाता था उनके द्वारा, जिससे समुद्री जो लुटेरे हैं कि वो उनके माल को लूटें और उनको परेशान करें। तो ये जो श्रेणियां थी बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे बड़ी बात ये जो मणिग्रामम, नाना देसी, अय्या वोल, ये जो श्रेणियां थी ये हम देखते हैं ये चोल जो सम्राट हैं शासक हैं उनको पैसा भी उधार दिया करती थी, मनी लेंड किया करती थी। तो इसलिए जो है हम देखते हैं इसकी वजह से, और उसके अलावा जो राजेंद्र चोल की जो अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी, दिग्विजय की जो उनकी नीति थी, उसके तहत उन्होंने अपनी इस नेवी, इस मजबूत नेवी के साथ जो है साउथ ईस्ट एशिया पर आक्रमण किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरा उनको उन्होंने पराजित कर दिया पर उसको एनेक्स नहीं किया, उसको अपने साम्राज्य में उन्होंने शामिल नहीं किया। उन्होंने केवल क्या किया, अपने जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों के लिए वहां से कुछ जो है बेनिफिट्स लिए, और यही नहीं किया बल्कि उन्होंने वहां पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी एस्टेब्लिश किए। राजेंद्र चोल ने जो है शैलेंद्र जो थे एक शासक उस समय के उनकी पुत्री के साथ विवाह किया, और ये विवाह किसी पीस ट्रीटी का जो है नतीजा नहीं थी, वो सिर्फ जो है उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा वातावरण अपने व्यापारियों को देने के लिए कि एक उनका
1: संबंधों का विस्तार
0: करने के लिए उन्होंने उसको वहां पर किया। हम देखते हैं कि अगर ये नेवी अगर नहीं होती, इतनी पावरफुल नेवी नहीं होती, तो ये ऐसा करना और जो है साउथ ईस्ट एशिया तक जाकर जो है किसी को पराजित करना बड़ा मुश्किल होता। और नेवी के साथ एक चीज हम और देखेंगे कि यहाँ पर नेवी के साथ साथ ये जरूर है कि कार्टोग्राफी इनकी बहुत अच्छी होगी। मैप्स, बिना मैप्स के आप किस तरीके से किस दिशा में आपको जाना है, तो हिंदुस्तान का मैप और आपका जो दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसका मैप की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो कार्टोग्राफी बहुत अच्छी रही होगी यहाँ पर। और दूसरी चीज एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या जो है होना वो बहुत जरूरी है अगर आप समुद्री यात्रा कर रहे हैं, समुद्री व्यापार पर जा रहे हैं। किस समय जाया जाए, तो हम देखते हैं कि ये जो है मॉनसून जो विंड्स होती थी उसका प्रयोग करते थे। तो मॉनसून विंड्स जब चलती थी उस दौरान जो है उन हवाओं के माध्यम से उसका इस्तेमाल करते हुए जब तब ये पूर्व की तरफ जो है जाते थे, और जब सीजन का बदलाव होता था तो इनकी रवानगी होती थी।
1: जी, यानी वो हवाओं की दिशाएं जो है नाव को आगे बढ़ाती हैं, जहाजों को आगे बढ़ाती रहे। बहुत ही रोचक बात ये आपने बताई। और हम ये भी देखते हैं कि आज भी हमारी नौसैन्य कमान जो है देश में अलग अलग स्थान पर, वहां हम राजराजा चोल की प्रतिमा देखते हैं, तो इतिहास का वो सूत्र हमारी आधुनिक नौसेना से भी जुड़ता है। हम जब देश में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम उस समय से यानी अपने इतिहास से भी ये शिक्षा लेते हैं। तो इसी मोड़ पर आपकी पसंद का एक गीत मनीषा जी,
0: क्योंकि हम लोग चोलों की बात कर रहे हैं, चोल शासकों की बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में मुझे एक पिक्चर ध्यान आ रही है, एक मूवी जिसको मणि रत्नम साहब ने डायरेक्ट की है और इसका नाम है पोनिन सेल्वन। चोल जो राजा थे, राजराज चोल, उनके जीवन से इंस्पायर्ड है। तो उस मूवी का यदि कोई सॉन्ग, अगर कोई गाना जो है अपने ऑडियंस को सुना सकें तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होगा।
1: जी बिल्कुल जी।

0: तो इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में, और इस गाने ने हमें झलक दी चोल साम्राज्य की। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं, मनीषा अग्निहोत्री और देवेश विजय, और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की, साथ ही चोल साम्राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी बात कर रहे हैं, ताम्र पट्टिकाओं की बात हो रही है। अब एक और महत्वपूर्ण जो वस्तु है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी देवेश जी आपसे। कुछ समय पहले जब हमारे नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ, उस समय सेंगोल के बारे में जाना, तो सेंगोल भी चोल साम्राज्य से जुड़ा है, मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप हमें कुछ बताएं।
1: ये बहुत अच्छी पहल रही हमारे गवर्नमेंट की, जिसको बहुत शुभ माना जाता है, और पार्लियामेंट का भी क्योंकि नया भवन का निर्माण हुआ है उसमें इसको स्थापित करके एक आकृष्ट भी किया गया कि इस महान जो दक्षिण भारतीय परंपरा की ओर ध्यान जाए सब लोगों का, तो ये एक बहुत ही शुभ चीज कदम उठाया गया। पर मैं यहाँ पर ना एक श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब हम पट्टिकाएं या इंस्क्रिप्शंस कुछ भी देखते हैं जो इतिहास के स्रोत होते हैं तो हमें खाली ध्यान इस पर नहीं देना चाहिए कि मेंशन क्या किया गया है, बल्कि ये भी कि एब्सेंट क्या
0: जी।
1: अब मैं एक बहुत अच्छी चीज चोल वंश की जो एब्सेंट है, सोर्सेज में मेंशन नहीं आता है, पर हम कंपेयर करके समझते कि भाई उत्तर में ऐसा हो रहा था
0: जी,
1: यहाँ पे है ही नहीं। उत्तर में जौहर हो रहे थे, उत्तर में स्लेव मार्केट्स लग रही थी, हिंसा ब्रूटल बैटल्स तो दक्षिण में भी होती थी, लेकिन किस सहजता से दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारी संस्कृति पहुंच गई, उसमें कोई ज्यादा हिंसा नहीं हुई
0: जी।
1: तो ये एक कंट्रास्ट है, जौहर जैसी चीज कभी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता था जीतने के बाद। ये एब्सेंट जो चीजें हैं वो भी हमें नोट करनी चाहिए।
0: तो मैं मनीषा जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, अगर हम कला संस्कृति की बात करें, तो वो उस समय कैसी थी चोल साम्राज्य के समय?
2: मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक तरीके से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल चोल वंश में किया गया
0: जी।
2: स्थापत्य कला में जो है उसका बहुत ही बखूबी उसका इस्तेमाल किया गया
0: जी।
2: मैं एक एग्जांपल लूंगी यहाँ पर, तंजौर में जो बृहदेश्वर टेंपल है
0: जी,
2: जिसका एक्चुअल नाम जो है, वास्तविक नाम जो है राजराजेश्वर मंदिर है, और ये बाद में बृहदेश्वर मंदिर जो है मराठों के समय में इसका नाम रखा गया
0: जी,
2: जो कि बेसिकली शैवाइट मंदिर है, शिव का लिंग जो है यहाँ पे स्थापित है। तो यदि आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखें, बृहदेश्वर मंदिर को, मैं अभी हाल में होकर आई और मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी उस मंदिर को देखकर, क्योंकि उत्तर भारत में हमें इस तरीके का कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिलता है उसकी तुलना का। तो उसमें सबसे रुचिकर बात जो यहाँ पे जो स्थापत्य कला की है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मंदिर के बारे में डॉक्यूमेंटेशन मंदिर के अंदर ही किया गया है। इसके अंदर पूरी अगर आप दीवारें देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर की, उस पे सब पे अभिलेख लिखा गया है
0: जी,
2: इंस्क्रिप्शंस है, और उसमें जो है अभिलेख के अंदर वहाँ पे रोज के रोज किस तरीके से कार्यभार मंदिर का चलाया जाता है
0: जी,
2: उसके बारे में सारी सूचना दी गई है, किस तरीके से प्रशासकीय कार्य होते हैं, कौन कौन एम्प्लॉयर्स हैं, म्यूजिशियंस कौन से हैं, गणिकाएं हैं तो कौन है, वो सारी

0: डिटेल्स उसके अंदर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो है इस मंदिर के अंदर जितनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों का बारीकी से डिटेल मिलता है। उसका आकार क्या है, क्या वेट है, उसका एक एक डिटेल जो है मूर्तियों का उसके अंदर उल्लेख उसका किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही थी, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो बहुत बड़े गोपुरम मिलते हैं, दो गोपुरम गेट्स जो होते हैं, बहुत ही भव्य जो है द्वार इसके बने हुए हैं। और उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो भव्य द्वार बने गए हैं ये जो है इसमें मॉर्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसमें सीमेंट लाइन ये जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसको इंटरलॉकिंग जो पद्धति है उसके द्वारा इतने बड़े ऊंचे द्वार जो है ये खड़े किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप मंदिर का विमान देखें, जो गर्भगृह के ऊपर जो विमान है उसको अगर देखें तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर दो नंदी जो बुल्स हैं वो बैठाई गई हैं, और उसके साथ साथ जो है कलश भी हैं जो कि बहुत हैवी हैं, और जो कि 80 टन का जो ग्रेनाइट है उसको उसके ऊपर टिका के रखा गया है। तो 80 टन का ग्रेनाइट बहुत भारी ग्रेनाइट है जिसको बैलेंस करके उसको लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, और ग्रेनाइट जो है वो बहुत हैवी ग्रेनाइट्स हैं, और ये ग्रेनाइट जो लाए जाते थे वो 65 किलोमीटर दूर जगह से लाए गए थे, इरूर नाम की जगह है वहां से उसको लेके आया गया। और ये जो ग्रेनाइट है ये ग्रेनाइट एक ऐसी क्वालिटी के ग्रेनाइट है जो कि जो रॉक्स हैं रॉक्स की मन जो है मिट्टी के अंदर जाने के बाद बहुत डीप में जाने के बाद जो है वो उस तरीके की जो है ग्रेनाइट बन के निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्वेरिंग में कितना मुश्किल रहा होगा इतने भारी भारी ग्रेनाइट को निकालना, फिर उस ग्रेनाइट को 65 किलोमीटर लोड करके लाना, उसको अनलोड करना, और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल करना। तो कोई अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होगी तभी ये हो रहा होगा। और उसके लिए यहाँ पे इस तरीके की सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा दी जा रही होगी, इस तरीके के इंजीनियर्स जो है वो तैयार किए जा रहे होंगे। एक और जो बात मैं प्रौद्योगिकी के कंटेक्स्ट में जो बोलना चाहूंगी बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, यहाँ पे 2010 में एएसआई ने एक मंदिर के साथ ही जो है एक होल किया था। होल करने पे उनको वहां पे सैंड मिला, और उसके बाद ही पता चला कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सैंड बॉक्स के ऊपर टिका हुआ है। सैंड बॉक्स किस लिए, क्योंकि ये सैंड बॉक्स जो है वो अर्थक्वेक को रोकने का काम रेजिस्टेंट है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ये जो सैंड बॉक्स है। तो आप सोचिए कि उस समय इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए
1: दूरदर्शिता रही होगी,
0: तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ बेहतरीन तरीके से, यहाँ पर हमें उसका एग्जांपल देखने को मिलता है। उसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर की यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो शिवलिंग है पूरा बहुत बड़ा शिवलिंग है, दो स्टोरी जो बिल्डिंग है उसके अंदर वो शिवलिंग पूरा फिट कर होता है। नंदी बुल जो है वो एक ही ग्रेनाइट से बनाई गई है वो है वहां पर। उसके अलावा आप देखेंगे जो वहां पर अंदर जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा है वहां पे, लेकिन आपको उसमें फ्रेस्कोज मिलेंगे उनकी वॉल्स पे, पूरा जो है आपको डांसिंग गर्ल्स और उस तरीके की जो है पेंटिंग्स जो है आपको देखने को मिलती है। और ये मंदिर हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लाइब्रेरीज होती थी, यहाँ पे जितने भी तमिल आपके जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता था, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको संजोया जाता था लाइब्रेरी में। और ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये शिक्षा के केंद्र भी थे, यहाँ से शिक्षा जो है वो दी जाती थी, खासकर जो धर्म से संबंधित जो शिक्षा है, वेद है, पुराण है, आगम टेक्स्ट है, ये सब वो पढ़ाया जाता था। और उसके बाद जिसको फर्दर जो है कुछ अगर अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए एडवांस्ड जो है एजुकेशनल सेंटर्स होते थे जिनको मर्चेंट सपोर्ट करते थे, रॉयल फैमिली सपोर्ट किया करती थी और मंदिर सपोर्ट किया करते थे।
1: यानी हम एक तरह से देखें तो मंदिर शिक्षा के केंद्र थे, और हमने ऐसा सुना है कि हर मंदिर के प्रांगण के आसपास चिकित्सालय भी उस समय होते थे, मंगल कार्य वहां पर होते थे, वैवाहिक कार्य होते हैं वो होते थे, तो सामाजिक कार्यों के लिए भी मंदिर के प्रांगण का
2: लोन भी देते
1: और स्कॉलरशिप और लोन भी दिया जाता था मंदिर से ही। तो इतनी जानकारी हमें मिलती है चोल साम्राज्य के बारे में, और मंदिर के बारे में आपने हमें इतना कुछ बताया। यहाँ पर आपकी पसंद का एक गाना,
0: मेरी फरमाइश जो है इस समय है, ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, ये मेरा इंडिया।
1: तो आपकी पसंद का ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम चोल साम्राज्य की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख हुआ है जो अपने देश आई हैं और इनकी क्या विशेषता है ये हमने जाना है हमारे विशेषज्ञों के माध्यम से। देवेश विजय जी सेवानिवृत्त प्रोफेसर इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मनीषा अग्निहोत्री जी हैं हमारे साथ। मनीषा जी, हम गाने से पहले बात कर रहे थे मंदिर की और उसकी विशेषताओं की। नटराज की जो एक मूर्ति है, कहा जाता है कि चोल साम्राज्य से जुड़ी है और ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और मैं कहूंगी कि कलाकार तो विशेष रूप से इससे जुड़ते हैं। आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं।
1: ये जो मूर्ति है, एक तो यहाँ पर क्या था कि ये एक तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है
0: जी,
1: उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया। मैं ये अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी ये टेक्निक क्या होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो बी वैक्स जो होता है उसको जो है एक तरीके का जो कपूर होता है कैम्फर, उसको तेल में उसको गूंद कर उससे एक सांचा बनाया जाता था
0: जी,
1: और उस सांचे में फिर जो है मिट्टी का लेप लगाया जाता था, और उस मिट्टी का लेप लगाने के बाद उसको जो है भट्टी में जो है उसको पकाया जाता था। भट्टी में पकाने के बाद जो है वो जो वैक्स होता था वो तो पिघल के हट जाता था और जो क्ले का जो सांचा था वो निकल कर आता था, और उसके बाद जो ब्रॉन्ज की जो स्कल्पचर्स बनाई गई या मूर्तियां बनाई गई उसका जो धातु है, और ये धातु जो है वो पंच धातु होते थे जिसमें कि ब्रॉन्ज कॉपर लेड ये सारा जो है मिलाकर जो है इसको बनाया जाता था पंच धातुओं को, तो उसको फिर मेल्ट करके जो है उस सांचे के अंदर डाल दिया जाता था, और जब वो सांचा उसमें सेट हो जाता था सूख जाता था तो उस सांचे को तोड़ दिया जाता था जब वो धातु जो है सेट हो जाता था। तो इस प्रकार से एक सांचा जो है वो केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता था, उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता था। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन जो है इस टेक्निक के द्वारा जो है निर्मित हमारे पास बहुत सी ब्रॉन्ज की जो है हमारे पास मूर्तियां
0: जी है। क्या आज भी हमारे पास है मंदिरों के अतिरिक्त
1: हमारे पास म्यूजियम्स में है, म्यूजियम में बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो म्यूजियम
2: विदेशी म्यूजियम्स में भी है
0: जी।
2: नटराज बहुत सेलिब्रेटेड पीस ऑफ आर्ट माना जाता है
0: जी। इस रोचक बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। देवी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारे संग्रहालय हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं इतिहास को भविष्य से जोड़ने में?
1: इससे पहले मैं प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक बात कहना चाहूंगा, जो कि बड़ा सकारात्मक उपयोग चोल वंश ने किया, इरिगेशन। हमारे साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा जो समस्या रही है वो मॉनसून का फेलियर और उसके साथ आने वाले फेमींस में लाखों लोगों का मरना। उसके लिए चोल वंश ने खास तौर पर न केवल टैंक्स बड़े स्तर पर बनवाए जिनमें पानी इकट्ठा रखा जा सके,
0: जी,
1: डैम्स का भी कंस्ट्रक्शन, कावेरी पर कैनाल्स में डाइवर्ट करने के लिए पानी को ये शुरू किया। ये चोल वंश का, क्योंकि राजा ठीक है टैक्स ले रहा है अपने शौर्य के लिए, अपने वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या दे रहा है
0: जी?
1: ये बहुत वेलफेयर पॉलिसी क्या है, ये कंपेयर किया जाना चाहिए। ये सारे बड़े बड़े साम्राज्यों ने नहीं किया, लेकिन चोल वंश का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था
0: जी।
1: और एक और इसी तरह से हमें उनकी इंस्क्रिप्शंस और इन ताम्र पट्टिकाओं में मिलता है टैक्स रिलीफ। ड्राउट्स का मेंशन आया है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं आया। फॉरेन ट्रेवलर्स भी कई आए, चीन से भी आए, जो दक्षिण में भी आए थे, कई अरब ट्रेवलर्स आए, लेकिन किसी ने भी ऐसा मेंशन नहीं किया है जैसा शाहजहां के टाइम में करोड़ों लोग मर गए थे जब दक्कन में अकाल पड़ा। अंग्रेजों के टाइम में कितने करोड़ों लोग मर जाते थे
0: जी,
1: लेकिन चोल वंश में ऐसा नहीं हुआ। उसमें दो ये चीजें थी, एक तो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी का यूज
0: जी, और कावेरी नदी पर बांध जो है आज भी जानते हैं उसके बारे में लोग जी,
1: और कनाल सिस्टम अभी तक है, और टैक्स रिलीफ।
0: पोनगेरी जलाशय उनको कहा जाता था
1: जी,
0: जी, जो करते थे सिंचाई व्यवस्था,
1: ये बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान था।
0: तो आपने बताया कि सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और दूसरा मुश्किल के समय लोगों को कर से छूट दी जाती थी, और जो कार्य हैं वो किए जाते थे उनकी भलाई के लिए जी।
1: और एक और चीज बड़ी अच्छी थी स्थानीय स्तर पर, वो है कि जो न्याय व्यवस्था थी वो भी काफी हद तक स्वशासन का हिस्सा थी
0: जी।
1: और कहीं भी हमें उल्लेख नहीं मिलता कि फोर्स का बहुत ज्यादा, कहीं प्रेजेंस नहीं थे, खाली ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं, ऑस्ट्रेसिज्म से
0: जी
1: व्यवस्था बरकरार रख ली जाती थी
0: जी।
1: ये बड़ा ही पॉजिटिव पहलू था
0: जी। तो हम संग्रहालयों का उल्लेख करते हैं, हमारे युवा साथी अगर इस बारे में ज्यादा जानना चाहें तो ऐसे में उनके पास क्या क्या माध्यम है?
1: देखिए, पुस्तकों के अलावा और पॉडकास्ट के अलावा और आपके प्रोग्राम के अलावा उन्हें जरूर म्यूजियम जाना चाहिए, और जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष देख कर कि मोहनजोदड़ो में ये व्यवस्था थी ड्रेनेज की, या जो

0: आप नालंदा के बीच में खड़े होकर सांझ के समय जो महसूस करेंगे वो केवल पुस्तकों से या आर्टिकल्स को पढ़ के नहीं आ सकता। तो इन सब का जरूर विजिट करना चाहिए युवाओं को और ग्रुप बना के जाना चाहिए। उसमें जो चर्चाएं होती हैं, जो आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, वो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है।
1: जी, यानी प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा प्रेरित किया ही है कि पर्यटन भी सुचारू रूप से चले, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है और पर्यटन के दौरान हम जो सीखते हैं कई बार वो हमें किताबों में नहीं मिलता, व्यावहारिक ज्ञान अलग होता है। जी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने चोल साम्राज्य के बारे में जो जाना है, समझा है, उसे हम और गहन अध्ययन का हिस्सा बनाएंगे और हम संग्रहालयों की यात्रा भी करेंगे, हम दौरा करेंगे ऐसी जगह का जहां से हमें अपने ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में और जानने समझने को मिले, और हमारे पर्यटन में भी हम ऐसी जगह जरूर जाएंगे जो हमें बताती हो हमारी संस्कृति के बारे में और हमारे जो अलग अलग साम्राज्य रहे हैं उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। तो देश काल परिस्थिति को अगर हम समझना चाहें तो ये भी हमें जानना होगा कि इतिहास हमेशा देश काल परिस्थिति के बारे में अलग अलग तरीके से बताता है और उससे बहुत कुछ सीखकर हम भविष्य की वो डोर थाम सकते हैं जो हमें हमारी जगह पुख्ता रखने में मदद करेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत मानचित्र पर सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पूरी सभ्यता है, एक पूरी संस्कृति है जिसने सदियों तक दूसरे देशों को प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो इसी मोड़ पर मैं अपने विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश विजय जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा अग्निहोत्री जी आपका।
2: थैंक यू नीलम जी।
1: तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप अभी सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी, जिसमें सुनिए ओम प्रकाश अमर की आवाज में लावनी।

कार्यक्रम लोक मंजरी में आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश अमर की आवाज में लावनी। अगली प्रस्तुति सुनिए, बोल है काशी के बासी अविनाशी।

कार्यक्रम लोकमंजरी में अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश अमर की आवाज में लावनी। प्रस्तुति के बोल थे मूरत विशाल है चंद्रभाल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। सोनू निगम के स्वर में सुनिए फिल्म साथिया का ये गीत, जिसे संगीत दिया है ए आर रहमान ने और लिखा है गुलजार ने।

फाइट क्लब। इस फिल्म से शान और श्रेया घोषाल के स्वर में ये रचना आपने सुनी। नीलेश मिश्रा का गीत और संगीत प्रीतम का। अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फना से। आवाजें हैं सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर खान और काजोल की। प्रसून जोशी के लिखे हुए गीत

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

सलामे इश्क फिल्म से सोनू निगम, श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला के स्वर में समीर की रचना को शंकर एहसान लॉय के संगीत के साथ आपने सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

साइन वेव 106.1 मीटर पर आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार, और दोस्तों इस प्रोग्राम में आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल। और हमारा नंबर है जिस पर आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं, वो है 9868107070 9868107070। लेकिन आज का दिन बड़ा ही खास है, और वो खास इसलिए है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और आज की व्यस्त और भागदौड़ भरी जीवन शैली में जहां लोगों के पास अपने लिए समय निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो आपसे हम ये जरूर कहेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा फरमाइशों को शामिल करें, लेकिन समय को देखते हुए ज्यादातर हम 7 से 8 गाने आपकी पसंद के आप तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन हमारे वो साथी जिनके पसंद के गीत नहीं चले वो क्या करें, सिर्फ मैसेज भेज दें, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन इसके साथ अगर ये हो कि आप अपनी कुछ बातें, कुछ राय, कुछ

लेकिन समय को देखते हुए ज्यादातर हम 7 से 8 गाने आपकी पसंद के आप तक पहुंचा पाते हैं, लेकिन हमारे वो साथी जिनकी पसंद के गीत नहीं चले वो क्या करें, सिर्फ मैसेज भेज दें, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन इसके साथ अगर ये हो कि आप अपनी कुछ बातें, कुछ राय, कुछ आपके दिल में जो चल रहा है वो भी हम तक पहुंचाएंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए कौन कौन सी आदतें अपनाते हैं, और आपको क्या लगता है कि अच्छी सेहत बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज की होती है? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच, बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा योग तो है ही। तो अपनी बातें, अपने जो मन में आप सोचते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमारे साथ बातें साझा कर सकते हैं। फिलहाल आज फादर्स डे भी है, तो हमारे कई साथियों ने कुछ रिक्वेस्ट, जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है, जो हम तक पहुंचा दी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। आप सभी का स्वागत है।

0: स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योगा को जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया बताया। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बैनुल अक्वामी योगा दिन पर लोगों को मुबारकबाद दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज खसूसी योगा प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असेंबली के स्पीकर, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन और तमाम रियासती वज़रा और इंतजामी अहदेदारों ने मुख्तलिफ अज़ला में मुनक़िद योगा सेशन में हिस्सा लिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगा किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी के फोर्ट ग्राउंड में योगा सेशन की क़यादत की। योगा की मश्क करके सेहतमंद रहने का पैगाम देते हुए वजीर आला ने रियासत के लोगों को बैनुल अक़वामी योगा दिन पर मुबारकबाद दी।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया।
1: नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के त्रिवेणी में संगम नोज में शिरकत की, जबकि ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के दी रेजिडेंसी पार्क में शिरकत की। इसी तरह फरुखाबाद, मेरठ, श्रावस्ती, अयोध्या, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, कुशीनगर, चंदौली, मऊ समेत मुख्तलिफ अजला में रियासती हुकूमत के वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने योगा डे के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। योगा डे के मौके पर स्कूलों में ग्रुप योगा मशकें और आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जहाँ तलबा को योगा के जिस्मानी और रूहानी फवायद से आगाह किया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ दो रोजा दौरे पर महोबा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महोबा को 697 करोड़ रुपए के 88 तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। कबल अज वजीर आला गोरखपुर गिरी पहाड़ के दामन में वाकई सिद्ध बाबा धाम पहुंचे, जो गुरु गोरखनाथ की तपस्या की जगह है, और वहां पूजा की। वजीर आला शहर के मोदी मैदान में मुनक़िद जलसयाम से खिताब कर रहे हैं। इसके बाद श्री योगी महोबा से हमीरपुर जिले के राट कस्बे के लिए रवाना होंगे, जहां वजीर आला 636 करोड़ रुपए से ज्यादा के 75 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 221 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें ललितपुर में 1766 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इस मौके पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि बुंदेलखंड तरक्की का नमूना बन रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में हर घर तक नल स्कीम को नाफिज किया जा रहा है, पीने का साफ पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मुल्क भर और बैरून मुल्क मुख्तलिफ शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी मराकज में दाखिला सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1:30 बजे बंद होगा। तुलबा को एक नया एडमिट कार्ड और एक दुरुस्त तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड लाना होगा। 3 मई के इम्तिहान के एडमिट कार्ड आज दुरुस्त नहीं होंगे। मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी के लिए दोबारा इम्तिहान आज मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून ममालिक के 14 शहरों में मुनक़िद हो रहा है। मेडिकल दाखिला इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक मुनक़िद होगा। इस बार उम्मीदवारों को मजीद 15 मिनट का वक्त दिया गया है। रियासत भर के 59 अजला में नीट का दोबारा इम्तिहान लिया जा रहा है। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन खसूसी गैर महफूज ट्रेनें चला रहा है। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवारों को स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।

0: आदत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा पूरी दुनिया को जोड़ने का एक अहम जरिया है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। योग केवल हमारे शारीरिक

मीडियम वेव के मीटर्स पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बाल श्रोताओं का कार्यक्रम बाल मंडल।

नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वंदना दीदी स्वागत करती हूं आपके अपने प्रिय कार्यक्रम बाल मंडल में। बच्चों कैसे हैं आप? भाई हम तो यही सोचेंगे कि गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं और हमारे सभी प्यारे बच्चे मौज मस्ती कर रहे होंगे। भाई ठीक है, मौज मस्ती भी जरूरी है, लेकिन जानते हैं बच्चों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पढ़ाई, खेल और मोबाइल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने हेल्थ पर ध्यान देना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिन कुछ मिनट का योग हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश रख सकता है? बच्चों जानते हैं आज क्या है? आज है 21 जून और 21 जून को हम मना रहे हैं विश्व योग दिवस, और इसी विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे। बच्चों हमने सबसे सुना है योग करो योग करो, पर ये योग है क्या? योग भारत की प्राचीन और अनमोल धरोहर है, और योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि ये मन और मस्तिष्क को भी शांत और मजबूत बनाता है। नियमित योग करने से जानते हैं क्या फायदा होता है? इससे हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी माइंड की एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम कुछ भी याद करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लगता है, या याद किया हम तुरंत ही भूल जाते हैं। तो बच्चों जब आप रेगुलर नियमित रूप से योग करोगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। इसके अलावा योग हमें तनाव, थकान और कई बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, जरा सा काम किया तो थक गए, नहीं मम्मी हमसे नहीं हो रहा। पता है इसका कारण क्या है? कि हमारे शरीर की एक्टिवनेस अब खत्म होती जा रही है, हम ज्यादातर समय या तो टीवी के आगे या मोबाइल के आगे बिता देते हैं। तो योग करने से हमारा शरीर एक्टिव भी बनता है। तो बच्चों आपने भी देखा होगा कि सुबह सुबह पार्कों में लोग योग और प्राणायाम करते हैं, और आप लोग बच्चे हो तो बच्चे भी आसानी से कुछ सरल योगासन कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंग आसन और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इनसे शरीर में स्फूर्ति आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चों आप सुबह स्कूल में पीटी करते हो, है ना? ये इसलिए कराई जाती है जिससे हम दिन भर एक्टिव रहें, और योग हमें अनुशासन और पॉजिटिव सोच भी सिखाता है। और बच्चों जब हम नियमित रूप से योग करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। बच्चों आज के समय में जब मोबाइल और टीवी के कारण फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही हैं, तब योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना और भी आवश्यक हो जाता है। तो बच्चों आप जब भी योग करें तो अपने बड़ों की देखरेख में ही करें। और बच्चों योग के साथ जुड़ा है प्राणायाम। प्राण यानी जीवन शक्ति, सांस, और आयाम का अर्थ होता है विस्तार या अनुशासन। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ हुआ अपनी सांसों पर नियंत्रण करने के लिए, जो हम अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब प्राणायाम के ही अंग हैं। तो इसे करने से हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, जिससे पढ़ाई और काम में लाभ मिलता है। इसके अलावा लंग्स मजबूत बनते हैं, मन को शांत करता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो बच्चों आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, इन सबको जब आप डेली करेंगे ना, तो आप देखना कि कुछ ही दिनों में आपके अंदर खुद ही परिवर्तन आप महसूस करेंगे कि आप अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे हैं और पढ़ा हुआ याद भी रख पा रहे हैं। तो बच्चों जब भी आप प्राणायाम करें तो ये ध्यान रखें कि हमेशा शांत वातावरण में हो, खाली पेट हो, और अगर आपने सुबह आप नहीं कर पाते हैं किसी कारण से और शाम को कर पाते हैं तो भोजन के 3-4 घंटे बाद ही आप प्राणायाम करें। तो बच्चों आइए आज विश्व योग दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम प्रतिदिन कुछ समय योग और प्राणायाम के लिए अवश्य निकालेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो बहनों बच्चों अभी हमने ये सुना कि किस तरह से प्राणायाम हमारे जो है जीवन में लाभ कर सकता है।

0: और एक हमारी बाल मेहमान भी हैं, उनका नाम है गायत्री शर्मा। आइए सुनते हैं कि वो योग के विषय पर क्या कह रही हैं। तो योग की महिमा विषय पर गायत्री शर्मा से बात कर रही है अनिंद्र सिंह। बच्चों ध्यान से सुनिएगा उनकी ये वार्तालाप।
1: बच्चों नमस्कार, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक नन्ही योग साधिका हैं, गायत्री। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और योग की महिमा हम अपने चारों तरफ देखते सुनते हैं, और जब ये दिन आने वाला होता है तो हमारे चारों तरफ योग के शिविर आयोजित होते हैं और हमें योग का चारों तरफ वातावरण है वो नजर आता है। आज हम योग की महिमा को गायत्री जी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: सीताराम अंकल,
1: गायत्री मुझे एक चीज बताएं कि आप छोटी सी उम्र से योग सीख रही हैं
2: जी,
1: कैसे आपको ये योग की तरफ आकर्षण हुआ?
2: योग केवल व्यायाम और हमारे योगासनों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हमारे महादेव आदि योगी कहलाते हैं, तो जैसे जैसे मेरा अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ा तो योग की महिमा जानी और योग के विषय में पढ़ा, तभी से योग की तरफ मैं आकर्षित होती गई। और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं लगी, थोड़ा समय लगा योग में ढलने में, प्राणायाम करने में, व्यायाम करने में, पर सब सही होता गया, मेरी दिनचर्या सही होती गई तो मुझे खुद में ही बदलाव दिखा, तब मैं उसे सकारात्मकता में लेने लगी।
1: आपने कहा कि बदलाव दिखने लगा
2: जी,
1: ये जो आजकल का वातावरण है, आजकल की जीवन शैली है
2: जी,
1: उस जीवन शैली में योग जैसी विधा के लिए समय निकालना, योग जैसी शुरुआत करना
2: जी,
1: वो कितना मुश्किल है?
2: देखिए, शुरुआत में सभी चीजें मुश्किल लगती है, पर अगर हम अपनी दिनचर्या में से कुछ समय अपने रुझान की ओर निर्धारित कर दें, बहुत से लोगों का योग जो है वो इंटरेस्ट भी होता है, उनका आकर्षण भी होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि योग बोझ ही है। तो सबसे अच्छा समय संध्या काल और सुबह होता है योग करने का। तो अगर बहुत ज्यादा देखिए बिजी शेड्यूल है बच्चों का या फिर बड़ों का, तो वो सुबह, जैसे कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ करके योग करती हूँ, आचार्य कुलम पतंजलि में हमारी जो दिनचर्या रहती है उसमें सुबह 4:30 से 5:30 के बीच योग होता है। तो मेरे हिसाब से छात्रों के लिए यही समय सबसे उचित रहेगा, क्योंकि सुबह व्यायाम हो जाएगा, उसके बाद पढ़ाई में पूरे दिन मन लगेगा और मन पूरा फ्रेश रहेगा, बिल्कुल सकारात्मकता के साथ ऊर्जा रहेगी, तो मेरा यही मानना है।
1: योग के प्रति वो एक जो आपने कहा रुझान होता है, तो वो रुझान कैसे पैदा किया जाए, कैसे वो शुरुआत की जाए? क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है और जो अभिभावक हैं या माता पिता हैं
2: जी,
1: उनकी ये इच्छा रहती है अंदरूनी तौर पर कि उनके बच्चे एक निर्धारित समय सीमा या कहें अनुशासित जीवनचर्या का पालन करें और उसमें योग उनकी मदद कर सकता है, तो वो शुरुआत करने के लिए आप कैसे बच्चों को प्रेरित करेंगे?
2: देखिए, अगर हमें किसी ओर आकर्षित होना है तो पहले उसके लाभों के विषय में पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो अगर योगा में किसी को ढालना है तो उसके विषय में, उसके लाभों को किसी को बताना बहुत जरूरी है। तो अगर अभिभावक अपने बच्चों को योग के लाभों के विषय में बताएं और खेल खेल में योग कराना प्रारंभ करें, किसी ने नहीं कहा कि आप सुबह 4:30 बजे उठें, शुरू शुरू में पहले दिन से खेल खेल में योग कराना स्टार्ट करें, संगीत बजाकर, क्योंकि आज के बच्चों को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, संगीत बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हम जानते हैं जुम्बा होता है, वो भी एक तरीके का योग ही है, तो संगीत बजाकर हम खेल खेल में योग करा सकते हैं। तो पहले से ही बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन रखने की आवश्यकता नहीं है, पहले बच्चों को उसके लाभों के विषय में बताएं, और जब धीरे धीरे ऐसा करते करते उन्हें अपनी जीवन शैली, अपने शारीरिक एवं मानसिक तौर पर बदलाव दिखने लगेगा, तभी वो
1: उसके प्रति
2: आकर्षित हो जाएंगे और स्वयं समझ जाएंगे कि हाँ भाई, कुछ अच्छा ही हो रहा है और कुछ लाभ ही मिलेगा हमें इसको करने से।
1: बहुत खूब आपने कहा, जो बदलाव है जीवन शैली में या आपके स्वास्थ्य में
2: जी,
1: वो नजर आने लगता है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा भी योग के कुछ और फायदे हो सकते हैं?
2: देखिए, योग का बहुत ही ज्यादा अभिन्न भाग मेडिटेशन कहलाता है, मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा अभिन्न भाग है योग का। तो अगर छात्रों की बात करें तो आज बहुत ज्यादा

0: डिस्ट्रैक्टिव माइंड हो गया है छात्रों का। तो अगर हम मेडिटेशन के लिए उन्हें प्रेरित करें तो पढ़ाई पर भी ध्यान लगेगा और इधर उधर जो डिस्ट्रैक्शंस है उनसे ध्यान हटकर जो आपका टारगेट है, आपका एम है, मोटो है जीवन का, वो उनको साफ नजर आने लगेगा। तो मेडिटेशन की भी मैं बहुत ज्यादा उन्हें बताऊंगी कि मेडिटेशन बहुत ज्यादा
1: योग के साथ में ध्यान भी बड़ा जरूरी चीज है, आपको वो राह दिखाने के लिए कि आप अनुशासित तौर पर एक जो तय मार्ग है उसकी तरफ चल पाएं,
0: जी,
1: अपने आप को
0: जैसे
1: लेके जा
0: कि
1: पाएं।
0: इंसान पहले यहाँ खड़ा होता है, उसे अपना जो लक्ष्य है वो नहीं नजर आता है, ऐसा लगता है कि धुंध है लक्ष्य के सामने। कुछ कर्म करेंगे तभी वो धुंध हटेगी लक्ष्य के सामने से। तो मेरे ख्याल से ध्यान भी वो चीज है, वो क्रिया है, वो कर्म है जो कि उनके लक्ष्य के सामने से धुंध हटा सके और उन्हें उस पर ध्यान केंद्रित करने में सफलता देगा, ध्यान
1: बिल्कुल
0: जो
1: ठीक।
0: मेडिटेशन है।
1: तो आज हमारे किशोर बच्चों के साथ जुड़ने के लिए और योग की महिमा के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो बच्चों, अभी आपने सुनी योग की महिमा विषय पर। गायत्री शर्मा ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से योग हमें शरीर, मन और आत्मा तीनों के साथ एक संयोग बिठा देता है। और इनसे बात कर रहे थे अनिंद्र जी। बच्चों, आज 21 जून है और आज माह का तीसरा रविवार भी है, यानी जून माह के तीसरे रविवार को हम फादर्स डे भी मनाते हैं। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि माँ हमें प्यार और ममता देती है, तो पिता भी तो हमें हिम्मत और आत्मविश्वास देते हैं। वो हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। और लेकिन पिता का जो प्यार होता है ना बच्चों, वो शब्दों में नहीं बताते, लेकिन उनके हर काम में हमारा भविष्य और हमारी खुशियां छिपी होती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो साइकिल चलाना हमें कौन सिखाता है? हमारे पापा। स्कूल जाते हैं या जीवन में कोई नई चुनौती स्वीकार करते हैं, तब पिता हमारा हाथ थामकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। पिता हमें मेहनत, अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारी का महत्व भी सिखाते हैं। तो बच्चों, फादर्स डे सिर्फ उपहार देने का दिन नहीं है, बल्कि अपने पिता के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है। एक प्यारा सा धन्यवाद, एक शुभकामना का कार्ड या उनके साथ बिताया गया थोड़ा सा समय उन्हें बहुत खुशी दे सकता है।

प्यारे बच्चों, प्रकृति की दुनिया कितनी रंग बिरंगी और रोचक है। पेड़ों पर फुदकती छोटी सी गिलहरी अपनी चंचल हरकतों से सभी का मन मोह लेती है। कभी इधर दौड़ती है, कभी उधर, और कभी अपने नन्हे नन्हे दांतों से कुछ कुतरती नजर आती है। तो आइए मिलते हैं इस नटखट गिलहरी से एक प्यारे से बाल गीत के माध्यम से। कहिए गिलहरी कुतर कुतर, आइए सुनते हैं।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में कभी दिन बड़े और रातें छोटी क्यों हो जाती हैं? कभी रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे। बच्चों, इसके पीछे छिपा है हमारी पृथ्वी और सूर्य का एक अद्भुत रिश्ता। आइए इसी रोचक यात्रा पर चलते हैं। सर्दियों में अक्सर दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, और इसके उलट गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। जानते हैं कैसे? जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी रहती है, तब साल में दो बार ऐसा समय आता है जब दिन या रात अपनी सबसे बड़ी अवधि में होते हैं। और बच्चों, इन्हें ही संक्रांति यानी अंग्रेजी में सोल्स्टिस कहा जाता है। इसी कारण गर्मियों में दिन लंबे और सर्दियों में रातें लंबी होती हैं। और यही तो विज्ञान का कमाल है। दुनिया के कई देशों में लोग संक्रांति के अवसर पर उत्सव मनाते हैं, वो सूर्य और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बच्चों, आज 21 जून है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होती है। और ये वर्ष का वो दिन होता है जब सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सबसे अधिक सीधी पड़ती हैं। इस कारण ये साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। बच्चों, 21 जून का एक वैज्ञानिक महत्व भी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है और सूर्य आकाश में सबसे ऊंची स्थिति में दिखाई देता है, और इस दिन सबसे अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता है। और बच्चों, जानते हैं इस दिन का सांस्कृतिक महत्व भी है। प्राचीन काल से लोग इस दिन को सूर्य, प्रकाश और जीवन के उत्सव के रूप में मनाते आए हैं, और कई देशों में तो लोक नृत्य, संगीत, सामूहिक समारोह और प्रकृति पूजा का आयोजन भी किया जाता है। बच्चों, ये दिन हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने ज्ञान और अच्छाई का प्रकाश दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। ये हमें प्रकृति का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा करना भी सिखाते हैं। तो बच्चों, संक्रांति हमें ये संदेश देती है कि प्रकृति के हर बदलाव के साथ हमें भी सीखते और आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, जंगल की दुनिया में कई मजेदार और सीख देने वाली कहानियां छिपी होती हैं। इन्हीं कहानियों में एक कहानी है एक नन्हे प्यारे और शरारती हाथी की, जिसका नाम है मुन्ना हाथी। मुन्ना हाथी अपनी जिज्ञासा, मस्ती और समझदारी से सबका दिल जीत लेता है। तो आइए चलते हैं जंगल की सैर पर और सुनते हैं मुन्ना हाथी की कहानी।
2: बच्चों, ये कहानी है मुन्ना हाथी की। मुन्ना हाथी का कारोबार सारे जंगल में फैला था। सारे पेड़ पौधों पर उसका एक छत्र अधिकार था। जहां भी उसका मन करता, वहीं जाकर पेड़ों की डालें तोड़ता, पत्ते चबाता और पेड़ों को हिलाता। किसी की मजाल नहीं थी कि उसको रोक पाए। जंगल में शेर ही उसकी बराबरी का जानवर था, किंतु उसे पेड़ पौधों से क्या लेना देना, उसे तो जानवरों के मांस से मतलब था। मुन्ना खूब पत्ते खाता, घूमता और मौज मस्ती करता। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जंगल के रास्ते से कारों का काफिला निकला। रंग बिरंगी कारें देखकर मुन्ना का भी मूड हो गया कि वह भी कार

0: में घूमे, हॉर्न बजाकर लोगों को सड़क से दूर हटाए और सर से कट मारकर आगे निकल जाए। दौड़कर वह टिल्लू मल के शोरूम में जा पहुंचा और अपने मन की बात टिल्लू मल को बताई। टिल्लू मल से अच्छी सी कार दिखाने को कहा। टिल्लू मल का सर चकरा गया। अब हाथी के लायक कार वो कहां से लाए, इतना विशाल काय जानवर और इतनी छोटी कार। बोला, भैया तुम्हारे लायक कार कहां मिलेगी, इतनी बड़ी कार तो कोई कंपनी नहीं बनाती। परंतु मुन्ना हाथी ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि अब तो मैं यहां से कार लेकर ही जाऊंगा। अरे भाई, तुम्हारे लायक कार कंपनी को अलग से आदेश देकर बनवानी पड़ेगी, टिल्लू मल ने हाथी को समझाना चाहा। हाथी ने कहा, तो बनवाओ, इसमें क्या परेशानी है। अरे भाई, बहुत बड़ी कार बनेगी। तो मुन्ना हाथी ने कहा, तो बनने दो, इसमें तुम्हें क्या कष्ट है। जब कार चलेगी तो जंगल के बहुत से पेड़ काटने पड़ेंगे। हाथी ने कहा, क्यों क्यों काटने पड़ेंगे पेड़। तो टिल्लू मल ने कहा कि भाई, कार इतनी बड़ी होगी तो पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे। क्या पेड़ काटना ठीक होगा अपने जरा से शौक के लिए, तुम जरा सोच कर मुझे बताओ। अरे टिल्लू मल जी, कार के लिए पेड़ काटना, अपनी मौज मस्ती के लिए जंगल काटना, ये मुझे स्वीकार नहीं है। जंगल ही तो जीवन है। ऐसा कहकर हाथी जंगल वापस चला गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधे हमारा जीवन है। पेड़ पौधे ही हमारे पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। इनसे ही हमें दैनिक जीवन की सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो इन्हें हमें काटना नहीं है, बल्कि इनका संरक्षण करना है।
1: बच्चों, अभी आपने प्रगति दीदी से सुनी कहानी मुन्ना हाथी। और बच्चों, आजकल गर्मी की छुट्टियां तो चली रही है ना। वैसे गर्मी की छुट्टियां हो या स्कूल की कोई दूसरी छुट्टी, हर बच्चा इन दिनों का बेसब्री से इंतजार करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छुट्टियां केवल खेलने और आराम करने के लिए ही नहीं होती, बल्कि कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का भी अवसर देती हैं। वैसे छुट्टियां आते ही आप लोगों को बस खेलना और टीवी देखना ही अच्छा लगता है ना। बच्चों, खेलना भी जरूरी है, लेकिन पूरा समय उसी में बिताना तो ठीक नहीं। तो छुट्टियों में आप अपने रुचि के अनुसार नई चीजें सीख सकते हैं, जैसे चित्रकला, संगीत, नृत्य, योग, कंप्यूटर या कोई नई भाषा। वैसे छुट्टियों में आप कहानी की किताबें भी पढ़ सकते हो, इससे नॉलेज तो बढ़ती ही है और पढ़ने की आदत भी। इसके अलावा आप अपने गार्डन में पौधों की देखभाल भी कर सकते हो, उन्हें पानी देना, खाद डालना, नए पौधे लगाना, ये सब काम कर सकते हो। और घर के छोटे मोटे कामों में अपने मम्मी पापा की हेल्प भी कर सकते हो। तो बच्चों, छुट्टियों में खेलना, पढ़ना और परिवार की मदद करना सबको जरूरी है, क्योंकि समय का सही उपयोग करने से छुट्टियां यादगार भी बनती हैं और हमें नई सीख भी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, याद रखिए, छुट्टियां केवल आराम करने का समय नहीं, बल्कि अपने सपनों को नई उड़ान देने का अवसर भी है। खेलिए, मस्ती कीजिए, लेकिन साथ ही कुछ नया सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, नेचर से जुड़िए और अपने परिवार की मदद भी कीजिए। इसी संदेश के साथ मैं वंदना दीदी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम बालमंडल में रोचक और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपनी हॉलीडेज का सदुपयोग करते रहिए। और हाँ, योग करना मत भूलिएगा। बच्चों, जय हिंद।

हमारे बाल श्रोता सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम बाल मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में भजन। पहले भजन के बोल हैं

0: सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें।
1: U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf have arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closed the Strait of Hormuz again, citing Israel-Lebanon conflict. The United States said that they will set up the structure of negotiations with Iran and potentially start to make progress on nuclear issues. A delegation of Tehran, led by Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, has named Binaf 168 in tribute to the 168 victims of the tragic school strike. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions three indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के तीन पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
4: मेरा बनना

0: योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए

0: विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कलीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों

हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांतिवार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज हम आपको जो नाटक सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है खिड़की। ये नाटक सोक्रेटिस के वालत्य की मलयालम कहानी जनाला पर आधारित है। इस नाटक को पहले मलयालम भाषा में ही तैयार किया गया था, जिसे आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार समारोह वर्ष 2017 में मेरिट सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ था। हिंदी में तैयार किए गए इस नाटक के निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक खिड़की।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाचार्य कुलदीप सिंह भवानी जी से अनिंद्र सिंह जी की बातचीत।
1: श्रोताओं, योग आज केवल भारत की प्राचीन परंपरा नहीं रही बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। शरीर, मन, आत्मा, इन सब के संतुलन का ये विज्ञान आधुनिक जीवन की अनेक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। आज योग की विभिन्न तकनीकों, आसनों, उनके लाभों, इन सब बातों पर और उनको समझने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य कुलदीप भवानी जी। मैं इनके बारे में बता दूं, आप एक योगाचार्य तो हैं ही, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में भी आप सेवाएं दे रहे हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आगरा आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार
2: जी। नमस्कार
1: कुलदीप जी। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को यही समझाने की कोशिश करिए कि योग का वास्तविक अर्थ क्या है और इसकी मूल जो अवधारणा है वो क्या है।
2: योग, जैसा कि लोगों ने माना हुआ है, लोगों की धारणा है कि योग सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की एक एक्सरसाइज है,
1: शारीरिक व्यायाम समझ।
2: शारीरिक व्यायाम के रूप में हमने अभी तक इस योग को देखा है, लेकिन कमाल की बात है, ये हमारे लिए बड़ा ही गौरवान्वित होने वाला विषय है कि योग की सही जो स्थान है, हम भारतवासी उस स्थान तक पहुंचने से कहीं ना कहीं चूक

0: रहे हैं और इसकी महत्वता, इसकी उपयोगिता को विश्व भर समझ रहा है और इसको अपने जीवन में लागू कर रहा है। तो योग कोई शारीरिक व्यायाम का साधन नहीं है। योग का सही अर्थ होता है, मैं इसकी कोई व्याख्या में नहीं जाऊंगा गहरी
1: जी जी
0: व्याख्या में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि जीवन उपयोगी कैसे हो सकता है, स्वास्थ्यवर्धक कैसे हो सकता है, क्योंकि आज का हमारा जो समाज है वो नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है। हम लोगों के अस्पताल ऐसे ऐसे रोगों और ऐसे ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जहां पर डॉक्टर्स के पास भी उन रोगों का कोई इलाज उनके पास बैठ नहीं रहा है,
1: जी जी
0: सारी रिसर्चेस फेल हो रही हैं। लेकिन योग की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो कि आपके जीवन से सिर्फ रोगों को दूर करने की क्षमता नहीं रखती, आपके जीवन में सामंजस्य बिठाने की, आपका मानसिक संतुलन, आपका शारीरिक संतुलन और आपका आत्मिक संतुलन, और मैं समझता हूं कि इन तीन चीजों के अलावा जीवन में कुछ विशेष बचता नहीं है।
1: अगर सारी चीजें हमारी संतुलन में हैं
0: जी
1: तो शायद ये जो जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी व्याधियां हैं,
0: जी
1: इन सब से हम मुक्ति पा लेते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। तो मैं कह रहा था कि योग सिर्फ कोई शारीरिक क्रिया करने का माध्यम नहीं है। योग शब्द का सही अर्थ जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने जो ग्रंथों में लिखा और जो हमारे समाजों तक पहुंचाया, योग का अर्थ है कि आपके शरीर को आनंद की स्थिति में ले जाना। योग का अर्थ है कि कैसे भी करके आपके बिखरे हुए जीवन को संभालना, उसे संवारना। लेकिन हमने सिर्फ इसको शारीरिक क्रियाओं से जोड़कर इसको रख दिया, क्यों? और ऐसा करते ही क्या हो गया कि अगर ये सिर्फ शारीरिक क्रिया रह गई तो शारीरिक
1: उसकी
0: क्रिया,
1: व्यापकता को हमने समेट दिया।
0: तो शारीरिक क्रियाएं तो लोगों के पास फिर विकल्प हो गए। विकल्प के नाम पर जैसे क्या है कि वो हेल्थ क्लब जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, लोगों को बताया गया कि आप डांस कर लो, डांस इट्स ऑल्सो अ फिजिकल एक्सरसाइज, लोगों को बताया गया जुम्बा कर लीजिए, कुछ नहीं होता तो आप एक काम कीजिए कि चाइना के लोग जो कर रहे हैं उसे कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के लोग जो कर रहे हैं उसे कीजिए, जापान के जो लोग कर रहे हैं उसे कीजिए। लेकिन हमारे मूल में, हमारे जीवन में जब योग जैसी स्थिति को पैदा होने से रोकने के लिए बाहरी चीजें, आंतरिक चीजें सभी प्रयास कर रही हैं, लेकिन मैं फिर भी भला कहूंगा उन लोगों का जो इस विधा को कैसे भी करके जीवित रखे हुए हैं। मैं कहूंगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, शायद पूरी दुनिया दिवाली नहीं मनाती, शायद पूरी दुनिया होली नहीं खेलती, शायद पूरी दुनिया में वो सारे त्योहार नहीं मनाए जाते जो भारत में हम लोग मनाते हैं, लेकिन योग एक त्योहार की तरह पूरा विश्व इसको
1: वैश्विक
0: मनाता है,
1: त्योहार के तौर पे मना रहे
0: एक
1: हैं।
0: वैश्विक त्योहार पर, एक गेट टुगेदर के रूप में इसको मनाते हैं कि एक दूसरे से मिलने का साधन है योग। तो योग शब्द का अर्थ मैं आज आपको बताता हूं कि युज धातु से इस शब्द का निर्माण हुआ। युज धातु से जब इस शब्द का निर्माण हुआ तो इसका अर्थ निकलकर जो आया कि योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। अब किससे जुड़ना और क्यों जुड़ना? जैसे कि हमारा जीवन जहां से शुरू हुआ, हम सबसे पहले मां के गर्भ में जुड़े तो योग हुआ, उसके बाद जब हम इस धरा पर आए तो सबसे पहले हमने इस धरा के साथ क्या किया, अपना जोड़ किया, तो वो योग हुआ। उसके बाद जब हमारा जीवन शुरू होता है तो सुबह कहते हैं कि सुबह से जीवन शुरू होता है और शाम को आपका जीवन एक ब्रेक ले लेता है, आप वहां
1: अंतराल
0: पर
1: बात है।
0: विराम आ जाता है। वहां पर जब कोई छोटा बच्चा नींद से जागता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करके खींचता है, योग में इसको कहा गया ताड़ासन। अब हम लोगों ने क्या किया है अपने जीवन में कि बचपन में तो हम जब थे तब तो हम अपने शरीर को खींचते थे और उन सब चीजों को हमने बाद में आसनों के रूप में भी करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारियां आई, जैसे ही हम समाज में अपना स्थान बनाने लगे तो हमने अंगड़ाई तक लेना बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक हम लोगों का जीवन हम खुद पहुंचा रहे हैं। अगर आपसे एक अंगड़ाई तक नहीं ली जा रही तो मत मनाइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मत जाइए कहीं पर भी अपने शरीर को ठीक करने के लिए। सबसे पहले जो योग शुरू होता है आपकी आंखें खुलने से शुरू होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जुड़ना, ये बात शारीरिक क्रियाओं की हो गई। अब योग आपको जुड़ना सिखाता है किससे? प्रकृति से, क्योंकि जीवन एक उधारी है प्रकृति की।
1: बिल्कुल ठीक।
0: जीवन हमें मिला है तो पहला जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि प्रकृति के जो नियम हैं हम उन्हें ना भंग करें। जैसे कि सबसे श्रेष्ठ कृति हमने मनुष्य को ही माना, हमने गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, शेर, हाथी, इनको नहीं माना श्रेष्ठ कृति, क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो सूझबूझ की जो शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है, वो उन लोगों से ज्यादा है,
1: बेहतर है।
0: उन जीवों से अधिक है। लेकिन आप ये देखिए, प्रकृति के नियम को जो कृति नहीं मानेगी, जो जीवन नहीं मानेगा, प्रकृति उसका साथ

0: देना धीमे धीमे छोड़ रही है और छोड़ देती है। हमारे जीवन में आप देखें कि हमने भौतिकता के नाम पर इतना कंस्ट्रक्शन किया, इतने सारी रिसर्च करी, इतने सारे आविष्कार किए, उनसे हमें क्या मिला? सुविधा, सुविधा मिली इस शरीर को, लेकिन जीवन को सिर्फ दुविधा मिली। जैसे कि आजकल मैं देखता हूं कि छोटे बच्चे आपके फैन का बटन ऑफ करने के लिए भी खड़े नहीं होना चाहते, उसके लिए बोलते हैं, मैं आधुनिकता की बात कर रहा हूं, एलेक्सा
1: एलेक्सा
0: प्लीज लाइट ऑफ, एलेक्सा प्लीज म्यूजिक ऑन। अब आप मुझे ये बता दें कि वो एलेक्सा आपके शरीर को ठीक रखने के लिए सिर्फ बोल ही तो सकती है, करना तो आप ही को पड़ेगा। अगर योग अपने जीवन में आपने करना बंद कर दिया, जैसा कि मैंने फिर इस बात को मैं आप लोगों से कहूंगा, शारीरिक व्यायाम तक ना रखें इसको, योग आपको तन मन और आपकी आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति है।
1: योग की व्यापकता को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हम कहें, जैसे कि आपने कहा था कि वैश्विक स्तर पर ये जा रहा है, हमारी संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम की रही है, जहां हम बहुत व्यापक तौर पे इसको सोचते आए हैं कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय जीवन दर्शन में अगर हम देखें तो योग का वही एक स्थान जो है आपको नजर आता है। आज की जो जीवन शैली है उसमें अगर मैं कहूं कि योग की जो प्रासंगिकता है, आपने जैसे कहा कि हमारी जीवन शैली में इतने भौतिकतावादी परिवर्तन आए हैं, तो आज की जो जीवन शैली है उसमें योग की प्रासंगिकता को पहले की अपेक्षा ज्यादा क्यों महसूस किया जा रहा है?
0: बिल्कुल सीधा सीधा सा इसका जवाब है कि लोग सिर्फ योग की मदद से रोग से लड़ रहे हैं, वो इसको अपने जीवन में सिर्फ रोग तक ही सीमित रख रहे हैं। और उसके साथ भी क्या है कि जो लोग इसकी महत्वता समझते हैं कि हाँ, योग के माध्यम से अगर हम अपने ऑर्गन्स की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रांग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, तो हम योग करेंगे। अदरवाइज योग को व्यक्ति करना सिर्फ ऐसे नहीं चाह रहा कि इसे जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे हैं हम लोग, हम योग को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसके सिर्फ हमें लाभ मिल सके। अपने जीवन में योग को स्थान उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि सुबह सुबह होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लघु शंका, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने तन की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने कार्य क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो योग भी इस तरीके से ही आपके जीवन में 24 घंटे रहना चाहिए। योग कोई एक घंटे करने का विषय नहीं है,
1: करने का विषय नहीं है, वो आपकी जीवनचर्या का हिस्सा होना चाहिए।
0: जैसे कि मैं जब कॉर्पोरेट ऑफिस में जब जाता हूं तो कहते हैं मेरी कमर में दर्द है, क्योंकि सारा दिन कंप्यूटर पर बैठना है, नजर का चश्मा भी मुझे लग गया है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास एक घंटा नहीं है कि एक घंटे का मैं योग कर सकूं। मैं कहता हूं कि जब भी आप कुर्सी पर बैठे, मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा, अगर आप अधिक देर तक किसी जगह पर, किसी स्थान पर अगर बैठे हैं, तो मैं नहीं समझता कि एक घंटे बाद अगर आप दो मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको रोकेगा।
1: मैं इसी विषय पर आ रहा था भवानी साहब, कि जैसे बहुत से लोगों से अगर बात करते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। अगर शुरुआत किसी व्यक्ति को करनी है योग की तो वो किस तरह करे? जैसे कहा कि छोटी छोटी चीजें हैं, आप उसे जीवनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन वो शुरुआत कैसे की जाए?
0: देखिए, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सब कह रहे हैं ना कि समय नहीं है, तो ये सिर्फ एक बहाना है कि समय नहीं है। अगर समय नहीं है तो आप इस बात को लिख लीजिए कि आपके पास समय होगा ही नहीं। फिर समय किसके लिए नहीं होगा? आपके पास अपने जीवन के लिए समय नहीं होगा, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी और इस जिंदगी में थकना मना है। क्यों थकना मना है? हम रेलगाड़ी नहीं है, हम रोबोट नहीं है, हम इंसान है, हम थकते हैं। और योग तो एक ऐसी कमाल का विषय है। योग तो मैं आपको बता दूं कि आप बैठे बैठे लेटे लेटे आलस में, जब आप जागृत हैं उस स्थिति में, हर स्थिति में आप इस योग को अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठे आप, सबसे पहले हमें सिखाया गया कि भूमि नमन। अच्छा, भूमि नमन के लिए पीछे कोई आध्यात्मिक विषय नहीं है कि भूमि नमन जमीन से हाथ टच करके हम अपने सर को छू रहे हैं या फिर हम इसे धरती का सम्मान कर रहे हैं। बहुत साइंटिफिक रीजन है, आप विदेशों की रिसर्चेस को पढ़िए, वो रिसर्च हमारे पास तब आती है जब वो 20 साल पुरानी हो जाती है।
1: ये रिसर्चेस तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, उसके बाद हमने योग की विधा को लोगों के सामने रखा है। ये हमको समझने की जरूरत है कि ये पूर्णता वैज्ञानिक दृष्टिकोण है योग जो है।
0: इसका वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले अगर आप उठते ही अगर आप जमीन को छूते हैं, आप देखिए आप किस चीज पर रात भर आपने बिताई। आपकी बॉडी उस समय न्यूट्रलाइज थी, आपकी बॉडी में 0 वोल्ट आपकी बॉडी को चाहिए होता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए, आपकी ऑर्गन्स को अपना फंक्शनिंग करने के लिए।

0: नमन को हम लोगों ने किस चीज से जोड़ दिया कि नहीं ये तो सिर्फ सिर्फ संस्कार का विषय है, इससे स्वास्थ्य लाभ क्या मिलेंगे। उसके बाद हम संस्कारों की अगर हम बात करें, योग सिर्फ देखिए आपको, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, शारीरिक तौर पर आपको मजबूत नहीं बना रहा है, ये आपके संस्कारों को भी बनाता है। आपके संस्कार निकले ही योग से। और ये बात कहने के लिए नहीं है कि हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हम वहां फूल अर्पित करते हैं, इसका मतलब हम प्रकृति प्रेमी हैं। अगर प्रकृति प्रेमी है तो आप योगी हैं। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं किसी चीज पर तो आप प्रकृति के प्रेमी हैं। आपको नहीं पता कि आपका जीवन शुरू ही किन मूलभूत तत्वों से हुआ। हम इस चीज को सिर्फ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और गौरवान्वित महसूस होने के लिए बस कह देते हैं या सुन लेते हैं, लिख देते हैं किताबों में, पुस्तकों में कि हमारा शरीर पंच मूलभूत तत्व से बना, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा। इस चीज को बाद में विदेशी यूनिवर्सिटीज ने रिसर्चेज में अपने जर्नल में लिखा कि यस, आर बॉडी मेड फ्रॉम द फाइव बेसिक एलिमेंट, अर्थ, फायर, एयर, ईदर एंड वाटर। अब इन पंच मूलभूत तत्वों को आपने अपने जीवन में महसूस कैसे किया? मैं किसी से पूछूं कि जी पंच मूलभूत तत्वों का हमारे जीवन में आप कैसे देखते हैं, पंच मूलभूत तत्वों को, तो मैं समझता हूं कि इस मॉडर्न सोसाइटी में सिर्फ हो सकता है कि 20% लोग ही जानते होंगे कि पंच मूलभूत तत्व हैं क्या। हो सकता है कि वो सिर्फ आपको बता दें, हाँ धरती, आकाश, मिट्टी, आपको मतलब नपे तो ले आपको वो जवाब देंगे, लेकिन पंच मूलभूत तत्व से ये जीवन का निर्माण हुआ जिसमें कि पहला जो तत्व हमें जो मिला वो मिला जल। मां के गर्भ में क्या था?
1: चारों ओर जल,
0: सिर्फ जल था। इस पृथ्वी पर अधिक क्या है? जल। ये पूरा ब्रह्मांड योग करने में लगा हुआ है, तो हम कौन होते हैं जो इस योग को ना करें। अब उसके बाद आप शरीर की स्वास्थ्य को लेकर हम चर्चा करेंगे। पंच मूल तत्व अगर आपके शरीर में अग्नि नहीं है
2: अब कर दे कोई यहां,
0: ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप बीमार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, यानी कि अग्नि का महत्व है, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं वायु की, वायु अगर नहीं होगी तो हो सकता है कि पाचन और जल ये सब मिले ना मिले एक बार को, कि जैसे बिना भोजन के हम लगभग 30 दिन तक रह सकते हैं, बिना पानी के हम लगभग 7 से 8 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के 2 मिनट भी नहीं है। इसका मतलब ये मूलभूत तत्व कहा गया है इनको, और ये विषय योग से ही आया। पहले हमारे यहाँ पर योगियों ने पहले योग किया, फिर योग को करके योगी बने, और योगियों ने सारा ज्ञान पूरे विश्व को बांटा। अब हम बात करते हैं कि धरती की, जब धरती तत्वों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब सब्जियां, फल, खाने पीने का सामान जब नहीं होगा, पेड़ नहीं उगेंगे, तो वायु भी उसके बिना कुछ भी नहीं है। फिर हम बात करें आकाश तत्वों की, अगर आकाश तत्व नहीं होगा, वातावरण ही नहीं होगा, तो फिर जीवन का क्या महत्वता है? अगर वातावरण मंगल ग्रह पे हो तो वहां जीवन हो जाएगा ना, वहां क्या नहीं है, वहां वातावरण नहीं है। तो ये विषय है कि योग की महत्वता सिर्फ शारीरिक तौर पर आपको लचीला बनाने के लिए नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए है। इसलिए योग करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। पूरा विश्व भारत के योग का लोहा मान चुका है।
1: अब हम योग की तो विधाएं काफी हैं, तकनीकें हैं
0: जी,
1: लेकिन मूल तौर पे जो लोग समझते हैं उसको, कोई आसन करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई ध्यान करता है, कोई योग निद्रा करता है, अब हम इनके बारे में समझना चाहेंगे आचार्य जी, कि आसन, प्राणायाम, ध्यान और योग निद्रा, ये सब बेसिकली क्या है और इनमें क्या अंतर है?
0: देखिए, योग से जब हमें शारीरिक तौर पर अगर हमें बलवान बनना है, स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो आपके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं योग के माध्यम से, जिसमें कि कई सारी प्रैक्टिस उसमें की जाती हैं, जैसे कि आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। इससे पहले दो और होते हैं, यम और नियम
1: जी।
0: मैं यम और नियम की बात नहीं करूंगा क्योंकि लोग बाग बोर फील करने लग जाएंगे कि इतना गहराई में जाने से क्या फायदा, लोगों को आजकल सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल चाहिए। तो मैं कहता हूं कि आप किसी ऋषि को मत पढ़ो, ना ही आप और किसी रिसर्च को पढ़ें, आप बहुत प्रैक्टिकली योग कीजिए। आसन आपके शरीर को लचीला बनाने का एक माध्यम है। आसनों के माध्यम से आप अपने शरीर को केंद्रित कर पाते हैं, उसको व्यवस्थित कर पाते हैं। लोग योग सिर्फ आसन इसलिए कर रहे हैं कि मोटे से पतला कैसे हुआ जाए, लेकिन

0: परेशानी और समस्या मोटापा नहीं है, समस्या है कि आप उन आसनों को करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए आप योग का पीछा छोड़ देते हैं। आप समझते हैं ये तो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है या फिर ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, क्योंकि बचपन में शरीर लचीला होता है। आसनों का अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करते हैं
1: तो आपके
0: अपने,
1: शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी।
0: मैं आपको बता दूं, जब मैं लोगों को योग कराता हूं, मेरे पास एक 64 वर्ष के व्यक्ति हैं, बड़ा प्रभावित हूं मैं उनसे। उनका नाम मैं यहां आप सभी लोगों के सामने लेना चाहूंगा, केशव दीक्षित नाम है उनका,
1: जी
0: रिटायर्ड हैं वो, शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष दूंगा और देखूंगा क्या बदलाव होंगे। उनका वजन था 104 किलो, 1 साल योग किया और उसके बाद मेरे पास, आप यकीन नहीं मानेंगे कि 64 साल का व्यक्ति क्या कर सकता है, 12 केजी तो उन्होंने अपना वजन कम किया योग से। और उसके बाद 64 वर्ष का व्यक्ति शीर्षासन लगाता है, चक्रासन लगाता है,
1: क्या बात।
0: समझे, जिसके लिए मैं समझता हूं कि हम तो सिर्फ सपने देख सकते हैं। जैसे कि कई सारे श्रोता होंगे कि हमसे तो अपने हाथों से घुटने नहीं छुए जा रहे, पैर तो बड़ी दूर की बात है। यानी कि अराउंड 90 केजी के वेट में भी वो व्यक्ति आज भी शीर्षासन कर रहे हैं और सभी लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि जिस काम को करना है पूरे डेडिकेशन के साथ आप कीजिए। तो 1 साल में अगर ये रिजल्ट आ सकता है तो मैं समझता हूं कि आसन आपके शरीर की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए करने चाहिए। और आसन ऐसा नहीं है कि आप जो देखते हैं कि अरे नहीं, मैं जब तक कमर को रबड़ की तरह नहीं मोड़ दूंगा तब तक वो आसन होगा नहीं। मैं इसलिए योग नहीं करता क्योंकि वहां बड़ा तोड़ते और मरोड़ते हैं। अगर आप सुखासन में भी बैठते हैं, जिसको आप कहते हैं चौकड़ी मारना, थोड़ा संस्कारों से भी मैं इसको रिलेट करूंगा
1: जी,
0: कि हम लोगों को जो सेक्रामेंट्स हैं हमारे, उनमें भी हमें कैसे, जो वर्ड्स हैं आसनों के जो नाम हैं उनको हमें कैसे लाना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति कैसे भी करके जीवित रहे। हम कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमसे पूछें कि पापा ईयर होता है, कान क्या होता है,
1: हाँ,
0: कि ये पूछें कि केश
1: केश
0: क्या
1: क्या
0: होते
1: है।
0: हैं।
1: सही
0: तो
1: बात
0: हम
1: है।
0: लोग सिर्फ बाल, हेयर, इन तक प्लीज बेटा कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर, अगर यही कहते रहेंगे तो ये कौन कहेगा कि अपने केश निकालिए, अपने केशों को बनाइए। मैं नहीं कह रहा कि चलिए वो इस आधुनिक दौर में ये शब्द शायद इतना महत्व तो नहीं दे रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी हमारा व्याकरण है, उसको हम क्यों खो रहे हैं? हमारे अपने शब्द हैं, हमारी एक अपनी लिपि है, हमारे जो ग्रंथ हैं हमें
1: और
0: उन्हें
1: उनके
0: नहीं।
1: पीछे भी वैज्ञानिकता है।
0: उस विषय पर मैं अभी
1: जी
0: आपके
1: जी
0: सामने आऊंगा। तो आसन जब आप बैठते हैं, जैसे चौकड़ी मार लीजिए, या एक शब्द है पलोती मार लीजिए, ब्रजभाषा के लोग तो उसको आलती और पालती कहते हैं। हम क्यों नहीं बच्चों को सिखाते कि सुखासन में बैठो? अगर आप उसे 4 बार टोकेंगे सुखासन में बैठो तो शायद उसके दिमाग में वो शब्द रह जाएगा, तो हो सकता है कि अगली पीढ़ी को वो शब्द वो ट्रांसफर कर दे। तो सुखासन भी एक आसन है। सुखासन में अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं तो आपको नहीं पता कि आपकी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ से ऊपर की ओर जाने लग जाती है। अगर हम बैठते ही एक आर्क लेकर के अपनी कमर को झुकाकर बैठते हैं तो क्या होता है कि उससे आपकी ऊर्जा जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच नहीं रही है। और फिर हम कहते हैं कि मानसिक तनाव, फिर हम कहते हैं भूलने की बीमारी, फिर हम कहते हैं अनिद्रा, फिर हम कहते हैं कि ये समस्या और वो समस्या। तो सबसे पहले जो योग शुरू होता है वो आप पहला आसन, ढंग से खड़ा होना, ढंग से बैठना और ढंग से चलना। पैदल चलना भी आसन है। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाकर चल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ऊर्जा गलत जगह जा रही है।
1: आपकी शारीरिक मुद्रा जो है वो व्यवस्थित हो, वो
0: जी
1: उसके लिए आसन होते हैं।
0: सब बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड है, वो बोलता है कि आपका पोस्चर मैटर करता है।
1: जी
0: इसके लिए तमाम सारे उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं कि सर्वाइकल हो गया है तो आप गर्दन का पट्टा ले लीजिए, अगर आपको कमर में दिक्कत है, स्कोलियोसिस हो गया है आपको, तो वहां की बेल्ट ले लीजिए, आपके लंबर पोर्शन में दिक्कत है तो आप वहां की गर्म बेल्ट ले लीजिए, ठंडी बेल्ट ले लीजिए। तो अगर उपकरण बाजार में है तो क्या उपकरण से पहले क्या हम थोड़ा अपना खुद का विवेक लगाकर इसकी तैयारी नहीं कर सकते कि उपकरण की आवश्यकता ही ना पड़े
1: ठीक
0: उसकी,
1: बात।
0: कि कोई ऐसा सामान क्यों लिया जाए? आपको 20 साल के बच्चे मेरे पास आते हुए दिखेंगे कि जो कमर में बेल्ट लगाकर आ रहे हैं। 20 साल की उम्र तो वो थी कि जो इस पेड़ पर चढ़ जाओ और उस पेड़ से उतर जाओ, तालाबों में कूद जाओ, समंदरों में नहा लो, नदियों को पार कर जाओ। अब वो 20 साल की उम्र पट्टियां मांग रही है, डिप्रेशन से घिर गई है। तो आसन आपको मैं कहूंगा कि आज से ही शुरू कर देने चाहिए, आपको जो सरल लगे। योग ये नहीं कहता कि आप उन सभी आसनों का अनुभव लें जो कि शायद बड़ी मेहनत के बाद आप कर पाते हैं। आप शून्य से शुरू करें
1: और जो
0: आसन।
1: शारीरिक मुद्राएं जो सामान्यतया होती हैं उनको सही तरीके से आप समझ पाएं, वो
0: जी
1: आसन हो गया। अब
0: जी
1: हम प्राणायाम पे आते हैं।
0: जी देखिए प्राणायाम आसनों से अधिक कीमती चीज है। मैंने कीमती इसलिए कहा क्योंकि शरीर एक बार को अगर ये ठप पड़ जाए, लेकिन आप

0: आपके अगर ऑर्गन ठप नहीं है तो जीवन चलेगा। आपका अंग अगर उतना मजबूत नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रत्यंग आपके मजबूत होने चाहिए। अगर आपके प्रत्यंग अगर मजबूत नहीं है, अगर स्वस्थ नहीं है, तो आपके अंग को ऊर्जा दे कौन रहा है? तो प्रत्यंगों को आपकी मदद करनी पड़ेगी। योग आपकी सहायता कैसे करता है? सबसे पहली चीज, हमने ऑक्सीजन नहीं कहा, हमारे कल्चर में ऑक्सीजन नहीं कहते सर,
1: प्राणवायु।
0: ना इसको वायु कहते हैं, हम इसको प्राण वायु कहते हैं। प्राणों की वायु है ये। और प्राणायाम का मतलब समझें, जैसे कि प्राणों को अलग अलग आयामों
1: आयाम
0: में,
1: देना।
0: प्राणों को आयामों तक पहुंचाना, आयाम तक नहीं रहता, ये आयामों में आपको पहुंचाता है। आप उसको बहुवचन में लेकर जाइए, कि क्योंकि आपका सिर्फ शरीर में सिर्फ आपके पास फेफड़े नहीं है, आपके पास लीवर भी है, आपके पास किडनी भी है।
1: प्रत्यंग हैं बहुत सारे।
0: सुबह सुबह आप सभी को पता है कि अगर सुबह की जो ऑक्सीजन है, सुबह का जो प्राण वायु है, उसका जो स्तर है शुद्धता का, वो आपको दोपहर को नहीं मिल सकता, और ना ही वो आपको शाम को मिलेगा, ना रात को मिलेगा। प्रकृति आपके लिए बिल्कुल शुद्ध प्राणवायु कब बना रही है, वो स्थान के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर, और मैं समझता हूं कि लगभग लगभग 8 बजे तक प्रकृति की जो प्राणवायु, वो काफी हद तक शुद्ध रहती है। तो
1: बहुतायत में
0: सुबह,
1: मिलती है और शुद्ध रूप से मिलती
0: जी,
1: है।
0: मैं ये नहीं कहूंगा आप सभी श्रोताओं से कि आप सभी लोग किसी योग कक्षा में जाएं, या फिर आप किसी विशेष प्रकार की कोई ट्रेनिंग लें, उसके बाद आप योग करें। योग आपसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके जागने से शुरू होता है। योग में हमने आसनों की चर्चा करी, प्राणायामों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह उठते ही जितने लंबे गहरे श्वास आप ले सकते हैं,
1: प्राण वायु आपकी जो है वो जितनी ज्यादा आप ले सकते हैं उतने
0: मैं
1: ज्यादा आप अपने प्रत्यंगों को आयाम तक पहुंचा सकते।
0: सीधा सीधा हम समझते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए, सबसे पहला काम आप सभी लोगों को जो करना चाहिए कि सुबह सुबह उठिए और ढूंढिए कि अगर कोई पेड़ है उसके पास जाएं। बहुत प्रैक्टिकल बात है। ऑक्सीजन की जो फैक्ट्री है, प्राणवायु की जो फैक्ट्री है, वो बेसिकली पेड़ हैं आपके,
1: ठीक बात।
0: और उनकी सेवा के लिए आपके पास प्रकृति ने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और उनको आपकी सेवा के लिए क्या दिया? ऑक्सीजन। तो जितने लंबे गहरे श्वास आप भर सकते हैं सुबह ही सुबह, क्योंकि ऑक्सीजन आपके सिर्फ लंग्स को नहीं चाहिए। मैं नहीं समझता हम लोगों ने पार्श्व में क्या पढ़ा, स्कूलों में हमें क्या पढ़ाया गया, आपके लंग्स को ऑक्सीजन की उतनी जरूरत नहीं होती, आपके डायफ्राम को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो प्राणायाम आपको इसलिए करना है कि वो जो लंबी गहरी श्वास आपके फेफड़ों से होती हुई आपके डायफ्राम तक जब पहुंचती है, तो वहीं, तो वहां का जो आपके शरीर का जो रक्त है, वो इंतजार कर रहा है कि प्राणवायु आएगी, और डायफ्राम उस रक्त में उस प्राणवायु को मिलाएगा और आपके हृदय को दे देगा, और आपका हृदय क्या करेगा? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
1: पूरे शरीर में
0: पूरे
1: अंग
0: शरीर में,
1: प्रत्यंग जो है
0: आपके
1: आपके
0: अंग
1: है।
0: अंग प्रत्यंग आपके नाखून से लेकर बालों तक पहुंचाएगा।
1: ठीक बात।
0: और सबसे पहली चीज जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, बड़ी बड़ी रिसर्चेस कह रही हैं, कि बीमार होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है आज के इस विश्व में, कि हम लोगों का ब्लड उतना ऑक्सीजनेटेड नहीं है। और फ्री की औषधि है। मैं समझता हूं कि थोड़ी देर पहाड़ों में जाइए, या कहीं अच्छा स्थान है, नहीं तो घर में आप अच्छा पार्क बनाइए।
1: आपके चारों तरफ आपके इर्द गिर्द जहाँ पे भी पेड़ मिलता है वो
0: जी,
1: ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। आप उसका उपभोग करिए, उपयोग करिए।
0: प्राणों की शक्ति को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको प्राणायामों को तो करना पड़ेगा।
1: ठीक। अब हम ध्यान पे थोड़ा और केंद्रित होते हैं।
0: बिल्कुल। देखिए, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने बेचैन होकर जी रहे हैं कि हमारे जीवन में जो हमें चाहिए सबसे ज्यादा, वो चाहिए शांति। ध्यान को लेकर मैं आप सभी श्रोताओं को बताऊंगा कि ध्यान कोई करने की विधि नहीं है, ध्यान को हम मनुष्य कर ही नहीं सकते। जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि रहे हैं, उन सभी का एक ही वाक्य रहा है ध्यान को लेकर, कि ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान के लिए आपको तैयार होना होता है, और ध्यान आपके जीवन में घटित होता है।
1: अच्छा।
0: आप आंखें बंद कर कर बैठ जाना ध्यान नहीं होता। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोग, जितनी भी यंग जनरेशन है, वो निर्वाण की तरफ भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि पैसा सिर्फ काफी नहीं है। हमने जैसे सुख कह दिया, सुख है कि जब तक आपको मानसिक संतुलन नहीं मिलेगा, मानसिक शांति नहीं मिलेगी, तब तक जीवन उसको सुख नहीं मानता। तो ध्यान एक प्रकार का एक माध्यम है कि जिसके पीछे आप सिर्फ लग जाइए। इसकी एक प्रैक्टिस है, एक रिहर्सल है, जिसको आप करते रहेंगे तो आप एक दिन संपूर्ण मंच आपको

0: प्राप्त हो जाएगा ध्यान का। देखिए ध्यान का अर्थ होता है शून्य हो जाना, एकाग्र हो जाना, इसी को ध्यान कहते हैं,
1: स्थिर चित्त हो जाना।
0: है ना। आपके चित्त का स्थिर होना उसी को ध्यान कहा जाता है। और ध्यान को करने के लिए मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आंख बंद करके बैठिए तो सही, अगर आपको संपूर्ण ब्रह्मांड ना दिखाई दे। लेकिन अब हमारे मस्तिष्क में इतने वैचारिक कोलाहल हैं कि हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क एक जगह पर
1: स्थिर नहीं
0: स्थिर
1: हो
0: हो ही
1: पाता।
0: नहीं सकता। और हम समझते हैं ये फालतू की चीज है, फालतू की चीज नहीं है। जब मेरे पास जब आते हैं लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल, जब मैं उनसे पूछता हूं कि जीवन की उपलब्धि है आपके पास कोई, तो बोलते कि कोई उपलब्धि नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि शांत होकर बैठ जाओ और जीवन सुखी सुखी कटे। तो वो सुखी सुखी कटे, शांत होकर बैठना, वही तो रास्ता है ध्यान तक पहुंचने का।
1: ठीक बात
0: मैं
1: है।
0: इसको ध्यान नहीं कहूंगा। और ध्यान करने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है कि आप योगी हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए आपको सिर्फ शांति ही तो चाहिए, तो शांत जगह पर ही तो शांति मिलेगी। अब मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर तो शांति आपको नहीं मिल सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कि योग निद्रा की। योग निद्रा आपके मानसिक संतुलन को बनाने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। हमारे योग विषय से जब योग निद्रा निकलकर आई, तो जितना भी कोलाहल जीवन में है, जितनी भी बेचैनी जीवन में है, आपकी एकाग्र शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि हमें सारी चीजें बहुत क्विक चाहिए, तो उस क्विक तरीके से आपको ध्यान करने का एक माध्यम है, एक साधन है योग निद्रा, जिसमें कि आप अपने शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्यंग तक पहुंचने का जरिया आपको योग निद्रा के माध्यम से मिलता है। कि योग निद्रा में आपको आंतरिक यात्रा करवाई जाती है, आंखों को बंद कर आपको अपने प्रत्येक अंग को और प्रत्यंग को महसूस करना होता है। एक मैनिफेस्टेशन है, आपको सिर्फ सोचना भर है कि यस मेरे फेफड़े अच्छे हैं, शुद्ध हैं, यस मेरा पेट बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, मेरे पैर के अंगूठे बहुत अच्छे हैं। और ऐसे ही आपको योग निद्रा आपको बहुत सारे माध्यम से मिल सकती है। और नहीं मिल सकती तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि एकाग्र होकर आप लेटें और उसके बाद अपने पूरे शरीर को अपने अंतर मन की आंखों से देखना शुरू कर दें।
1: अपने शरीर के सारे अंगों को आप अगर अंतर्मन से देखने की एक यात्रा शुरू करते हैं
0: जी
1: तो आप योग निद्रा में पहुंच जाते हैं।
0: बिल्कुल। और योग निद्रा का मतलब सर निद्रा नहीं होती है, योग निद्रा जागृत होकर करनी होती है। कई सारे
1: ये
0: लोग
1: बड़ी मतलब गहन बात आपने कही है कि योग निद्रा आपको निद्रा की स्थिति में नहीं करनी है,
0: जी
1: उसमें आपको जागृत रहना है।
0: योग निद्रा में कभी भी सोना नहीं होता। जैसे जब हम योग निद्रा करवाते हैं तो वहां कई सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं सोते उनका जो फील है, उनका जो अनुभव है, वो सोए हुए व्यक्तियों से ज्यादा जागृत होता है। वो सिर्फ आंखें खोलकर जागते नहीं है, पूरे संपूर्ण जीवन में आपकी जागृति पैदा हो सकती है। इसीलिए योग निद्रा आप सभी लोगों को इसका अनुभव जरूर करना चाहिए।
1: चलिए, आज हमने जो योग की विभिन्न तकनीकें हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान और योग निद्रा पर जो इनसाइट्स मिली हैं हमारे श्रोताओं को, वो योग की तरफ उनको आकर्षित करने में, उनको मोड़ने में सहायक सिद्ध होंगी। किसी और कार्यक्रम में और विस्तार से बातचीत आपसे होगी। आज हमारे श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाचार्य कुलदीप सिंह भवानी जी से अनिंद्र सिंह जी की बातचीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम गीत गुंजन में आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में। ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था और संगीत था विशाल शेखर का।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। शाम के 5 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

0: प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण

0: प्राधिकरण सीसीपीए ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। आइए लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी समर सोल्टिस विषय पर। साथ ही होगा आज का सवाल सेगमेंट खेल दुनिया में, आज आप जानेंगे फीफा 2026 के विषय में। साथ ही होगी आपकी पसंद, सुनिएगा वार्ता योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधित बीमारियों का प्रबंधन। वार्ताकार होंगे अनिंद्र सिंह। अन्य सेगमेंट होंगे ताकत वतन की हमसे है और हमारी योग संस्कृति। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक शाम 6:00, जिसमें चर्चा होगी गर्मियों की जुताई से लाभ विषय पर। भेंट वार्ता क्रम में सुनिएगा धान की उन्नतशील खेती कैसे करें विषय पर सौरभ उपाध्याय से लोकेंद्र पाठक की बातचीत। अन्य सेगमेंट होंगे लोक धरोहरें, जानिएगा मंडी भाव, मौसम का हाल और आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम मैनचेस्टर में खेले जा रही T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल इसके समापन तक। ये आप सुनेंगे मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। समय याद रखिएगा शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक।

शाम 6:30 पर हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल, जिसमें आज चर्चा होगी योग करो निरोग रहो, जो आधारित होगा हमारे आज के विश्व योग दिवस पर। एक और चर्चा होगी संगीत आत्मा की भाषा, क्योंकि आज है विश्व संगीत दिवस और इसी पर आधारित होगी चर्चा। इसके अलावा सुनिएगा वार्ता स्वस्थ जीवन का आधार योग, वार्ताकार होंगी रश्मि उपाध्याय। इसके अलावा आप सुनेंगे ज्ञान सागर, लेंगे सेहत टिप्स होंगे।

नई खोजें, इसके अलावा ज्ञान सागर और आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा शाम 7:10, जिसमें आज आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस पर आधारित वार्ता, आत्मचिंतन और नवीनीकरण का प्रतीक है ग्रीष्म संक्रांति दिवस। शाम 7:31 पर कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, जिसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, योग चिकित्सा के सिद्धांत और स्वीकार्यता, जिसमें डॉक्टर राजकुमार शर्मा से बातचीत होगी अनिंद्र सिंह की। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे रात्रि 8:00 कार्यक्रम गाने नए पुराने में। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से

8 बजे कार्यक्रम गाने नई पुराने में। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। वक्त हो चुका है कार्यक्रम सुर संध्या का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर संध्या में फिल्मी भजन। पहला भजन केदारनाथ फिल्म से अमित त्रिवेदी के स्वर में।

0: श्रोताओं, केदारनाथ फिल्म से ये
1: लाइव भजन आपने सुना, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू एसबीआई प्रीमियम बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: श्रोताओ, इस ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम सुर संध्या में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दाता फिल्म से ये भक्त रचना महेंद्र कपूर, साधना सरगम और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। बोल लिखे हैं अनजान ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, दाता फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी महेंद्र कपूर, साधना सरगम और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। अनजान की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का गीत बेला शिंदे के स्वर में, जोधा अकबर फिल्म से।

श्रोताओं, मनमोहना गीत आपने सुना बेला शिंदे के स्वर में। वो लिखी थी जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी ए आर रहमान ने। ये भक्ति रचना आपने सुनी फिल्म जोधा अकबर से। श्रोताओं, इन भक्ति रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। 5:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आप आज हैं अपनी रेडियो साथी राशि के साथ और सभी श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। और बताइए साथियों, आज योग किया कि नहीं? वही, योग करना तो जरूरी है ही, पर साथियों आज का ये दिन भी हमारे लिए दो रीजन से काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला रीजन तो ये कि योग हमारी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए बेहद जरूरी है, और दूसरा रीजन ये कि योग सिर्फ एक व्यायाम पद्धति नहीं है। साथियों, योग सिर्फ एक एक्सरसाइज ट्रेंड नहीं बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत भी है। योग केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान भी है। आज जब दुनिया फिटनेस और मेंटल वेलनेस के रोज रोज नए नए ट्रेंड्स खोज रही है, तब भारत के पास हजारों साल पुराना योग एक ऐसा प्रूवन सॉल्यूशन है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान चुकी है। साथियों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अपॉर्चुनिटीज भी अनलिमिटेड हैं और डिस्ट्रैक्शंस भी। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, घटता अटेंशन स्पैन और करियर प्रेशर ने हमारी लाइफस्टाइल को काफी फास्ट बना दिया है। ऐसे समय में अगर कोई चीज हमें फिजिकली फिट, मेंटली काम और इमोशनली स्ट्रांग बना सकती है तो वो है योग। साथियों, योग कितना जरूरी है, कब, कैसे, कहां योग करना चाहिए, इस बारे में हम सब काफी कुछ सुनते भी हैं और जानते भी हैं। लेकिन आज हम योग को सिर्फ फिजिकल फिटनेस के एस्पेक्ट से नहीं बल्कि हमारी सदियों पुरानी विरासत के रूप में भी जानेंगे। साथियों, योग हमें संयम, अनुशासन, धैर्य और आत्म जागरूकता जैसे मूल्यों से जोड़ता है। जब हम योग करते हैं तब हम केवल अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बना रहे होते बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ रहे होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अपनाना आज की भौतिक जरूरत है, लेकिन साथियों अपनी आज योग की शक्ति को समझना हम युवाओं की शारीरिक और मानसिक जरूरत बन चुका है। योग आज की डिजिटल जनरेशन के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी बन गया है। पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस के बीच लगातार प्रेशर महसूस कर रहे हम युवाओं के लिए योग और मेडिटेशन दिमाग को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका बन चुका है। नियमित योग साधना मन को स्थिर करती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है और एंग्जाइटी को कम करने में मदद करती है। साथियों, योग हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं बल्कि माइंडसेट में भी होती है। ये हमें फोकस करना, स्ट्रेस को मैनेज करना और अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा देना सिखाता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स योग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं। साथियों, फिटनेस के लिए जरूरी नहीं कि हर किसी के पास जिम की मेंबरशिप हो या महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हो। योग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। ये स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और स्टैमिना को बेहतर बनाता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। साथियों, आज की दुनिया में जहां हर कोई बाहरी सफलता के पीछे दौड़ रहा है, योग हमें अंदर से मजबूत बनाना सिखाता है। योग कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक स्मार्ट अपडेटेड लाइफस्टाइल चॉइस है। अगर हम रोज कुछ मिनट योग को दें तो हम न केवल बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं बल्कि एक संतुलित, सकारात्मक और सफल जीवन भी जी सकते हैं। यानी कि साथियों, योग आपके असली ग्लो अप की जर्नी की शुरुआत है। तो आइए इसी क्रम में सुनते हैं आज की ये वार्ता जिसका विषय रहेगा

0: योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधित बीमारियों का प्रबंधन। वार्ताकार हैं अनिंद्र सिंह।
1: मानव सभ्यता ने विज्ञान, तकनीक और सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हमारे पास अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, त्वरित संचार साधन और आरामदायक जीवन के अनगिनत संसाधन हैं। विडंबना ये है कि इन सुविधाओं के साथ साथ अनेक ऐसी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं जो हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, तनाव, अवसाद, अनिद्रा, थायराइड विकार और कई प्रकार के मानसिक रोग आज करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इन रोगों को सामान्यतः जीवन शैली संबंधित रोग यानी लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। इनका मुख्य कारण कोई संक्रमण नहीं बल्कि हमारी दिनचर्या, खानपान, मानसिक तनाव, शारीरिक निष्क्रियता और प्रकृति से बढ़ती दूरी है। ऐसे समय में योग केवल एक व्यायाम पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का संपूर्ण विज्ञान बनकर उभरता है। योग के संबंध में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये किस प्रकार जीवन शैली संबंधी रोगों के प्रबंधन और रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे रोग जो मुख्य रूप से व्यक्ति की दैनिक आदतों, आहार विहार, मानसिक स्थिति और कार्यशैली के कारण उत्पन्न होते हैं, जीवन शैली संबंधी रोग कहलाते हैं। जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, तनाव और अवसाद, अनिद्रा, पीठ और गर्दन में दर्द, थायराइड विकार या पाचन संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इन रोगों का बड़ा हिस्सा स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रोका जा सकता है। अब प्रश्न है कि ये जीवन शैली वाले रोग बढ़ कैसे रहे हैं। हम जानते हैं कि आज का जीवन अनेक विरोधाभासों से भरा पड़ा है। सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन शारीरिक गतिविधियां कम हुई हैं। सूचना का प्रवाह तेज हुआ है लेकिन मानसिक शांति घट गई है। लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करना, वाहन पर निर्भरता, व्यायाम की कमी शरीर की प्राकृतिक कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है और शारीरिक निष्क्रियता बढ़ती है। फास्ट फूड, जंक फूड, ज्यादा चीनी और नमक, वसा का सेवन, ये अनेक रोगों को जन्म देता है। प्रतिस्पर्धा, नौकरी की अनिश्चितता, पारिवारिक दबाव और डिजिटल जीवन ने मानसिक तनाव को बढ़ा दिया है। देर रात तक मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग जैविक घड़ी को प्रभावित करता है और हमारी नींद खराब करता है। तंबाकू, शराब और अन्य प्रकार के नशे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं और इन सभी कारणों के समाधान में योग अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। योग केवल व्यायाम नहीं, ये जीवन जीने की एक कला है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोध कहा है, यानी मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना। उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज प्रायः लोग योग को आसनों तक सीमित समझ लेते हैं लेकिन वास्तव में यह संपूर्ण जीवन शैली का विज्ञान है। भारत को कई लोग कभी कभी मधुमेह की राजधानी भी कहते हैं। बदलती जीवन शैली के कारण युवाओं में मधुमेह तेजी से बढ़ भी रहा है। योग मधुमेह के नियंत्रण में सहायक हो सकता है। अग्नाशय की कार्य प्रणाली को बेहतर करता है, तनाव कम करता है जिससे ब्लड शुगर नियंत्रित होती है, वजन कम करने में मदद करता है, शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है। और इसके लिए जो उपयोगी योगासन हो सकते हैं वो हैं मंडूकासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन और जो प्राणायाम इसमें उपयोगी हो सकते हैं जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। इनका यदि नियमित अभ्यास किया जाए तो मधुमेह के रोगियों को दवाओं के साथ बेहतर परिणाम मिलते हैं। अक्सर उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। अगर योग किया जाए तो ये तनाव हार्मोन को कम करता है, हृदय की कार्य क्षमता बढ़ाता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, धमनियों की लचक बनाए रखता है। जो अभ्यास किए जा सकते हैं वो हैं शवासन, मकरासन, वज्रासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ध्यान। नियमित योग अभ्यास हृदय रोगों की रोकथाम और पुनर्वास दोनों में उपयोगी माना जाता है। आधुनिक युग की एक महामारी है मोटापा, जो तमाम रोगों की जड़ है। ये मधुमेह, हृदय रोग, गठिया, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब का जोखिम बढ़ाता है। अगर योग किया जाए तो कैलोरी बर्न होती है, पाचन बेहतर होता है, हार्मोन संतुलन सुधरता है और भोजन के प्रति सजगता बढ़ती है। वजन नियंत्रण के लिए जो उपयोगी आसन है, सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, नौकासन, उत्कटासन, पवन मुक्तासन, इन सब के करने से शरीर लचीला, ऊर्जावान और संतुलित बनता है। मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय है। आजकल तनाव, चिंता, अवसाद केवल मन को नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। लगातार तनाव से रक्तचाप बढ़ता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, नींद प्रभावित होती है, कार्यक्षमता घटती है। और योग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो मन और शरीर दोनों पर एक साथ काम करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी अभ्यास हैं उनमें ध्यान, भ्रामरी, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, योग निद्रा, ओम

0: जब और इनके नियमित अभ्यास से मन शांत होता है, सकारात्मक और स्थिर भी बनता है। नींद चूंकि शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा है, इसलिए आज बड़ी संख्या में लोग जब नींद नहीं ले पा रहे हैं और चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्ति में कमी, थकान, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो योग इसमें शरीर और मस्तिष्क को विश्राम की अवस्था में लेकर जाता है, जहां पर योग निद्रा, शवासन, भ्रामरी, ध्यान के माध्यम से नींद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जाता है। महिलाओं के जीवन में चूंकि हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, योग इन परिवर्तनों को संतुलित करने में सहायता करता है। मासिक धर्म संबंधी समस्याओं में राहत, पीसीओएस प्रबंधन में सहायता, गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य संवर्धन और रजोनिवृत्ति के लक्षणों में कमी करके योग महिलाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर सशक्त बनाता है। आज बच्चे भी मोटापा, तनाव, ऑन स्क्रीन एक्सपोजर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। योग से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति में सुधार होता है, आत्मविश्वास विकसित होता है, अनुशासन की भावना पैदा होती है, और अगर स्कूलों में योग शिक्षा दी जाए तो स्वस्थ पीढ़ी तैयार करने का वो एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। कार्यस्थल पर योग का बड़ा महत्व है, क्योंकि लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोगों में अक्सर गर्दन दर्द, कमर दर्द, तनाव और मोटापा जैसी आम समस्याएं देखने को मिलती हैं। कार्यस्थल पर कुछ ही मिनटों का योग आपके पूरे दिन की उत्पादकता को बढ़ा सकता है। आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, तनाव में कमी आती है, आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं, टीम भावना का भी विकास होता है। योग अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरक्षा शक्ति को सुदृढ़ करने में भी योगदान देता है। ये तनाव कम करता है, श्वसन क्षमता बढ़ाता है, शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति बेहतर करता है और समग्र स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। एक समय था जब योग को केवल आध्यात्मिक साधना माना जाता था, लेकिन आज विश्व के प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान योग के लाभों पर अध्ययन कर रहे हैं, और तमाम शोध हमें बताते हैं कि नियमित अभ्यास रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक होता है, तनाव हार्मोन को कम करता है, मधुमेह नियंत्रण में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यही कारण है कि दुनिया भर में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि योग का लाभ तभी मिलता है जब उसे नियमित दिनचर्या का अंग बना लिया जाए। कुछ सरल उपाय हैं। प्रतिदिन 20-30 मिनट योग करके प्रतिदिन 20 से 30 मिनट योग के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। सुबह का समय सर्वोत्तम होता है। योग करने के लिए प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें। अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को महत्व दें और योग को प्रतियोगिता न समझें बल्कि साधना समझें, क्योंकि आज मानवता जिस स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है, उसका समाधान केवल दवाओं में नहीं बल्कि जीवन शैली में परिवर्तनों में ही निहित है। योग इसी परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम है। यह केवल रोगों का उपचार नहीं करता बल्कि रोग उत्पन्न होने की परिस्थितियों को भी कम करता है। शरीर को शक्ति, मन को शांति और जीवन को संतुलन प्रदान करने वाला योग वास्तव में संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार है। यदि हम नियमित योग, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक सोच को अपनाएं तो जीवन शैली संबंधी अधिकांश रोगों से बचा जा सकता है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधित बीमारियों का प्रबंधन। वार्ताकार थे अनिंद्र सिंह। साथियों, इस वार्ता के माध्यम से हमने जाना कि नियमित योग हमारी मेमोरी और फोकस को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ ही ह्यूमन ब्रेन की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। साथियों, ह्यूमन ब्रेन की सबसे अच्छी खूबी यही है कि हम किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मान लेते, बल्कि उसके पीछे का कारण जानने के लिए क्यों, कैसे, इस तरह के सवाल पूछते हैं। हर चीज पर सवाल उठाने की ये क्षमता ही हमें सबसे अलग बनाती है। जब हम सवाल करते हैं तो हमारे सोचने समझने का दायरा बढ़ता है और हम पुरानी रूढ़ियों से हटकर सच की तह तक पहुँचते हैं। यही आदत हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परमेंट को जन्म देती है, जो हमें लॉजिक और फैक्ट्स के आधार पर सोचना सिखाती है। जैसे हम सबने सुना है कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में छोटे, ठीक इसी तरह हम सभी ये भी जानते हैं कि साल का सबसे लंबा दिन 21 जून माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जून के महीने में ही ऐसा क्यों होता है? साथियों, इसे विज्ञान की भाषा में समर सोल्स्टिस कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल सा लंबा दिन है तो आप इसके पीछे जुड़े एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को नहीं जानते, जो इसे बेहद दिलचस्प बनाता है। चलिए आज आपको समर सोल्स्टिस के बारे में बताते हैं। साथियों, सोल्स्टिस शब्द का मतलब है वो समय जब ऐसा लगता है कि सूर्य आकाश में एक जगह ठहर गया हो। साथियों, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी यानी कि

अपने एक्सिस पर सीधी नहीं है बल्कि 23.4 डिग्रीज पर झुकी हुई है। अपनी इसी इंक्लिनेशन के साथ जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो साल में एक समय ऐसा आता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है। इस झुकाव की वजह से सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। नतीजा ये होता है कि हमें मिलता है साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। आमतौर पर यह घटना हर साल 21 या 22 जून को होती है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन आर्कटिक सर्कल जैसे नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और अलास्का की तरफ तो सूरज डूबता ही नहीं है, यानी कि रात के 12 या 2 बजे भी आपको आसमान में धूप दिखाई देगी। अगर आप समर सोलिस्टिस के दिन ठीक दोपहर के वक्त ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास मौजूद भारतीय शहरों जैसे उज्जैन, रांची या गांधीनगर में खड़े होंगे तो कुछ पलों के लिए आपकी परछाई यानी कि शैडो गायब हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज ठीक आपके सर के ऊपर होता है। साथियों, हजारों साल पहले जब घड़ियां या जीपीएस नहीं था तब भी हमारे पूर्वज इस दिन को पहचानते थे। इंग्लैंड का प्रसिद्ध स्टोनहेंज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्टोनहेंज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि समर सोलिस्टिस के दिन उगता हुआ सूरज सीधे इसके पत्थरों के बीच से चमकता है। साथियों, आज का युवा सवाल पूछता है और इसी जिज्ञासु स्वभाव से एक समझदार और प्रगतिशील समाज का निर्माण करना भी चाहता है। तो अगली बार जब भी आपके मन में कोई सवाल उठे तो तुरंत उसके जवाब की खोज में लग जाइए। क्या पता आपकी यही खोज आपको किसी नए और अद्भुत सच से रूबरू करा दे। तो साथियों, ये थी समर सोलस्टिस पर जानकारी। आइए लेते हैं अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

साथियों, अगर आप एक फुटबॉल फैन हैं, तो आपका फीफा वर्ल्ड कप का 4 साल का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून 2026 से हो चुकी है। साथियों, ये वर्ल्ड कप इतिहास के पन्नों में कई बड़े और नए बदलावों के साथ दर्ज होने जा रहा है। आपको बता दें कि फीफा के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के 16 शहरों में इन मैचों का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच 11 जून को मेक्सिको के ऐतिहासिक मेक्सिको सिटी स्टेडियम में खेला गया, जहां मेजबान मेक्सिको ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इस बार का वर्ल्ड कप पहले के सभी टूर्नामेंट से बिल्कुल अलग और भव्य है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो साथियों, वो ऐसे कि अब तक फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ 32 टीमें हिस्सा लेती थी, लेकिन इस साल 48 टीमें विश्व विजेता बनने के लिए इस फुटबॉल के महाकुंभ में हिस्सा ले रही हैं। टीमों की संख्या बढ़ने के कारण इस बार कुल 104 मैच खेले जाएंगे। सभी 48 टीमों को 12 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जहां हर ग्रुप में 4 टीमें शामिल हैं। साथियों, फीफा का ग्रैंड फिनाले 19 जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दुनिया को उसका नया फुटबॉल चैंपियन मिलेगा। कुल मिलाकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 न केवल फुटबॉल के रोमांच को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा रहा है, बल्कि ये टूर्नामेंट खेल भावना और वैश्विक एकजुटता की एक नई इबारत लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में कौन सी टीम अपनी ताकत, रणनीति और जज्बे के दम पर बाकी दावेदारों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ती है। तब तक के लिए अपनी पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ाते रहिए और फुटबॉल के इस बेमिसाल जश्न का पूरा आनंद लीजिए। इसी के साथ कार्यक्रम में अब हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिए ये गीत।

साथियों, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है और आप सभी अग्री करेंगे कि संगीत न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन भी है। जिस प्रकार संगीत मन को शांति और सकारात्मकता देता है, उसी प्रकार योग शरीर को स्वस्थ और मन को एकाग्र बनाता है। संगीत और योग का संगम तनाव को दूर कर आनंद और ऊर्जा का संचार करता है। तो साथियों, संगीत सुनते रहिए, योग करते रहिए, साथ ही अब हमें इजाजत दीजिए। समय हो चला है कार्यक्रम संपन्न करने का। आपसे फिर जल्द ही करेंगे मुलाकात। आप सुन रहे थे अपनी रेडियो साथी राशि को। नमस्कार।

युववाणी मीडियम वेव 198.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

किसान भाई और बहनों, राम राम। आपके अपने कार्यक्रम ग्रामीलोक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त अनिरुद्ध कुमार। आप सभी को हमारी राम राम। साथियों, अमूमन हम सोचते हैं कि फसल कट गई तो खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं। गर्मी में हम भी आराम करते हैं और अपने खेत को भी आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर किसान भाई सोचते हैं कि अब मानसून आने पर ही खेतों की जुताई वगैरह करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मई और जून की इस कड़कड़ाती धूप में अगर आपने अपने खेतों को खुला छोड़ दिया है तो आप अपनी अगली फसल की आधी कमाई का नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं खेती के उस सीक्रेट हथियार की जिसे हम गर्मियों की जुताई कहते हैं। जी हाँ साथियों, यही वो समय है जब हम बिना एक रुपया खर्च किए अपने खेतों को सोना बना सकते हैं। मित्रों, मई जून की ये कड़कड़ाती धूप और गर्म हवाएं हमें परेशान जरूर करती हैं। गर्मी हमको लगती है, विचलित होते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी के लिए ये धूप एक वरदान है। जब हम मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करते हैं तो पता है आपको, जादू शुरू होता है। इसके तीन बड़े फायदों की बात करें वो क्या हैं तो उन्हें जानते हैं। साथियों, गर्मी की जुताई के पहले फायदे की बात करें तो इससे कीड़े मकोड़ों का खात्मा होता है। दोस्तों, पिछली फसल की जो हानिकारक कीट, उनके अंडे, प्यूपा और फंगस जो जमीन के नीचे छिपे होते हैं, गहरी जुताई से वो सब ऊपर आ जाते हैं और तपती धूप में वे झुलस कर मर जाते हैं और जो बचते हैं उन्हें चिड़िया अपना भोजन बना लेती हैं। यानी कि हमारी अगली फसल में कीटनाशकों का खर्चा सीधे आधा हो जाता है। और ये कहिए कि अगर ज़्यादातर अगर खेत खुला है तो पूरा ही खत्म हो जाता है। भाई बहनों, गर्मियों की जुताई का दूसरा फायदा जाने तो इसमें जिद्दी खरपतवारों से हमें मुक्ति मिलती है। मूथा, दूब और कांस जैसी जो घास होती हैं हमारी फसलों का दम घोंटती हैं। उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इस जुताई से उनकी जड़ें उखड़ कर ऊपर आ जाती हैं और धूप से वो सूख कर नष्ट हो जाती हैं। और बिना खरपतवार नाशक छिड़के हम खरपतवारों का प्राकृतिक नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, फायदे नंबर तीन की बात करें तो जो गर्मियों की जुताई से होता है तो मित्रों, इससे हमारे खेत की मिट्टी की पानी के सूखने की क्षमता में सुधार आता है। साथियों, लगातार खेती करने से जमीन के नीचे एक सख्त परत बन जाती है। गहरी जुताई से क्या होता है, वो परत टूट जाती है जिससे मिट्टी भुरभुरी और हवादार बनती है। अब जो सीजन आने वाला है यानी कि बरसात आने वाली है, मानसून में बारिश की एक एक बूंद आपकी ज़मीन के अंदर जाएगी जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा और नमी लंबे समय तक आपकी मिट्टी में बनी रहेगी। तीसरा फायदा यह है यानी कि गर्मियों की जुताई का। किसान साथियों, जुताई करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। गर्मियों की जुताई के लिए हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल डिस्क हैरो का इस्तेमाल करें ताकि मिट्टी कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी खोदी जा सके। अगर आपका खेत ढलान पर है तो जुताई हमेशा ढलान के आड़े यानी विपरीत दिशा में करें ताकि बारिश में मिट्टी बहने ना पाए। जुताई के बाद खेत को कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें ताकि धूप अपना अच्छे से काम कर सके। तो किसान साथियों, अगर आपने अपने खेतों की गहरी जुताई कर दी है तो भाई बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अगर नहीं की है तो आलस छोड़िए, ट्रैक्टर की सीट पर बैठिए और निकल पड़िए खेतों की ओर। और ये मत सोचिए कि खाली पड़े खेतों में बेकार में डीजल फूकेगा। इस गर्मी की जुताई में थोड़ा सा खर्च आपके अगले सीजन की खाद, पानी और कीटनाशकों का हजारों रुपया बचाएगा। मिट्टी तपेगी तभी तो सोना उगलेगी, तभी आपकी अगली फसल की पैदावार दोगुनी होगी और आपका बैंक खाता तभी तो मुनाफे से भरेगा। तो सच मानिए, गर्मी की गहरी जुताई हमारी आने वाली फसलों के लिए संजीवनी

का काम करती है, इसे जरूर करें। मित्रों, हमने अपनी मिट्टी की सेहत और हमारी फसलों के लिए वरदान गर्मी की जुताई के बारे में जान लिया। अब कुछ बातें करते हैं अपनी सेहत की। साथियों, अगर हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए योग ही एक प्रभावी तरीका है। साथियों, आज 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मित्रों, इस बार योग दिवस की थीम है स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग, जो अपने आप में एक अटल सत्य है। अगर हमें निरोगी रहना है, हर तरह से मजबूत बनना है, उम्र कोई भी हो कोई बात नहीं, हमें योग को अपनाना ही होगा। और साथियों, आइए सुनते हैं ये अपने स्वामी से योग को लेकर क्या कह रही हैं।

0: हमने इस लोकगीत में जान ही लिया। और दोस्तों आइए अब बात करते हैं अपनी कर्म भूमि यानी खेती किसानी की बातों की। किसान साथियों, इन दिनों हमारे लगभग सभी किसान जो धान की फसल लगाएंगे, धान की रोपाई करने की तैयारी कर रहे हैं। हफ्ते 10 दिन में धान की रोपाई शुरू हो जाएगी। मित्रों, धान की उन्नतशील खेती हम कैसे करें, क्या तरीका है जिससे हमें अपनी फसल से बेहतर पैदावार मिले, इसके लिए जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं सौरभ उपाध्याय। आपसे बातचीत कर रहे हैं लोकेंद्र पाठक।
1: साथियों, आज हमारे साथ केरावली कस्बे के भवनपुरा गांव के प्रगतिशील किसान सौरभ उपाध्याय जी हैं। सौरभ जी ने कृषि में मृदा विज्ञान से परास्नातक किया है। सौरभ जी, हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है। राम राम।
2: राम राम जी।
1: सौरभ जी, इस वर्ष मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार मानसून लगभग 7-8 दिन पहले ही आने की संभावना है, तो हमारे किसान साथियों ने आने वाले मौसम में फसल लेने के लिए क्या क्या तैयारी शुरू कर दी है?
2: जी, जैसा कि मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त हुई है, किसानों को मानसून जल्दी आ रहा है। किसान अपने खेती में जुट चुका है, अपने खरपतवार का नियंत्रण कर रहा है जो कि अभी इस समय उगा हुआ है उसके खेत में। साथ ही उन्नतशील किस्में अपनी फसल में, जैसे बाजरा है तो बाजरे की उन्नतशील किस्में तलाश रहा है, या धान है तो धान के लिए उन्नतशील किस्में, मक्का है तो मक्का के लिए उन्नतशील किस्में तलाशना उसने शुरू कर दिया है। साथ ही बहुत सारी कृंतन क्रिया जैसे जिताई, निराई, गुड़ाई, ये सारी चीजों में किसान पूरी तरीके से लग गया है।
1: आगरा और आगरा के आसपास के कुछ क्षेत्रों में धान की भी खेती की जाती है। धान की उन्नत खेती करने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए?
2: आगरा के क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ही बड़ा रकबा है जहाँ पर धान की फसल करी जा रही है। धान की उन्नतशील फसल के लिए आपको सबसे पहले उन्नतशील बीज चयनित करना चाहिए अपनी खेत दशा के अनुसार। यानी खेत दशा आपकी नीचे है, मतलब आमतौर पर आपके खेत थोड़ा सा धरासल से थोड़ी नीचाई में है, तो उस हिसाब से ज्यादा जल मांग वाली किस्म आपको चयन करनी चाहिए। आपकी ऊंचाई पे जहाँ पानी का भराव कम रह पाता है तो कम जल मांग वाली फसल आपको वहां पे लेनी है। ऐसी स्थिति में आपको उन्नतशील बीज अपनी खेत दशा के अनुसार लेनी है। जैसे उन्नतशील किस्मों में बताना चाहूंगा, सुगंधी की सुगंधी 5 है, सुगंधी 2 है, 1509 है, 1692 है, 1718 है, पूसा बासमती है, ये सारी किस्में हैं धान की उन्नतशील किस्में हैं।
1: सौरभ जी, धान की उन्नत खेती करने के लिए हमें धान की स्वस्थ पौध, जिसे नर्सरी भी कहते हैं, उसे तैयार करना होता है, तो हमें नर्सरी किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए?
2: हाँ, ये अच्छा सवाल है कि नर्सरी पर बहुत ही कम किसान साथी हैं जो ये जानते हैं कि नर्सरी को वास्तविक तौर पर कैसे किया जाता है। आमतौर पर किसान क्या करते हैं, खेत में गए, मेड़बंदी करी, उल्टा सीधा धान फेंका और घर आ गए, फिर उसको अगले दिन पानी देते हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से बर्निंग इफेक्ट आता है। मैं ये सलाह करता हूँ कि आप किसान तौर पर, किसान नजरिए से देखा जाए तो 4 फीट चौड़ाई और 10-12 फीट लंबाई की क्यारियां काटनी चाहिए, जिससे आप उसमें खरपतवार का नियंत्रण अच्छे से कर पाएंगे। आप स्प्रे करना चाहें स्प्रे, और जब आप उखाड़ेंगे जब नर्सरी को, तो आप उखाड़ने में भी आपको आसानी रहेगी। दूसरा, खाद देने में, पानी देने में, ये सारी चीजों में भी आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो नर्सरी बनाने के लिए आप बेड की जो चौड़ाई लंबाई है उसको सुनिश्चित करें 4 फीट ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई और 10 से 12 फीट उसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई, और एक समान उसके अंदर किसी भी प्रकार का ढलान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सपाट होनी चाहिए, जिससे धान का बीज एक समान जमे। जब पानी दें तो आपका जहाँ ढलान होता है वहाँ पानी ज्यादा हो जाता है, फिर अधिक तापमान से जब पानी गर्म होता है उससे क्या होता है कि आपका जो अंकुरित बीज है वो भी मारा जाता है।
1: जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, यानी जब हमारी पौध तैयार हो जाती है, तो क्या धान की खेती करने के लिए खेत को कुछ विशेष रूप से तैयार करना होता है, यानी खेत की तैयारी भी हमें करनी चाहिए?
2: जी बिल्कुल, खेत की तैयारी में देखा जाता है आमतौर पर कि ज्यादातर किसान 1-2 जुताई करके उसकी रोपाई करवा देते हैं। इसके लिए आप कम से कम 3-4 जुताई मिट्टी पलट हल्की, जिसे हम लोग हैरो बोलते हैं, उसकी करवानी चाहिए। उसके बाद आपको 2 जुताई या 3 जुताई कल्टीवेटर की, और फिर एक समान पाटा लगा के उसमें किसी भी प्रकार का ढलान नहीं होना चाहिए। धान के लिए सुनिश्चित करें कि ढलान आपके खेत में नहीं पाया जाना चाहिए। आजकल तो कंप्यूटर वाले माजे भी चल चुके हैं, तो किसान भी उसका भी इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं।
1: सौरभ जी, धान की खेती में रोपाई का बहुत महत्व है, तो रोपाई हमें किस प्रकार से करनी चाहिए?
2: आज अगर रोपाई करनी है तो 1 दिन पूर्व आप उसमें लगभग पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा करें। ज्यादा पानी खड़ा नहीं करें, ज्यादा पानी खड़ा करेंगे तो आपकी कीच की शिकायत बनेगी। आप क्या करें, आपको रोपाई करनी है तो रोपाई के 8-10 घंटे पहले आप उसमें पानी भरें। बहुत

0: ज्यादा पानी नहीं भरें, और फिर उसके बाद आप दोहरी दोबारा उसमें पानी भरें, जिससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी नीचे तक नम होगी, ज्यादा गहराई तक नम होगी, और उसके अंदर रुपाई करने में भी आपको आसानी रहेगी। रुपाई के लिए एक चीज का किसान साथी विशेष ध्यान दें कि पौधे से पौधे की दूरी एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी एक समान सुनिश्चित करें।
1: बहुत अच्छी बात बताई रोपाई से जुड़ी हुई आपने। इसी के साथ अब हमें आप ये बताइए कि जब रोपाई हो जाती है तो हमें खाद प्रबंधन करना चाहिए, खाद प्रबंधन हमें किस प्रकार से करना चाहिए?
0: जी, खाद्य प्रबंधन से पूर्व एक चीज में और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जब आप रुपाई से भी पूर्व जब आपने खेत की तैयारी करी थी, उस समय में आपको मिट्टी जांच करनी चाहिए। मिट्टी जांच से आपको आपके खेत के अंदर कितनी मात्रा में खाद डालना है वहां पे आपको रिपोर्ट मिलेगी। जो रिपोर्ट आपको वहां पे प्राप्त हुई है उस हिसाब से आप अपना जो है रसायन का
1: बिल्कुल सही बात
0: नियंत्रण
1: बताई
0: करें।
1: सौरभ जी आपने। और वैसे भी मिट्टी की जांच तो सरकार के द्वारा निःशुल्क करवाई जाती है
0: जी
1: और सभी प्रगतिशील किसान आज के समय में मिट्टी की जांच करवा रहे हैं।
0: हाँ, और एक बात, किसान साथी क्या समझते हैं कि एक साल मैंने क्या किया, इस वर्ष मैंने 1 कट्टे का खाद लगाया है, अगले वर्ष उसको दोहरी कर देते हैं, यानी दो बार दुगना लगाते हैं उसको। 1 कट्टे को किसान सोचता है अगले साल 2 कट्टे से दुगनी पैदा आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान नियंत्रित रूप से ही अपना खाद का इस्तेमाल करें, जितने भी परामर्श है वही इस्तेमाल करें। आप रिजल्ट हमारे आमतौर पर किसान, मैं भी एक किसान हूँ, किसानों के बीच बैठता हूँ, तो आमतौर पर पता चलता है कि मैंने तो फलानी चीज दी थी, बातें में धान कारो पर गो, आमतौर पर किसान ऐसे ही बोलता है। तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट का मतलब धान का काला पड़ना नहीं है, रिजल्ट का मतलब उसका अनुवांशिक विकास है।
1: यानी मिट्टी की जांच के अनुसार खाद प्रबंधन करें, अति खाद या अल्प खाद ना करें कि आप खाद बहुत आवज हो गई या खाद हमने कम
0: कम
1: डाल
0: डाली
1: दी, ऐसा ना हो। सौरभ जी इसी के साथ आप ये समझाइए कि हमारी जो फसल बढ़ रही है तो बढ़ती हुई फसल में कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, उनका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए? और जैविक और रासायनिक दोनों ही तरीके हमें समझाइए कि दोनों में क्या अंतर है, क्या हम जैविक में प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम रासायनिक खाद का प्रयोग करें।
0: जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारा नुकसान यानी कीट प्रबंधन के लिए, रोग प्रबंधन के लिए जब हमारा नुकसान आर्थिक हानि की स्तर तक पहुंच जाए, तब उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है रासायनिक खादों की। आर्थिक क्षति स्तर से यदि हमारा स्तर कम है, तब आप जैविक दवाओं के ऊपर जा सकते हैं। जैविक दवाओं में जैसे कीट के लिए आप ब्यूवेरिया वेशियाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन कीटनाशी है, मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रोग प्रबंधन के लिए जैविक में बात करें तो ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीडोमोनास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी दवाओं का आप जैविक में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घर पे बनाई हुई जैसे आग से बनाई हुई दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी दवाएं आप जैविक में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप रासायनिक की तौर पर जाएं तो आप बाजार से जाके आप रसायन आमतौर पर मिल जाते हैं, आप अच्छे कंपनियों के अच्छे उत्पादों का एक पक्के बिल के साथ लेके आए, उनको इस्तेमाल करवाएं।
1: धान की खेती पानी की खेती, जल की खेती मानी जाती है, यानी कि सिंचाई धान की खेती में बहुत आवश्यक है। तो धान की खेती में हमें सिंचाई में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: जी, आमतौर पर किसान मानते हैं कि धान जल की खेती है, पानी की खेती है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हूँ। किसान आमतौर पर क्या करते हैं कि अपने फसल में लगातार पानी खड़ा रखते हैं, जिससे उसमें कीचड़ की समस्या बनती है और उसके अंदर जड़ों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो मैं यही उनको बताना चाहूँगा कि जल मांग के हिसाब से आप जल आपूर्ति करें, आप अनावश्यक पानी ना दें जिससे कीचड़ के हालात बनते हैं। धान पानी की खेती है, कीचड़ की खेती नहीं है, इस चीज़ को गांठ बांध लें, अपने जहन में डाल लें कि आप ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, आप एक सीमित मात्रा में पानी दें।
1: सौरभ जी जब फसल तैयार हो जाती है तो हमें कटाई मड़ाई और भंडारण करना होता है, तो फसल जो हम धान की ले रहे हैं उसमें हम किस प्रकार से कटाई करें, मड़ाई करें और भंडारण कैसे करें, इसे समझाइए।
0: जी, कटाई से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपने पानी कब दिया है। अगर आपको कटाई अगले 10 दिन में करनी है, तो आप 15 से 20 दिन पहले पानी का

0: देना बंद करें, जिससे क्या होगा कि फसल आपकी पकने लग जाएगी। उसके बाद आप उसमें कटाई करें, कटाई करने के बाद आप उसको जमीन पर रखें, उससे क्या होगा उसमें सूखेगी वो, उसमें अत्यधिक मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अत्यधिक उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, या आपका फसल जो आपने निकाला है वो सड़ने जैसा महसूस ना हो। उसके बाद आप उसको भंडारण से पूर्व ये जरूर सुनिश्चित करें, आप उसको एक किसी पॉलीशीट पर या किसी फर्श पर सुखा कर ही उसको भंडारण करें, जिससे उसकी नमी कम हो जाए और आपका धान लंबे समय तक भंडारण हो सके।
1: सौरभ जी, खेती में पराली एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पूरे देश में इस समय पराली पे प्रतिबंध है, तो आप हमें ये बताइए कि धान की खेती में हमें पराली प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए?
0: जी, आमतौर पर किसान अपने खेत में ही पराली को जलाकर उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा, पराली जैसा खाद आपके घर में जो गाय गोबर है उससे भी बढ़िया है हमारी पराली का खाद। तो आप पराली को किसी गड्ढे के अंदर डालें, उसके अंदर थोड़ा सा जो है गोबर और अन्य जैविक चीज़ें जैसे लकड़ियाँ, टहनियाँ आदि चीज़ों के साथ उसको आप डालेंगे, तो आने वाले साल में आपके लिए बेहतर से बेहतरीन आपको खाद आपको उपलब्ध होगा। उसके अलावा आप पराली के लिए अपने गाय भैंसों के लिए चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो पराली के लिए गवर्नमेंट भी हमारी बायोडीजल प्लांट खोल रही है, पराली आप बायोडीजल प्लांट में भी दे सकते हैं, तो पराली भी एक तरीके से आय का स्रोत अब बन चुकी है।
1: धान की खेती से जुड़ी हुई आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, तमाम जानकारियाँ दी, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम।
2: किसान भाई और बहनों, अभी हमने सौरभ उपाध्याय से जाना कि हम धान की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं और अपनी फसल से अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। आपसे बातचीत कर रहे थे लोकेंद्र पाठक। साथियों, चलिए अब लगे हाथ जान लेते हैं मौसम के हाल और बात करते हैं आज के तापमान की। तो आज का न्यूनतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस। कल के न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और दोस्तों, आइए अब रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। वापस लौटते ही आप सुनेंगे एक और प्यारा सा लोकगीत।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: किसान साथियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम ग्रामीलोक में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आइए आप सुनते हैं पति पत्नी की ये प्यारी सी नोक झोंक।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

श्रमिक श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम मजदूर मंडल में। आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी मनीषा अरोरा। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए साथियों, कैसे हैं आप सब? मजे में तो हैं भाई। वैसे कभी कभी मुझे ये लगता है कि हमारे देश में दो चीजें सबसे ज्यादा तेज दौड़ती हैं। क्या? अरे भाई सुनिए तो सही। पहली तो है समय और दूसरी है हमारी चिंताएं, है ना? अच्छा बताइए, सहमत है ना आप हमारी इस बात से? अब देखिए ना, सुबह आंख खुलते ही दिमाग शुरू हो जाता है ये सोचना कि आज क्या बनाना है।

कितना काम करना है, फिर पैसे कब मिलेंगे, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, और देखते ही देखते पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। और मजे की बात तो ये है कि अगर कोई पूछ ले कि भाई साहब कैसे हैं आप, तो हम फौरन बोल देते हैं बस बढ़िया हैं। लेकिन अंदर से कमर कह रही होती है कि मुझे तो थोड़ा आराम चाहिए, है ना। वहीं हमारे जो घुटने हैं वो बोल रहे होते हैं, अरे भाई हम भी हैं जो पूरे दिन से खड़े हैं। और वहीं कंधे शिकायत कर रहे होते हैं कि क्या भैया पूरा दिन हो गया बोझ उठाते उठाते, कब दोगे हमें आराम। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा दर्द हुआ तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। साथियों, हम ये नहीं कह रहे कि आप मेहनत ना करें, बल्कि मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, मेहनत ही हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, मशीन भी बिना देखभाल के नहीं चलती, फिर हमारा शरीर तो मशीन से भी ज्यादा अनमोल है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई औजार पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस औजार की सफाई करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, है ना, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर औजार ठीक रहेगा तभी काम भी अच्छे से होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा औजार क्या है, जी हाँ, वो है हमारा अपना शरीर। साथियों, हमें इसका भी बहुत ध्यान देना है। थकान बढ़ रही है, सांस फूल रही है, कमर में दर्द हो रहा है, ठीक से नींद नहीं आ रही, ये सभी शरीर के संकेत हैं कि अब उसे थोड़ा समय चाहिए। किसके लिए, योग के लिए। जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इस पर बात करना तो बनता ही है। योग का मतलब सिर्फ कठिन आसन करना नहीं है, योग का मतलब है अपने शरीर और मन को थोड़ा समय देना। आपने देखा होगा साथियों, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो कोई कहता है कि चलो गहरी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, तो सचमुच थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगता है। यही तो योग की शुरुआत है। तो सुबह क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, गर्दन घुमाइए, कंधों को आराम दीजिए, हाथ पैरों को खींचिए, शरीर को जगाइए। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है कि कौन कितना कठिन आसन करता है। योग तो अपने शरीर की सुनने की कला है। मजदूर भाई बहनों के लिए योग तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, वो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करने पर शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है, तो योग करने से क्या होता है, शरीर में लचीलापन आने लगता है, कमर और गर्दन का दर्द कम हो सकता है, इससे तनाव भी घटता है और मन भी हल्का महसूस करता है। एक छोटी सी बात सोचिए साथियों, अगर आपके पास एक ऐसा साथी हो जो सुबह से लेकर रात तक हर काम में आपका साथ दे, तो आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे। तो हमारा शरीर ही वो साथी है, तो ज्यादा नहीं, रोज कम से कम 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए, क्योंकि परिवार के लिए कमाना जितना जरूरी है, परिवार के लिए स्वस्थ रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो काम करते रहिए, सपने पूरे करते रहिए, लेकिन शरीर को मत भूलिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की असली ताकत है। इसलिए योग करिए, निरोग रहिए। और हमें आज के प्रश्न का जवाब भी दीजिए। भाई, हमारा आज का प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। सोच कर रखिए, तब तक हम आपको लिए चलते हैं इस वार्ता की तरफ, जिसका नाम है स्वस्थ जीवन का आधार है योग, और इसकी वार्ताकार है रश्मि।

की फीस और दवाइयों पर खर्च कर दिया। क्या लाभ हुआ? हमने इतनी परेशानी भी सहन करी और हमारे परिवार को भी इसका सामना करना पड़ा। अगर हम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करें तो उसकी सकारात्मकता का लाभ भी हमें मिलेगा। अपने दिन की शुरुआत आप सुबह जल्दी उठकर करें, आपका मन शांत होगा। सुबह की सकारात्मक ऊर्जा और ताजी हवा आपको ऊर्जावान बनाएगी। सुबह जल्दी स्नान करके आप कुछ समय अपने आप को दीजिए, जिसमें योग एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। हमारा शरीर अपने आप में इतना सक्षम है कि शरीर में होने वाली तकलीफों को ये खुद ब खुद ठीक कर सकता है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग शरीर, आत्मा और मन को जोड़ने का माध्यम है। यह हमारे आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने योग को जीवन का अभिन्न अंग माना। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के माध्यम से योग को व्यवस्थित रूप दिया और इसे अष्टांग योग कहा। उन्होंने योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग शास्त्र के अनुसार योग 5 प्रकार के होते हैं, हठ योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसमें हठ योग का संबंध शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए होता है। ध्यान योग या राज योग का संबंध मानसिक शांति और ध्यान के लिए किया जाता है। भक्ति योग का संबंध शरीर के प्रति प्रेम और श्रद्धा के लिए होता है। कर्म योग का संबंध निस्वार्थ कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। और ज्ञान योग का संबंध ज्ञान और आत्मचिंतन से आत्मा को समझने से होता है। इन सभी योग प्रकारों का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाना है। योग से होने वाले शारीरिक लाभ की बात करें तो यह शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाता है। मानसिक लाभ की बात करें तो ये तनाव और चिंता कम करता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है, मन को शांत और स्थिर बनाता है, सकारात्मक सोच का विकास करता है। सामाजिक लाभ की बात करें तो इससे व्यक्ति के व्यवहार में सुधार होता है, समाज में शांति और सद्भाव बढ़ाता है, पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है। छात्रों के जीवन में भी योग का विशेष महत्व है, ये उनकी एकाग्रता बढ़ाता है और पढ़ाई में सहायता देता है। योग के माध्यम से वह मानसिक तनाव से भी दूर रहते हैं। योग में प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिससे सांसों को नियंत्रित किया जाता है। इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी आदि आते हैं। योग के प्राचीन ग्रंथों में हजारों आसन का वर्णन है। सुविधा और शारीरिक स्थिति के अनुसार इन्हें मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जैसे ताड़ासन, यह शरीर का संतुलन सुधारने और लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। त्रिकोणासन, यह कमर और पैरों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। वृक्षासन, यह एकाग्रता और संतुलन बढ़ाता है। वीरभद्रासन, यह शरीर में शक्ति और सहन शक्ति का विकास करने के लिए होता है। बैठकर किए जाने वाले आसन, ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और ध्यान के लिए उत्तम माने जाते हैं। जैसे सुखासन, ध्यान लगाने और शुरुआत करने के लिए यह आरामदायक मुद्रा है। वज्रासन, भोजन के बाद पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए किया जाता है। पद्मासन, ध्यान और प्राणायाम के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा है। पश्चिमोत्तासन, यह रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन और पेट की चर्बी कम करने के लिए किया जाता है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, ये पीठ, कंधे और छाती को मजबूत करने के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। भुजंगासन, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और पीठ दर्द में राहत देने के लिए ये आसन होता है। शलभासन, कमर और हिप्स की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ये आसन किया जाता है। धनुषासन, पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर में खिंचाव लाने के लिए ये होता है। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, ये आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और थकान मिटाते हैं। मरकटासन, रीढ़ की हड्डी के दर्द और गैस की समस्या को राहत पाने के लिए ये आसन किया जाता है। सेतु बंधासन, पीठ और जांघों को मजबूती प्रदान करने के लिए ये आसन किया जाता है। हलासन, पाचन और थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने के लिए ये आसन किया जाता है।

0: उल्टे आसन, ये मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाते हैं और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। शीर्षासन, मानसिक एकाग्रता और बालों के स्वास्थ्य के लिए ये आसन किया जाता है। सर्वांगासन, थायराइड और संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये आसन होता है। शवासन, किसी भी योगाभ्यास के अंत में 5-10 मिनट शवासन करना अनिवार्य होता है। यह शरीर और मन को पूर्ण विश्राम की अवस्था में लाता है। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व में लोकप्रिय हो चुका है। योग की इसी महत्ता को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन न केवल योग के महत्व को समझाने का अवसर है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संदेश भी देता है। योग का अर्थ केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित और अनुशासित बनाने की कला है। यह भारतीय संस्कृति की अमूल धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है।
1: साथियों, अभी आप रश्मि से सुन रहे थे वार्ता, जिसका नाम था स्वस्थ जीवन का आधार योग। तो आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक क्षणिक अंतराल।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, कहते हैं जहां शब्द साथ छोड़ देते हैं वहां संगीत बोलने लगता है। यही कारण है कि संगीत को हम आत्मा की भाषा भी कहते हैं। एक छोटा बच्चा भी लोरी सुनकर शांत हो जाता है और सो जाता है। वहीं थका हुआ इंसान कोई प्यारा सा गीत अगर सुन ले तो वो अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगता है। जरा सोचिए, दिन भर की मेहनत के बाद जब कोई पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ता है तो मन का बोझ कितना हल्का हो जाता है ना? साथियों, आज विश्व संगीत दिवस है, तो संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि तनाव भी कम करता है, मन को सुकून देता है और जीवन में नई ऊर्जा भरता है। और वैसे भी ऐसा कौन ही होगा जिसने कभी कोई गीत ना गुनगुनाया हो। काम करते समय, सफर में या फिर अकेले अगर कोई बैठा होगा तो सबके जीवन में कोई ना कोई गीत जरूर आया होगा, तो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए साथियों, कुछ मिनट अपने पसंदीदा गीत के साथ बिताइए, गुनगुनाइए और अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए, क्योंकि भोजन तो शरीर को ताकत देता है लेकिन जो संगीत होता है वो मन को ताकत देता है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में संगीत की मिठास बनाए रखिए।

साथियों, हमारे देश में सड़कों की हालत को देखकर अक्सर बातें होती रहती हैं। दरअसल सड़कों की टूट फूट एक ऐसी समस्या है जिसे आम से लेकर खास तक हर वर्ग को जूझना पड़ता है। ऐसे में अगर आपको पता चले कि ऐसी तकनीक आ रही है जिससे सड़कें अपनी मरम्मत खुद कर लेंगी तो जी हाँ, ये जानकर आपको बेहद खुशी भी होगी और आश्चर्य भी, है ना? दरअसल देश का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसी तकनीक वाली सड़कें

बनाने वाला है जिसमें कोई भी टूट फूट होने पर सड़कों की मरम्मत खुद ही पूरी हो जाएगी। ऐसी सड़कों को सेल्फ हील रोड्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बिटुमेन एक गाढ़ा और चिपचिपा मिश्रण होता है जो डामर, बजरी और रेत को एक साथ बांध कर रखता है। जब सड़कें पुरानी हो जाती हैं तो बिटुमेन घिसता जाता है और डामर के टुकड़े खत्म होते जाते हैं, जिससे दरारें बन जाती हैं और जो फिर बड़े बड़े गड्ढों में बदल जाती हैं। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी से डामर को ठीक करने में बिटुमेन को बनाए रखेगी, जिससे ना तो गड्ढे पड़ेंगे और रोड फर्स्ट क्लास रहेगी। तो है ना साथियों, ये एक अच्छी जानकारी हमारी नई खोजों के बीच। तो इस जानकारी के बाद चलिए आपको ले चलते हैं सेहत की तरफ। भाई, तेज धूप और गर्म हवाओं से नकसीर की परेशानी बन रही है, जिसमें नाक से खून निकलने लगता है, सांस लेने में भी परेशानी होती है। ऐसे में चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि नाक को शुष्क होने से बचाने के लिए क्या करें, आप नारियल का तेल लगाएं, नाक में बिल्कुल भी उंगली ना डालें और नकसीर होने पर बर्फ से सिकाई करें। दरअसल नाक के अंदरूनी हिस्से में पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, शुष्क होने पर या कोई और परेशानी से ये फट जाती हैं और रक्तस्राव होने लगता है। खास तौर पर भीषण गर्मी और गर्म हवाओं में ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में नाक को शुष्क नहीं रखना है, ऑइंटमेंट या घी लगाना है। नकसीर होने पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए आप लेटे नहीं, सीधे बैठकर आगे की ओर झुकें, जिससे रक्त बाहर आ जाएगा। अंगूठे या तर्जनी से नाक को दोनों ओर से 8 से 10 मिनट तक दबाएं, मुंह से सांस लें और नकसीर होने पर आराम करें। भारी वजन उठाने से और भागदौड़ करने से बचें। तो साथियों, इन बातों का ख्याल रखकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो आइए इसके बाद फिर से ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में।

साथियों, हमने आपसे प्रश्न किया था कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो इसका जवाब है 21 जून 2015 को, और इसका प्रस्ताव हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी मनीषा अरोरा को यहीं पर दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने के हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: करिश्मा राय। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघजी कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दोनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: मुन्नी मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
1: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ऑकलैंड में फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उधर दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Talks between the U.S. and Iran aimed at strengthening the fragile interim agreement and advancing efforts to end the West Asia conflict began in Switzerland's Birkenstock today. U.S. Vice President J.D. Vance is leading the U.S. delegation, while Iranian delegation is led by Speaker Mohammad Bagheer Ghalibaf and Foreign Minister Abbas Araghchi. Qatar and Pakistan are mediating the talks. The meeting comes after Tehran closed the Strait of Hormuz again over Israel's continued attacks on Lebanon. However, the U.S. military said the waterway remains open to all vessels. Tehran and Washington are said to participate in the quadrilateral talks late in the day with representatives of Qatar and Pakistan. Ahead of the four-party talks, the U.S. delegation, which also comprises Special Envoy Steve Witkoff and President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, held a meeting with Pakistani mediating team. Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sansodak and INS Agra in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by the Garden Ridge Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: Defense Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of 3 indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted amid tight security arrangements today. It was held across 551 cities in India and 14 cities abroad for more than 22.79 lakh candidates. The examination was conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in English and 12 Indian languages. In Tamil Nadu, 7 people

0: people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam today. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The National Disaster Response Force, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked to contain the leak under strict safety protocols. Chief Minister C. Joseph Vijay ordered a high-level inquiry into the incident and directed a three-member committee to submit report within 24 hours. The Chief Minister also announced an excretion of 2 lakh rupees for the families of each deceased. The International Day of Yoga has been observed throughout the globe today. The main event in India was held in Kolkata's Red Road, led by Prime Minister Narendra Modi, who performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness.
1: Yoga keval hamare sharirik swasthya par hi focus nahi karta. Yog manasik swasthya se sharirik swasthya ka marg dikhata hai. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है यानी
0: President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Indian women hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla today. Put into bat, India A posted 377 runs for the loss of 9 wickets in the stipulated 50 overs. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम विविधा का। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस और इसी पर आधारित है हमारी आज की वार्ता, जिसका विषय है आत्मचिंतन और नवीनीकरण का प्रतीक है ग्रीष्म संक्रांति दिवस। वार्ताकार हैं संजय गुप्ता। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
3: अयनस्य च ये द्वे च विश्वे द्वे च कीर्तिते चतस्र संक्रांतयश्चैव प्राणिनाम पुण्यदायकाः तत्र स्नानं जपो होम सर्वमक्षय मुच्यते मिथुने सर्व धान्यानि कन्यायाम च विशेषतः। भारतीय शास्त्रों एवं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वर्ष में 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण, तथा 2 विषुव हैं जब दिन और रात समान होते हैं। ये चारों संक्रांतियां समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत पुण्य प्रदाता हैं। इन अवसरों पर किया गया स्नान, जप, हवन, दान एवं अन्य धर्म कर्म अक्षय फल देने वाले होते हैं। मिथुन संक्रांति में सभी प्रकार के धान्यों का दान शुभ माना गया है तथा कन्या संक्रांति में तो इसका महत्व और भी अधिक बताया गया है। ग्रीष्म संक्रांति एक ऐसी खगोलीय घटना है

सभी प्रकार के धान्यों का दान शुभ माना गया है तथा कन्या संक्रांति में तो इसका महत्व तो और भी अधिक बताया गया है। ग्रीष्म संक्रांति एक ऐसी खगोलीय घटना है जब सूर्य किसी गोलार्ध में आकाश में उच्चतम स्थिति पर पहुंचता है। भारतीय शास्त्र और खगोल विज्ञान में यह उत्तरायण का चरम बिंदु उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और खगोलीय ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का प्रतीक है। ग्रीष्म संक्रांति के दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सबसे अधिक समय तक पड़ती हैं। भारत में यह अवधि लगभग 13 से 14 घंटे की होती है। भारतीय पंचांग के अनुसार यह ग्रीष्म ऋतु का प्रथम खगोलीय दिवस है। शास्त्रों में यह प्रकृति के संतुलन और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सूर्य के प्रकाश का अधिकतम समय तक उपलब्ध होना ऊर्जा और प्राण शक्ति के विस्तार का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। ग्रीष्म संक्रांति के समय का अधिकतम प्रकाश आध्यात्मिक जागृति, ज्ञान के विस्तार और आंतरिक ऊर्जा को प्रज्वलित करने का प्रतीक माना जाता है। यह समय प्रकृति की पूर्णता और ऊष्मा के चरम को दर्शाता है। ग्रीष्म संक्रांति न केवल प्रकृति का खगोलीय परिवर्तन है, वरन यह हमारे अंतर मन को समझने, अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित करने और जीवन दिशा निर्धारित करने का एक स्वर्णिम अवसर भी है। जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम स्तर पर होता है तो वह हमें हमारे जीवन के उच्चतम लक्ष्यों और आंतरिक प्रकाश की ओर इंगित करता है। वर्ष का यह सबसे लंबा प्रकृति का पूर्णता का प्रतीक है। चारों ओर चिलचिलाती धूप के मध्य भी वृक्षों पर मीठे फल आ रहे होते हैं, फसलें पक रही होती हैं। ऐसे में हम अपनी छोटी छोटी सफलताएं और अपने धैर्य और अपनी यात्रा को सराहें। यह समय जीवन की पूर्णता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। सूर्य की ग्रीष्मकालीन किरणें अत्यंत प्रखर और तेजस्वी होती हैं। यह तेज हमारे भीतर के मणिपुर चक्र को जागृत करता है। ऐसे में जिस समय सूर्य बिना भेदभाव के अपनी ऊर्जा बिखेरता है, हम अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और साहित्य सृजन जैसी सकारात्मक दिशा में मोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बाद से दिन की अवधि धीरे धीरे कम होने लगती है और सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ने लगते हैं। दक्षिणायन को साधना, संयम और लौटने का काल माना गया है। यह समय हमें सिखाता है कि बाह्य भागदौड़ के बाद एक समय ऐसा आता है जब हमें ठहर कर विश्राम करना होता है और अपनी आत्मा के भीतर झांकना होता है। ग्रीष्म संक्रांति पर पृथ्वी को सूर्य का सर्वाधिक सानिध्य मिलता है। रात सबसे छोटी होती है। प्रकाश की यह अधिकता हमारे भीतर के अज्ञान और अंधकार को मिटाने की प्रेरणा है। ग्रीष्म संक्रांति पर नवीनता का विचार प्रकृति और मानव चेतना के स्तर पर एक बेहद गहन और सुंदर दृष्टिकोण है। संक्रांति का अर्थ ही है संक्रमण, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश। जब सूर्य अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचकर दक्षिणायन की ओर नया मार्ग चुनता है तो वह जीवन में नूतनता को अपनाने का संदेश देता है। ग्रीष्म की प्रखर धूप पुरानी सूखी और बेजान हो चुकी पत्तियों को गिरा देती है ताकि वर्षा के आते ही नए अंकुर फूट सकें। यह समय हमारे उन विचारों, कुंठाओं या पुरानी कड़वाहटों को जलाने का अवसर है जो विकास में बाधक है। अपने मानस पटल को बिल्कुल साफ करें ताकि वहाँ नए सकारात्मक और प्रगतिशील विचारों का बीजारोपण हो सके। एक लेखक, कवि या कलाकार के लिए संक्रांति का यह प्रखर तेज एक नई ऊंचाई, ऊर्जा लेकर आता है। सूर्य की किरणें जब पूरी प्रकृति को नए रंगों में भर देती हैं, तो हमारी रचनात्मकता में भी नयापन आना स्वाभाविक है। चिलचिलाती धूप और तपन को लोग कष्टकारी मानते हैं, लेकिन नवीन दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति जानता है कि यही तपन आमों में मिठास भरती है और समुद्र के जल को भाप बनाकर बादलों में बदलती भी है। ऐसे ही हम जीवन की चुनौतियों को कोसने के स्थान पर उन्हें इस रूप में देखना शुरू करें कि ये हमें अंदर से कितना परिपक्व और मजबूत बना रही हैं। कठिनाई को अवसर में बदलना ही दृष्टिकोण की नवीनता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन हमें समय की प्रचुरता का एहसास कराता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा है। अतः हम अपनी दिनचर्या में कुछ नया और स्वास्थ्यवर्धक जोड़ें, जैसे सुबह का ध्यान, स्वाध्याय या प्रकृति के साथ कुछ पल बिताना। सूर्य की नियमितता और अनुशासन को अपने जीवन

0: जीवन में एक नए संकल्प के साथ उतारें। ग्रीष्म संक्रांति के पावन अवसर पर जब सूर्य देव अपनी दिशा बदल रहे होते हैं, तो हम भी स्वयं से पूछें, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो पुराना और बोझिल हो चुका है, और मैं अपने भीतर किस नवीन ऊर्जा, मुस्कान या कला को जन्म देने जा रहा हूँ। ग्रीष्म संक्रांति पर जब हम सूर्य देव को अर्घ दें, तो केवल जल ही अर्पित न करें, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा, व्यर्थ की चिंताएं और अहंकार भी उन्हें सौंप दें। प्रकृति के इस चक्र के साथ खुद को जोड़ें और शांत मन से अपने जीवन यात्रा को सार्थक, शालीन और प्रकाशमान बनाने का संकल्प लें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे वार्ता। आत्मचिंतन और नवीनीकरण का प्रतीक है ग्रीष्म संक्रांति दिवस। वार्ताकार थे संजय गुप्ता। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:18 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सुगंध, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
6: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट UG की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर

0: में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया और कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योग अभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समृद्ध विरासत योग को वैश्विक मान्यता दिलाकर हमें गर्व की अनुभूति कराई है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, मेरठ, अमरोहा, चित्रकूट, अयोध्या, सीतापुर, जौनपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, रामपुर, मैनपुरी और अमेठी सहित सभी जिलों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों, कॉलेजों और स्वैच्छिक संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास और योग जागरूकता कार्यक्रम भी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहां विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से इनकी भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप

0: प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज शाम शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आज करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मैजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। अभ्यर्थियों को आवागमन में दिक्कत न हो इसके लिए उत्तर रेलवे विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं, ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज शाहजहांपुर के ग्राम हथौरिया में खनौत नदी पर बनने वाले सेतु निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री खन्ना ने कहा कि खनौत नदी पर बनने वाला ये पुल क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर को नगर निगम और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन और जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए और वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम मेरी

0: रेडियो मेरा देश का कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। योग चिकित्सा के सिद्धांत और स्वीकार्यता विषय पर डॉक्टर राजकुमार शर्मा से बातचीत कर रहे हैं अनिंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार, आज फिर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर। ऐसा कहा जाता है कि तन सुखी तो मन सुखी, या कहें कि मन सुखी तो तन सुखी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। यहाँ तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ये भी कहा जाता है, और स्वस्थ रहने के लिए योग से बेहतर शायद कोई विधा प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, इससे बेहतर शायद कुछ भी नहीं। योग की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आयोजन जब होते हैं और पूरी दुनिया एक परिवार बनकर जब 21 जून को दिखाई देती है, तब हमें योग की महत्ता नज़र आती है। आज हम योग के एक ऐसे आयाम की चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। वृद्धावस्था हमारा सुखद हो, हेल्दी एजिंग, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य और प्राकृतिक चिकित्सा विद हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: धन्यवाद, नमस्ते।
1: डॉक्टर साहब, हेल्दी एजिंग की चर्चा हर ओर आजकल सुनने देखने को मिलती है। मैं अपने श्रोताओं के लिए यही सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि हेल्दी एजिंग के मायने हैं क्या?
2: हाँ सिंह साहब, जैसा आपने पूछा कि हेल्दी एजिंग अर्थ क्या, तो हेल्दी एजिंग का अर्थ है कि जैसे जैसे व्यक्ति वरिष्ठ होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ उसके शरीर पे, उसके मन पे और उनके भावों पे परिवर्तन नजर आते हैं, और वो परिवर्तन सकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः परिवर्तन नकारात्मक देखने को मिलते हैं। क्योंकि समाज में जो चल रहा है उन सब जो परिणाम है वो ये होता है कि व्यक्ति नकारात्मक परिवर्तनों में पीड़ित रहता है, और वो नकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जकड़ लेते हैं। तो हेल्दी एजिंग का अर्थ है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं, और योग का उसमें क्या रोल हो सकता है।
1: अब चूंकि उम्र ऐसी चीज है जिसको बढ़ती उम्र को रोक पाना तो संभव है नहीं, लेकिन वो स्वस्थ हो, गरिमामय हो, सक्रिय रहे, वो हम जरूर ऐसे उपाय कर सकते हैं। जब बड़े बुजुर्गों की या वरिष्ठ नागरिकों की बात आती है तो आज के समय में अगर हम देखें तो उनके लिए योग की आवश्यकता को ज्यादा महसूस किया जा रहा है, आपको क्या लगता है?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो हमारे व्यक्तित्व है, मानव व्यक्तित्व, वो भाव प्रधान है। जिस तरह का भाव शरीर में रहता है, मन में रहता है, चित्त में रहता है, व्यक्ति उसी तरह के परिवर्तन प्राप्त कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। और भाव को परिवर्तित करने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है दुनिया में।
1: ठीक बात।
2: और भाव को परिवर्तन करने में योग का बड़ा महत्व है, क्योंकि भाव प्रधान होता है और भाव प्रधानता को योग के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, और न सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है बल्कि सकारात्मक परिवर्तन भाव के रूप में योग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: हाँ। अगर शारीरिक रूप से देखें और मानसिक रूप से भी देखें, इमोशनली भी आदमी अपने आप को बहुत सारे बदलावों से गुजरता है। शारीरिक तौर पे अगर देखें तो जोड़ों में, मांसपेशियों में शिथिलता आती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो अगर मैं इस पक्ष की बात करूं जहां जोड़ों में, मांसपेशियों में, इन सब में शारीरिक तौर पे योग जो है वो किस तरह मदद करता है?
2: देखिए आज आप देखेंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। कोई शरीर की बीमारियां, और शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, मसल्स की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, कान की बीमारियां, हृदय की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां, मूत्र संबंधित बीमारियां, तो बहुत प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है व्यक्ति। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40 साल के बाद सामान्य रूप से व्यक्ति के ज्वाइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, डायबिटीज बढ़ने लगता है, हार्ट में प्रॉब्लम होने लगता है। ऐसी स्थिति में अगर योग अभ्यास आरंभ कर दिया जाए तो ये जो एजिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं हम कि वरिष्ठता प्राप्त करते हुए व्यक्ति विभिन्न बीमारियों का शिकार बनता है, उस परिस्थिति से हम अपने को निकाल सकते हैं। क्योंकि उस वक्त हमें जरूरत होती है हमारी मसल्स की स्टिफनेस को दूर करने की, हमारे ज्वाइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाए रखने की, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन

0: को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए, मसल्स को मजबूत रखने की। तो ऐसी स्थिति में आसनों का जो अभ्यास है वो हमें बहुत मदद करता है। अगर आसनों का अभ्यास हम करें तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स स्पेशली,
1: जी,
0: इनको हम दूर कर सकते हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पे गठिया, कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये सब समस्याएं बुढ़ापे में आमतौर पर सभी को फेस करनी पड़ती हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बढ़ती उम्र में आती हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने कहा कि योग उसमें मदद करता है, तो कौन कौन से वो आसन हैं? क्या सारे आसन बुढ़ापे में किए जा सकते हैं? नहीं, तो कौन से आसन हैं जो उनको मददगार हो सकते हैं?
0: हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी कि कौन से आसन करें, क्योंकि हजारों प्रकार के आसन हैं और हजारों प्रकार के आसनों में कुछ एक आसन को चूज करना और परिस्थिति, व्यक्ति, उम्र, उसकी कैपेसिटीज हैं, उनकी जो क्षमता है, उनको ध्यान में रखते हुए उन आसनों का अभ्यास करना, उसके लिए पर्टिकुलर आसन चूज करना। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर व्यक्ति 40 साल क्रॉस कर रहा है और उसको थोड़ी सी समस्याएं अब होने आरंभ हो गई हैं, तो स्ट्रेचिंग, जैसे ताड़ासन है, अर्धचक्रासन है, नटराज आसन है, त्रिकोणासन है, पश्चिमोत्तानासन है, वक्रासन है, उष्ट्रासन है, ऐसे आसन जिसमें खिंचाव हो और खिंचाव के साथ जॉइंट्स की मोबिलिटी को जो इम्प्रूव कर सके, ऐसे आसनों का अभ्यास बहुत फायदेमंद रहता है।
1: माने आपके शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज थोड़ी हो जाए, उनमें मूवमेंट आ जाए,
0: यस, उनमें
1: वो
0: मूवमेंट आ जाए
1: ऐसे आपको व्यायाम या आसन,
0: करने से।
1: सूक्ष्म व्यायाम की बड़ी बात होती है, तो वो भी आप इन्हीं को ही कहेंगे सूक्ष्म
0: नहीं,
1: व्यायाम से क्या
0: सूक्ष्म
1: तात्पर्य?
0: व्यायाम का अर्थ है कि हम अपने जॉइंट्स में, जो छोटे छोटे जितने हमारे जॉइंट्स हैं,
1: जी
0: हमारी फिंगर्स में, रिस्ट में, एल्बोज में, शोल्डर में, वेस्ट में, घुटने में, टखने में, ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को रोटेशन देते हुए रोटेट करना है, फिर थोड़ा सा बेंडिंग देना है, इनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग देना है, इसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, कि जिससे हर छोटे बड़े जॉइंट्स को, मसल्स को प्रैक्टिस मिल जाए, जिससे उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाए और
1: स्टिफनेस
0: उन
1: खत्म हो जाए।
0: स्टिफनेस खत्म हो जाए।
1: ठीक बात, ये तो फिजिकल जो एस्पेक्ट है वो हो गया। हम अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य पे। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भी योग की बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो जैसे जैसे आदमी उम्रदराज होता है, उम्र बढ़ती है, उसमें चिंताएं और अकेलापन और जो भावनात्मक असुरक्षा जैसी स्थितियां हैं वो घर कर जाती हैं। तो उस स्थिति में, उस संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में योग की क्या भूमिका आप देखते हैं?
0: ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सर पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, 40 साल के बाद आप देखेंगे तो बच्चों, जनरली व्यक्ति जब 40 क्रॉस करता है तो उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हायर एजुकेशन ले रहे होते हैं, और उसको घर बनाना होता है, उसको बाकी परिवार करना होता है सेट। ऐसी स्थिति में बहुत प्रकार की चिंताओं के थ्रू वो व्यक्ति गुजरता है, और चिंताओं से गुजरते गुजरते, जैसा आप जानते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बहुत जब चिंता व्यक्ति करता है, तो चिंता जब बहुत ज्यादा होगी तो हमारे शरीर में हार्मोन्स के सीक्रेशंस उसी तरह के होंगे, और वो जो हार्मफुल हार्मोन्स हैं वो पैदा होंगे, और वो जब पैदा होंगे तो विभिन्न प्रकार की एंजाइटी, जिसको चिंताएं, फिक्र, तनाव कहते हैं, मानसिक एक उद्वेग कहते हैं, वो हो जाएगा, आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा, इवन आगे चल के सिजोफ्रेनिक भी हो जाता है। तो जब ये चिंताएं, फिक्र होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिक कंडीशंस का शिकार व्यक्ति होता है, तो उसको योग का अभ्यास आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दवाई इसका कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं हो सकती जब तक खुद के, चूंकि हम ये मानते हैं, योग में ये मानते हैं कि ये जो परेशानी है ना, वो शरीर के अंदर से पैदा हुई हुई है, तो शरीर के अंदर ही अगर हम परिवर्तन कर लेते हैं योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मुद्रा और बंधनों के द्वारा, तो बाहर से मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
1: कांटे से ही कांटा
0: कांटे
1: निकलेगा।
0: से ही कांटा निकलेगा। जो चिंता फिक्र हुई वो शरीर के अंदर ही हुई ना, और अंदर ही उसने रोग पैदा कर दिए, तो इसको हम अपने अंदर ही परिवर्तन ला करके,
1: उसका
0: अपने
1: हल भी आपको अंदर ही तलाशना
0: अंदर
1: है।
0: ही तलाश रहे हैं। हम हर जनरली बाहर तलाशते हैं, और बाहर तलाशने के चक्कर में जिंदगी भर दवाई खाने के शिकार हो जाते हैं, और जिंदगी भर दवाई खाते हैं, और तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी जो ठीक होता नहीं, नई प्रकार की बीमारियों को शिकार हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में ध्यान का अभ्यास, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी का अभ्यास और ओम का अभ्यास व्यक्ति करे, तो उसको विभिन्न प्रकार की जो मानसिक बीमारियां हैं उनसे निजात मिल सकती है।
1: ध्यान, प्राणायाम, और आपने जैसे कहा कि ओम का अभ्यास, तनाव कम हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक जो मुझे लगता है कि आदमी अगर सकारात्मक रहे तो सकारात्मक सोच विकसित करने में भी शायद योग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: निश्चित रूप से, देखिए सर, योग अभ्यास जब हम करते हैं तो योग का अभ्यास का मतलब यह है कि सिर्फ आसन नहीं, उसमें आसन के साथ प्राणायाम होता है, धारणा होता है, ध्यान होता है, मुद्रा होता है, बंध होता है।

0: और ये कलेक्टिवली जब हम इन सब चीजों का अभ्यास करते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि हमारे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को दुरुस्त रखना, सामाजिकता दुरुस्त रखना और भाव प्रधान और सकारात्मक भाव रखना, ये चारों स्तर पर हमारा ये आसन प्राणायाम मुद्रा बंद और ध्यान काम करता है। और जब शरीर के चारों स्तरों पर समन्वय पैदा हो जाता है, ट्रैंक्विलिटी पैदा हो जाती है, तो किसी भी प्रकार के रोग को ये प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ये क्योर भी कर सकते हैं। इसलिए कलेक्टिवली सबका अभ्यास करना चाहिए।
1: ठीक बात। बुढ़ापे में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि याददाश्त चली जाती है
0: बिल्कुल
1: और जो मानसिक एक शिथिलता आ जाती है, तो क्या योग हमारी स्मरण शक्ति को या मानसिक सक्रियता को बढ़ाने में मददगार होता है?
0: बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली 50, 55, 60 के बाद, 60 के बाद लोगों को डिमेंशिया हो जाता है, स्मरण शक्ति उसकी बहुत कमजोर हो जाती है। और अक्सर ये वृद्ध लोग ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं, अरे कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहा, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, मैंने चाबी कहाँ रख दी, मैंने पैसा कहाँ रख दिया, मैंने बाकी चीजें कहाँ रख दी, उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि उस वक्त एक तो हम मानसिक रूप से काम करना बंद कर देते हैं, लगभग हमें हमें लगता है कि अब हमें जरूरत नहीं है, तो हम अपने को उदासीन पाते हैं। तो हम छोटी छोटी जो समस्याएं या छोटी छोटी जो और चीजें पहेलियां हैं उनको सुलझाने में कोई किसी प्रकार का एंटिसिपेशन नहीं करते, किसी प्रकार का भाग नहीं लेते। इससे हमारा ब्रेन काम करना धीमे धीमे धीमे धीमे कम कर देता है। और ये ब्रेन की नेचर है कि अगर आपने ब्रेन से काम लेना बंद कर दिया तो ब्रेन काम नहीं करेगा,
1: शिथिल हो जाएगा।
0: शिथिल हो जाएगा। दूसरा, हम आसन प्राणायाम मुद्रा बंद जैसे अभ्यास नहीं करते, जिससे ब्लड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और ब्रेन में जो स्पेशली ब्लड की और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो मात्रा से कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर हम योग का अभ्यास करें तो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में ज्यादा होगी। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में ज्यादा है और ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है,
1: तो वो
0: तो
1: सक्रिय रहेगा।
0: डिमेंशिया जो स्मरण शक्ति है उसको बना के रखती है। अगर कम भी हो गई है तो उसको पुनः से प्राप्त किया जा सकता है।
1: अच्छा, एक चीज जो हम जो फिजिकल उसकी बात कर रहे थे कि जोड़ों में मांसपेशियों में मजबूती के लिए योग किस तरह मददगार होता है?
0: देखिए, 40 साल के बाद हार्मोन सीक्रेशंस कम हो जाते हैं। हमारे जो हार्मोन्स हैं, नौ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके सीक्रेशंस कम हो जाते हैं। और जब सीक्रेशंस कम होते हैं, हमारी बॉडी को जिस तरह के, जिस क्वांटिटी में और जिस क्वालिटी के हार्मोन्स चाहिए, 40 साल के बाद सामान्य रूप से उन बॉडीज को उस तरह के हार्मोन्स नहीं मिल पाते जो कि सामान्य व्यक्ति योगाभ्यास या फिजिकल मूवमेंट नहीं करता। ऐसी स्थिति में जब हार्मोन्स के सीक्रेशंस कम हो गए हैं तो सबसे पहले असर पड़ेगा मसल्स पर, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, मसल्स स्टिफ हो जाएंगे। और जब मसल्स स्टिफ होंगे तो इसका असर जाएगा आपके लिगामेंट पे, लिगामेंट के बाद असर जाएगा बोन पे, और लिगामेंट्स, बोन, मसल्स जब सब स्टिफ होंगे तो फिर पेन की स्थिति बन जाएगी।
1: सारे के सारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं वो आपस में एक समन्वय में कार्य करते
0: समन्वय
1: हैं,
0: में कार्य
1: और
0: करते
1: जब वो
0: हैं।
1: समन्वय कहीं गड़बड़ाता है तो सारे अंग प्रत्यंग जो है वो कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा पाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं, और
0: बिल्कुल
1: उसकी परिणति होती है कि हमें बहुत सारे जो रोग हैं वो नज़र आते हैं अपने इर्द गिर्द।
0: बिल्कुल
1: हम अपने श्रोताओं के साथ आपकी पसंद का एक गीत इस मुकाम पे सुनवाने का चेष्टा करेंगे, तो हमें बताएं कि आप की पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को अभी सुनवाना चाहें।
0: मुझे वो पुराना गाना इनसे बड़ा अच्छा लगता है, कोई यूं ही मिल गया था सरे
1: यूं
0: राह चलते चलते।
1: ओ हो, क्या बात है, क्या बात, कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते।
0: हाँ, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: जी
0: अगर आप श्रोताओं को ये गाना सुनवाएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और मुझे लगता है ये इसमें जो संगीत है ना सिंह साहब,
1: जी
0: वो भाव विभोर कर देने वाला है।
1: तो
0: ये वो
1: आइए सुन
0: संगीत है जो
1: लेते हैं
0: हमारे
1: आपकी पसंद का ये
0: बिल्कुल
1: गीत।

0: डॉक्टर साहब, फिर से वापस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल का युग डिजिटल युग है, जहाँ पर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े बूढ़े हैं घर के, वो भी मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो क्या योग जो है आज के डिजिटल दौर में जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको भी इसमें संतुलन स्थापित करने में मददगार होता है?
1: बिल्कुल सिंह साहब, ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। डिजिटल जो एडिक्शन जिसको कहते हैं,
0: जी
1: मोबाइल का एडिक्शन है, मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, इसका उसका। और बड़े ही नहीं, इसमें सो 5 साल

0: 3 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग सब लोग का इन्वॉल्वमेंट हो गया है।
1: नहीं, युवा पीढ़ी और बच्चे तो हैं ही इसमें,
0: हाँ
1: लेकिन आजकल तो जो है हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि समय की उस साथ चलना उनकी मजबूरी है। और जो आजकल की तकनीकी युक्त जो हमारा जीवन हो गया, जीवन शैली है, जिसमें तकनीक का बड़ा दखल है, तो ऐसे में उसको अवॉइड कर पाना तो बहुत मुश्किल है। जी
0: अवॉइड कर पाना मुश्किल है सिंह साहब, लेकिन इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और समाधान इसका यह है कि हम व्यक्ति को दूसरे टारगेट्स उपलब्ध कराएं, दूसरे उद्देश्य उपलब्ध कराएं। अभी व्यक्ति के पास क्या है, जब वो खाली बैठता है तो उनको लगता है मोबाइल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, इंस्टा खोल दो, फेसबुक खोल दो और उसे टाइम पास हो जाएगा, व्हाट्सएप से टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको समझाएं और बताएं व्यक्ति क्यों ये डिजिटल एडिक्शन क्यों हो गया है, व्यक्ति के अंदर कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर खोजता है वो, उसको लगता है व्हाट्सएप पे कुछ मिल जाएगा, इंस्टा पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, कुछ नया मिल जाएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, उसको ऐसा लगता है। और ऐसा खोजते खोजते वो पूरे जिंदगी भर, पूरी वो साल, पूरे महीने, पूरे वीक, पूरे 24 घंटे वो बिजी रहता है इंस्टा फेसबुक पे। हाँ, मिलता कुछ नहीं है। अगर हम उसके विवेक को जागृत कर पाए कि इंस्टा पे नहीं है, आपको जितने उत्तर हैं प्रश्नों के वो आपके अंदर से मिलेंगे और आपके अंदर आपको झांकना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा
1: और यही आपको योग जो है काम,
0: और यही आपको योग काम करेगा। और एक बार जब योग क्लिक कर गया, उसको वो अपने अंदर कनेक्ट हो गया, तो वो जो आनंद आता है, जो उत्तर मिलते हैं दुनिया भर के प्रश्नों के, वो दुनिया में बाहर कहीं नहीं मिलते।
1: और आपने बीच में बात की थी कि सामाजिक जो एक कनेक्टिविटी है, सोशल कनेक्ट, क्या योग व्यक्ति को खास तौर से वृद्धावस्था में सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहने में मददगार होता है?
0: हाँ, निश्चित रूप से योग सामाजिक रूप से सक्रिय रहने में मददगार करता है। आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने आप में तो ठीक है, लेकिन उसका झगड़ा अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, बिजली के मैकेनिक के साथ होता है, सब्जी वाले के साथ होता है, दूध वाले के साथ होता है, चाय वाले के साथ होता है। यानी सामाजिक जो तारतम्य है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। समाज में उसकी बन नहीं रही है किसी से, उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं होती, समाज की अपेक्षाएं उससे पूरी नहीं होती, उसकी अपेक्षाएं समाज से पूरी नहीं होती, और वहां द्वंद्व पैदा होता है और झगड़ा होता है समाज में और व्यक्ति में, और ऐसे में समाज भी पीड़ित है और व्यक्ति भी पीड़ित है, दोनों ही पीड़ित है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में योग एक ऐसा माध्यम बन सकता है, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी फिलॉसफी है जो दोनों के बीच में एक तारतम्य, एक ट्रैंक्विलिटी, एक संबंध स्थापित कर सकता है, सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकता है, जो ये बताता है कि सामने वाले का दुख मेरा दुख है, सामने वाले की समस्या मेरी समस्या होनी चाहिए। वो सामने वाले को अगर समस्या से पीड़ित पाता है तो जनरली सामान्य रूप से लोग समझते हैं हमें क्या करना है, हाड़ में जाने दो, वो पीड़ित है तो पीड़ित रहने दो, वो उसको मदद नहीं करता है। जबकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो व्यक्ति का काम चलेगा नहीं। हम कितने बड़े भी सक्षम हो जाए, कितने बड़े पैसे वाला हो जाए, कितने बड़ी सुविधाएं प्राप्त कर लें, लेकिन अगर आपस में हमारा तारतम्य ठीक नहीं है, मानव मानव की मदद करने को तैयार नहीं है, तो सामाजिक जो ताना बाना है वो खराब होना ही है।
1: अगर दूसरे की कठिन परिस्थिति में आपको कहीं ना कहीं वो एहसास, दूसरे के सुख में वो खुशी, वो आपको अगर होती है तो आप सामाजिक रूप से कनेक्टेड हैं।
0: बिल्कुल।
1: नहीं है अगर, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को मिस कर रहे हैं और आपको संतुलन का बिठाने की जरूरत है।
0: और सिंह साहब एक बात और जोड़ूंगा, ये जो होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के नर्वस सिस्टम है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे भावों को, हमारे विचारों को प्रभावित करता है। उसके लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं है, वो सिर्फ योग अभ्यास उसके लिए एक ऐसी दवाई है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। यानी आप गलत नहीं सोचेंगे, आदमी गलत सोचता है तो उसके लिए कोई दवाई नहीं है कि खाओ और सही सोचो।
1: भावों पे नियंत्रण जो है,
0: भावों पे
1: हो सकता है जब आपका अपनी श्वासों पे नियंत्रण हो।
0: हाँ, श्वासों पर नियंत्रण हो और आपके अंदर की चेतना पे आपका जब नियंत्रण हो जाएगा तो आप सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, दुनिया का दुख आपको अपना दुख लगेगा, दुनिया का सुख अपना सुख लगेगा, वहां आप सामाजिक ताने बाने में जुड़ जाएंगे।
1: एक चीज और होती है डॉक्टर साहब, जो मुझे लगता है, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, कि जब हम मिल बैठ के सामूहिक रूप से योग के सेशंस करते हैं तो ऐसे सत्रों में सिर्फ जो है आप कहें स्वास्थ्य लाभ हो रहा हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो सामाजिक जुड़ाव है वो भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल ठीक बात है। एक साथ जब करते हैं तो एक साथ सबकी चेतना, सबकी ऊर्जा, सबकी शक्ति एक साथ एक जैसे काम करती है, और जब एक जैसे काम करती है तो विचार भी एक जैसे आएंगे, बॉडी के अंदर चेंजेस भी एक जैसे होंगे और वो सकारात्मक होंगे, भाईचारा बढ़ेगा, वैमनस्यता खत्म होगी।
1: अब हम चूंकि अब वृद्धावस्था होती है तो लिमिटेशंस हो जाती हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद हम चाह के भी नहीं कर सकते। तो क्या वो सावधानियां हैं, क्या वो

0: बातें हैं कि अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति योग सत्र करता है तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत होती है, उसको सावधानी बरतने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि टीवी और यूट्यूब देख के कभी योग न करें। ये सबसे खतरनाक बीमारी चल रही है आजकल। डिजिटल एडिक्शन का एक बड़ा कारण ये भी है कि यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिसकी एजुकेशन का कोई पैरामीटर वहां निर्धारित नहीं है। कोई भी आदमी अपने को कितना भी बड़ा योगी मानते हुए सो कॉल्ड योगी बन जाता है और वहां वो अपने विचार व्यक्त करने लगता है जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, अकेडमिक एजुकेशन नहीं है। और अकेडमिक एजुकेशन के बगैर जो लोग सिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। इसलिए यूट्यूब देख करके, इंस्टा देख करके कभी भी योगाभ्यास नहीं करना
0: सोशल
1: चाहिए।
0: मीडिया पे दूसरों को देख के आप अपनी क्षमताओं का आकलन, गलत आकलन ना करें।
1: यस करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा अपना आकलन न करें। आप किसी एक्सपर्ट, किसी योग गुरु के पास जाएं, उससे व्यक्तिगत रूप से मिलें, अपनी परेशानियां, अपनी क्षमताएं, अपनी सीमाएं बताएं और उसके अनुसार वो आपको, आपके लिए एक प्लान देगा कि
0: वो
1: आपको ये
0: उसको आप
1: योगाभ्यास।
0: अपनी क्षमताएं, अपनी सीमाएं साझा करें और वो आपकी क्षमताएं, आपकी सीमाएं जो है वो देख के निर्धारित करके आपको उसके हिसाब से सलाह, सही सलाह देगा।
1: निश्चित रूप से, बिल्कुल।
0: अब मान लीजिए कोई वरिष्ठ व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा समय योग के लिए दे पाने के लिए नहीं है, और अगर मान लीजिए कि वो आधा घंटे, 45-50 मिनट ही अगर वो देना चाहता है, तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो दिनचर्या है उसकी जिसमें योग जैसी विधा को वो शामिल कर सकता है और अपनी जो एजिंग प्रोसेस है उसको और हेल्दी कर सकता है।
1: हाँ, अगर व्यक्ति के पास, मैं कह रहा हूं, 2 घंटे 3 घंटे नहीं है तो कोई बात नहीं, 30 मिनट है, 40 मिनट है, 30 से 40 मिनट का शेड्यूल योगाभ्यास अगर करे वो, तो उसको पूरा हेल्दी एजिंग में बहुत मदद कर सकता है। और उसमें सुबह उठे, अपना थोड़ा बहुत नींबू पानी पिए और सुबह जो है जग करके बैठ जाए, थोड़ी कपालभाति करे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, भ्रामरी करे, ओम गाए और फिर खड़े होकर के सूक्ष्म व्यायाम कर ले जिसमें रोटेशन है, कंधे का, गर्दन का, कमर का, घुटने का, एंगल्स का रोटेशन कर ले, थोड़ा हाथ चौड़े करके ट्विस्टिंग कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले और फिर लेट करके क्रोकोडाइल्स कर ले, पवन मुक्तासन कर ले, सेतु बंधासन कर ले, अर्धहलासन कर ले, फिर उल्टा लेट करके निरालंबासन, भुजंगासन, सर्पासन कर ले और बैठ करके वक्रासन और पश्चिमोत्तान कर ले, खड़े होकर के ताड़ासन, वृक्षासन और चक्रासन कर ले और ओम गा ले, थोड़ा शवासन का अभ्यास कर ले। ये पूरा शेड्यूल कुल मिलाकर के आधा घंटे से लेकर के 40 मिनट में हो जाता है। और अगर ये होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये लगभग 20 आसनों के नाम मैंने बताए हैं, 4 प्राणायाम के नाम बताए हैं और कपालभाति बताई है और 1 शवासन का अभ्यास बताया है। ये लगभग 25 प्रक्रियाएं हैं। अगर इन 25 प्रक्रियाओं का अभ्यास व्यक्ति 30 से 40 मिनट रोज करता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसको जीवन में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी, शरीर और मन उसका स्वस्थ रहेगा। और हमारा इस साल का जो योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम है,
0: जी जी
1: उस थीम को भी हम पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे।
0: उम्र बढ़ना तो जीवन की एक स्वाभाविक
1: स्वाभाविक
0: प्रक्रिया
1: प्रक्रिया
0: है,
1: है, बिल्कुल।
0: लेकिन सक्रिय रहना वो आपका अपना निर्णय है, किस तरह से आप अपने दिनचर्या में नियमित योग और इनका पुट सम्मिलित करके अपने जीवन को स्वस्थ और आनंदमय बना सकते हैं। योग केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं मेंटेन करता, वो आपके जीवन में भी एक संतुलन कायम करता है। जाते जाते हमारे श्रोताओं को स्वस्थ और खुशहाल वृद्धावस्था के लिए कुछ और संदेश देना चाहें।
1: मैं सब श्रोताओं को जो सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहने का बहुत साधारण तरीका है। ज्यादा आपको विज्ञान में फंसने की आवश्यकता नहीं है। टाइम से सो जाइए, टाइम से जग जाइए, टाइम से खा लीजिए और आधा घंटे से 40 मिनट का योग अभ्यास कर लीजिए, बस आप स्वस्थ हो जाएंगे।
0: नियमित योग, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच, और
1: चकार
0: साथ साथ जो सामूहिक योग करेंगे तो सामाजिक जुड़ाव,
1: बिल्कुल
0: ये आपको बेहतर वृद्धावस्था की ओर लेके जाएंगे। तो
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, आज जो इनसाइट्स हमें डॉक्टर साहब ने दी हैं वो हमारे ज़रूर काम आने वाली हैं। डॉक्टर शर्मा साहब, आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद। श्रोताओं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस भेंट वार्ता में मिली जो अभी हमने सुनी। भेंट वार्ता थी योग चिकित्सा के सिद्धांत और स्वीकार्यता, जिसमें डॉक्टर राजकुमार शर्मा से बात कर रहे थे अनिंद्र सिंह। श्रोताओं, ये तो बात थी योग की। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है? जी हाँ श्रोताओं, आज है विश्व

संगीत दिवस। तो श्रोताओं, आज के इस खास दिन पर हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, संगीत वह भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है। आज हम विश्व संगीत दिवस के अवसर पर संगीत की इस अद्भुत शक्ति का उत्सव मनाने के लिए अपने श्रोताओं के साथ जुड़े हुए हैं और श्रोताओं, पूरे विश्व को प्रेम, शांति और सौहार्द के सूत्र में संगीत ही है जो बांध देता है। सुरों की छाओ में मिलता है सुकून अपार, संगीत से महक उठता है जीवन का संसार, जहां शब्द हार जाते हैं अपनी पहचान, वहां संगीत बन जाता है दिलों की जुबान। तो आइए हम भी सुनते हैं संगीत, गाने नए पुराने। तो पहला गीत आइए आपको सुनवाते हैं सरगम फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस से हुई थी, जिसका उद्देश्य संगीत को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करना है। तो आइए आज इस खास दिवस पर आप सुनते हैं जब वी मेट फिल्म से सोनू निगम और जावेद अली के स्वर में ये गीत। बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी भावनाओं का साथी है। खुशी हो या गम, उत्सव हो या संघर्ष, संगीत हर पल हमारे साथ चलता है। तो आइए हम भी साथ चलते हैं संगीत के और आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म से ये गीत। शंकर महादेवन, सौम्या राव और लॉय मेंडोसा की आवाजों में गुलजार की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म

श्रोताओं, संगीत आत्मा की वो आवाज है जो शब्दों से कहीं अधिक गहराई से महसूस की जाती है। तो श्रोताओं, आइए हम भी महसूस करें इस गहराई को और सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और विनोद राठौर और करसन सरगाथिया की आवाजों में। महबूब की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने।

श्रोताओं, संगीत की कई विधाएं हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, भक्ति संगीत और फिल्म संगीत, और भी न जाने कितनी विधाएं। तो आइए आज के दिन नमन करें उन विधाओं को और उन कलाकारों का सम्मान करें जिन्होंने अपने सुरों से हमारे जीवन को मधुर बनाया। और इसके साथ ही सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अभिनेत्री फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल लिखे हैं मजरूर ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हर दिल में एक तराना है, हर सांस एक राग, संगीत से ही सजता है जीवन का हर बाग। सुरों की इस अनमोल धरोहर को हम अपनाएं, विश्व संगीत दिवस पर संगीत का सम्मान बढ़ाएं। तो श्रोताओं, ये तो था हमारा आज का गाने नए पुराने कार्यक्रम। और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हो चुके हैं, तो आइए एक बार फिर से रुख करते हैं फिल्म संगीत की ओर और एक बार फिर से सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत एक्शन रिप्ले फिल्म से सुनिधि चौहान और रितु पाठक की आवाजों में, इरशाद कामिल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, मैं हूं ना फिल्म से ये गीत आपने सुना के और वसुंधरा दास की आवाजों में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में विशाल का गीत, सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म कैश से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में कैश फिल्म से ये गीत आपने सुना, सुनिधि चौहान की आवाज में। विशाल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रेय

0: शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के

0: संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना।

है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: And in women's cricket, India were 19 for no loss in 4 overs against South Africa in a Group A match of the ICC T20 World Cup in Manchester when reports last came in. India won the toss and opted to bat first. This match marked a major milestone for Captain Harmanpreet Kaur, who became the first cricketer, male or female, to play 200 T20 internationals. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded today, bringing down the curtains on a 7-day celebration of non-fiction cinema. The closing ceremony was held at Mumbai's Ravindra Natya Mandir in the presence of Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, Prabhat, and other dignitaries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence, commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. NEET re-examination for admission to undergraduate medical courses conducted amid tight security arrangements. In Tamil Nadu, 7 people killed and over 70 affected in ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam. US-Iran talks underway in Switzerland to strengthen the interim government and consolidate efforts to end the West Asia conflict. IMD forecasts extremely heavy rainfall in Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal till Saturday. Indian women hockey team lifts FIH Nations Cup, defeating host New Zealand 2-0 in final. And in cricket, India lift the Tri-Nation A Series, beating host Sri Lanka by 66 runs in the final. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदा, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क के इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असरो रसूख के लिए निहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरियापलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी है, जिसका मकसद अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर 3 मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क की इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख का फैसला कुन उंसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वजीर आजम ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज INS संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज INS अग्र शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा MSMEs ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
1: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026

0: आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया। इम्तहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरूनी मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। एनटीए ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इम्तिहानात के तमाम मराकिस पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से दो सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। सीसीटीवी निगरानी के लिए एनटीए हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमा डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: सीबीएसई ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतायज मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतायज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतायज भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताज़ा मालूमात के लिए सिर्फ सीबीएसई के सरकारी जराए और डिजी लॉकर से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासिरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अवी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनद हुई। वजीर आजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शौरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
0: इस साल के योग के बैन अवी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बाबानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत

इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में तीन अहम तरजीहात तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीस टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारी और जिद्दत तराजी के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग भारत को आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने और एक जामे आलमी तवानाई मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदा इस साल के दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन सिफर दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाजे को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी माहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क्यादत अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुजाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बायस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा 4 फरीकी मुश्तरका मुजाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। 4 फरीकी मुजाकरात से पहले अमरीकी वफद ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। IMD ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने FIH खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका के दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज में आज भारत ए ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन से शिकस्त दी। भारतीय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारतीय ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगाथास मेथुलन, रविंद्र फर्नांडो और वनुजा सहान ने 2-2 विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर्स 1 गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौलते मुश्तरका खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाद लाबेम शहर में मुनदा 56वें ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 तमगे हासिल किए।
जिनमें

सोने के 8 तमगे शामिल हैं। 5 रुकनी खवातीन टीम ने सोने के 4 और चांदी का 1 तमगा जीता है। इसमें लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और प्रिया घनगास ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनाकिद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद अबूरी माहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तराजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

कहन। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री बी एस भटनागर। तो लीजिए सुनिए नाटक मुक्ति धन।

0: रहमान मियां, रहमान मियां है।
1: कौन है?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी रहमान बकलम खुद, ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ।
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
3: अब तुम वकील करोगे बेटा?
4: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चान पड़ा है।
3: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
4: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
3: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए।
5: अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियाँ थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई। उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
5: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
5: फिर इस गाय ही को?
3: बहू
4: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
5: तो फिर करोगे क्या?
4: कुछ तो करना ही होगा।
5: या अल्लाह।

0: अरे
1: हाँ हाँ हम समझ गए, तुम गेहूँ बेचना ही नहीं चाहते, यह बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
2: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव गांव न घूमता।
3: अरे लाला छोड़ गया को, भगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रस्सी दे। अरे खटा क्या सोचा, ला
2: रस्सी गौ कुछ ही नहीं लेते हो भाई,
3: पैसे दे रहे हैं।
2: अरे ये बिल्कुल,
1: अरे मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है, तुम चुप रहो, मेरे भगवान का
4: दे रहा
1: बात ही।
5: अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
1: आइए आइए मुख्तार साहब। सलाम
3: सलाम
6: सलाम
1: हुजूर, ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
3: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
6: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
3: हुजूर ये देखिए,
7: गर्दन भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
6: बाबा बछड़ा भी सुंदर है।
3: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
6: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
3: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
6: दूध देती है?
3: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए, इतनी सीधी हुजूर कि बच्चा भी दूध ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
6: क्या दाम मांगते हो?
3: 50 रुपए हुजूर।
6: हमें तो 35 का माल जचता है।
3: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर, इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
6: देखो अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे, बोलो हाँ या नहीं।
3: क्या कहे हुजूर, चलिए गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुँचा देता हूँ। चलिए हुजूर।
6: एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं बेची?
3: हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
6: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी?
3: थी सरकार, बड़ी विपत्त में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
6: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
3: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
6: गाय को तुमने प्यार से रखा है वो तो दिखता है।
3: सरकार इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी, भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। सरकार
6: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
3: हुजूर एक अर्ज और है।
6: क्या?
3: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
6: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिकर मत करो। हाँ
3: जी सरकार।
6: बस यही सामने फाटक वाला मकान हमारा है।
3: जी सरकार
6: आ जाओ।
3: जी
6: ये कोठरी सामने वाली गौ का घर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
3: जी
6: बस यही बांधो खूंटे से, हाँ, और देखो इस खूंटे से बच रहे हो।
3: जी बाबा जी, बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
6: ये लो रुपए, गिन लो।
3: जी 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35 ठीक है सरकार, ठीक है।
2: अच्छा अब चलो, सलाम हुजूर।
6: अजी सुनती हो, कहाँ हो?

0: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
1: क्या?
0: गौ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
1: सच?
0: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
1: वो कैसे?
0: गौ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची, वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची, क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
1: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
0: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
1: गौ गाय घर में बंधी है ना।
0: आओ
1: चलो
0: चलो दिखाते हैं।
1: चलो
0: अरे आओ, आओ, आओ।
1: चलो चल कर देखें।
0: मुसला भी बड़ा सजीदा और सुंदर है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: चलो।
2: सलाम हुजूर।
0: सलाम। तुम ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना?
2: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
0: रहमान है ना तुम्हारा नाम?
2: बजा फरमाया हुजूर।
0: कैसे आना हुआ?
2: हुजूर बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है, अम्मा बूढ़ी हैं, हज करना चाहती हैं हुजूर, पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार, आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
0: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो
2: जी हुजूर,
0: मैं वादे पर रुपए लेता हूँ, अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
2: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
0: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
2: सरकार 2 साल की मियाद रख लें हुजूर।
0: ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
2: ठीक है सरकार, ठीक है।
0: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा।
2: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
0: दस्तखत कर सकते हो?
2: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
0: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
2: जी हुजूर। रहमान पकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
0: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 हैं।
2: 180?
0: हाँ हाँ 180, कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली की, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
2: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
0: सलाम।
3: छोड़ मुझे,
4: चल चल। क्या बना आया? अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता, चलता है नहीं, चल।
3: चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो।
4: अरे अच्छा अच्छा चल।
5: सरकार रहमान को ले आया हूँ।
3: सलाम हुजूर।
0: क्या सलाम हुजूर, 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो, क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए?
3: हुजूर
0: लाओ रुपए कहाँ हैं?
3: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ।
0: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
3: अम्मा जब से हज करके आई हैं हुजूर तभी से बीमार पड़ी हुई हैं, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर, जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर लू, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
0: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
3: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हुजूर।
0: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उज्र कर रहे हो कि
3: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं, हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर, हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला चली हुजूर।
0: 1 साल की मियाद बढ़ा दूंगा पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
3: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
0: ठीक, अब तुम जा सकते हो।
3: हुजूर भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
0: सलाम।

0: क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त तो नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा
0: बेटा,
2: अम्मा जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: उठो थोड़ा सा। सोने मेरी
1: अम्मा।

0: सलाम हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो?
0: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
1: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
0: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
0: जी,
1: जाते कहां हो?
0: सरकार,
1: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
0: नहीं सरकार, यूं सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो।
0: हुजूर, अम्मा।
1: क्या, तुम्हारी अम्मा?
0: हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
0: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती हुजूर।
1: कहो क्या बात है।
0: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया, अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हो?
0: हुजूर, अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
0: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: मैं कितने रुपए की जरूरत है
0: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
0: सरकार,
1: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
0: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी।
1: यहाँ दस्तखत करो।
0: आपकी बहुत मेहरबानी है।
1: ये लो कलम।
0: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम।
0: सलाम।
2: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
3: अम्मा होती तो इस बार क्यों

0: देखकर कितनी खुश होती।
1: अल्लाह के फजल से ऐसी भूख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
0: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
1: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
0: सुनो।
1: हाँ बोलो।
0: अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा?
1: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए, सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
0: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
1: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
0: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
1: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
0: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
1: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
0: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बचे तो खलियान में आती
1: और है। खलियान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
0: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
1: नहीं तो
0: फैसला।

0: रहमान ले एक दो दम तू भी लगा ले।
1: लाओ काका लाओ। वाह वाह रहमान, अब के तेरी ऊँट बड़ी घनी उठी है भैया।
0: बस किसान की मेहनत का फल तो फसल ही है भैया।
1: तो सच है काका, मेहनत में रहमान की तरफ से कसर नहीं हुई।
0: तब देख ही लो कैसी जोरदार ऊख है।
2: ये लो तुम भी दो चार दम लगा लो भैया।
1: लाओ भैया लाओ।
3: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है?
1: ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा। भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा।
3: पर मंडी में नया गुड़ पहुँचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
1: अरे कम से कम 700 750 तो कहीं नहीं गए।
3: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
3: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी। मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी।
0: चिलन ताजा करने के काम भी किया है।
3: तुम ठीक कहते हो काका।
0: अरे अरे क्या कर रहा है रहमान, आपको मत छोड़।
1: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कम्बख्त ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास।
4: अरे खेत में लगी। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊख तोड़ने दे।
1: अरे सारे ऊख पर घर में तोड़ने वाले बाहर होगा। आग यही तो बढ़ रही है। चलो घर की तरफ देख जा रहे हो।
4: अरे आयु
1: रहमान भैया, रहमान भैया सब्र करो। उसकी मर्जी के आगे किसकी चली।
3: जो होना था सो हो गया। किस बुरी तरह रूप जल रही।

0: कहीं आते ही आते गालियां ना देने लगे। या मेरे अल्लाह, कहाँ छुप जाऊँ, कहाँ छुप जाऊँ।
1: रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई। जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: गिर। चल चल चल,
0: मैं खुद चल रहा
1: हूँ।
0: हुजूर मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब ऊख चल गई?
0: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार। गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरिन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर, अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर ये कैसे समझ लो, यहाँ न दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
3: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
3: हाँ रहमान, हाँ।
0: नहीं नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
3: कैसा बोझ, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
3: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
3: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर,
3: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार।
3: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
3: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
3: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
0: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर।

कीमती धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे राग मारू बिहाग। इसे प्रस्तुत करी हैं रहना चक्रवर्ती।
1: नमस्कार, मैं रहना चक्रवर्ती। ये शाम का राग है, राग मारू बिहाग, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं।

और अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है राग दरबारी कन्नड़ा, शेख फरहान अमीन के जरिए।

अभी आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुना प्रयाग दरबारी कन्नड़ा शेख फहीम अमीन के जरिए। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में

वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।